नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 सितंबर सन 2026 सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं को आकाशवाणी परिवार की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 6 बजने को हैं समाचार, कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर से कल नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने मजबूत रणनीतिक भागीदारी का आह्वान किया। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थितियां बनी हुई हैं। बावजूद इसके भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि पिछली तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.8% रही।
1: दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। फूड फ्यूल या सप्लाई चेन हर क्षेत्र में अनिश्चितता का प्रभाव पड़ रहा है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी भारत की इकोनॉमी ने अपनी गति बनाए रखी है। पिछले क्वार्टर में हमने 7.8% की ग्रोथ दर्ज की है। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी दुनिया के लिए विश्वास और नए अवसरों का स्रोत बन रही है।
0: भारत और बेल्जियम के बीच कल कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारत के व्यक्तियों की डीएनए प्रोफाइलिंग कराएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत में रहने वाले संबंधी कुछ सुविधाओं पर अपने जैविक नमूने एकत्र करवाकर डीएनए प्रोफाइल तैयार करवा सकते हैं। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779861616095। डीएनए प्रोफाइल नेपाली अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रारंभिक जानकारी के साथ अज्ञात शवों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल से तुलना के लिए dnacodis@nepalpolice.gov.np पर ईमेल द्वारा भेजी जा सकती है। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो सी

0: 130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या ना खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकियां और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार किया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भगवद गीता कर्तव्य, नैतिकता, न्याय, साहस और जीवन में संतुलन का मार्ग दिखाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से प्रस्तुत है भक्ति संगीत का प्रातःकालीन कार्यक्रम वंदना।

0: समय के साथ बढ़ते अत्याचार, आतंक और पाप के साथ ही धर्म रक्षणार्थ भगवान को अवतार लेना पड़ता है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों न हो। अधर्म का बोलबाला ज्यादा समय तक गूंज नहीं सकता, सत्य का शंख उसकी गूंज के चरम के साथ ही बज उठता है और फिर छा जाता है प्रकाश चारों ओर, अंदर और बाहर।
1: इसके साथ ही असत्य के पराजय की घोषणा हो जाती है और सत्य व न्याय के अंकुर धरती से फूट पड़ते हैं। नए युग का सूर्य उनकी अगवानी करता है। मंद बहती समीर स्वच्छंदता का एहसास लिए प्रवाहित होने लगती है। पृथ्वी पाप के भार से मुक्ति की ओर घूमना प्रारंभ करती है।

0: मथुरा द्वापर युग, जहां अत्याचार और पाप का वाहक राजा कंस अपने पूर्ण उन्माद में निर्भय होकर अपराधों को कड़ी दर कड़ी जोड़ता जा रहा था। मथुरा और आसपास के निवासियों को अनावश्यक कष्टों से रौंद रहा था, जहां जीवन मृत्यु से बदतर था। चारों दिशाओं के प्राणी अत्याचार से पीड़ित होकर प्रभु से मात्र सहन शक्ति वर्धन की याचना कर रहे थे। पशु पक्षी तक त्राहिमाम कर उठे थे।
1: नीच कंस के अधीन पूर्व राजा अपनी विवशता से जकड़े मन ही मन धर्म की, सत्य की और मुक्ति की पुकार कर रहे थे। सुनियोजित दशावतार में भगवान श्री विष्णु ही इस त्रासदी से मुक्ति के प्रथम और अंतिम आधार थे। भक्तों के रक्षण के लिए नारायण के अनेकानेव अवतारों से कौन भला अनभिज्ञ है। देवाधिदेव इंद्र सहित सारी धरती के प्राणी भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं।

0: विधाता की आज्ञा पर नारायण अपने सातवें अवतार के लिए प्रकट हुए। पूर्व वरदान में गोकुल की यशोदा और नंदराज को भी इस भाग्य का अधिकतम हिस्सा मिलना तय था। फेरी मथुरा में आए पुत्र नंद के कहाई, रहे गोकुल में जाए के अचरज भर लीलाएं, माँ यशोदा को दिखाएं। प्रभु महिमा देखिए, अवतार के लिए उन्हें कारागार जाना पड़ा, जहाँ कंस के अधिकार में बेड़ियों से जकड़े हुए थे। इसके पूर्व कंस उनके सात पुत्रों का वध कर चुका था। उसे आकाशवाणी से ये मालूम हो गया था,
1: हे कंस, तेरी दुष्टता का अंत निकट है। शीघ्र ही तेरा संहारक वासुदेव का पुत्र जन्म ले रहा है।

नियत तिथि अष्टमी के दिन जन्म के समय रात्रि 12 बजे आंधी तूफान वायु सभी प्रभु के दर्शनार्थ उतावले हो रहे थे। रह रहकर बिजली अंधेरी रात में अपना चरम यौवन दिखा रही थी।

0: बेड़ियों से जकड़ी देवकी की प्रसव पीड़ा क्षण प्रतिक्षण असह्य होती जा रही है
1: और अंततः प्रतीक्षा की श्रृंखला को विराम देते स्वयं नारायण प्रकट हुए, अपने विराट रूप में चारों ओर प्रकाश पुंज, मुखमंडल के पीछे सुशोभित चक्र, हाथ में गदा, पद्म, शंख, सुनहरा पीला पीतांबर, गले में कंठी हार, मणिमाणिक और मुख पर तेजस किंतु मधुर मुस्कान लिए।

0: देव की अधमूदी पलकों से देवाधिदेव श्री विष्णु की छवि, दैदीप्यमान ये छवि सहनशीलता से क्रमशः परे होती जा रही है और देव की अनुरय कर रही है।
1: हे जगत पिता, हे कर्ता, हे परमात्मा, मुझे शिशु रूप में दर्शन चाहिए, मुझ अभागिन पर कृपा करो। हे अच्युत, मुझे

मनमोहक छवि को अपलक निहारती रही थी। सारी सुध-बुध खोए एक टक देख रही थी और वासुदेव तो आंखें बंद करे आंसुओं की झड़ी बरसा रहे थे। आखिर सुध आने पर देवकी प्रभु से ही मन और नयन तृप्ति लिए निवेदन करने लगी।

0: और देवकी ने आंखें बंद कर ली। मन से विदा कर रही हैं अपने लाल को। नन्हे शिशु का जीवन सुरक्षित रखने के लिए उसे कहीं दूर ले जाने को कह रही हैं। देवकी की करुण व्यथा कैसे कही जाए। आखिर बालक को लेकर भरे मन से निकल पड़े गोकुल की ओर, अपने मित्र नंदराज के घर की ओर।
1: रास्ते में पूर्व से प्रतीक्षित यमुना नदी अपने पूर्ण उन्माद में थी। चारों ओर अंधियारा, काला पानी, बिजली की कड़कड़ाहट। टोकरी में बालक को ले रवाना हुए। कारागृह की बीड़ियां और ताले अपने आप टूटते गए। सारे पहरेदार अपने आप अदृश्य भक्ति में लीन हो चुके।
0: अनवरत बरसता पानी यमुना के उतावलेपन को प्रतिपल चरमोत्कर्ष तक पहुंचा रहा था। आखिर यमुना का राजा शेषनाग कालिया अपनी साथिनी यमुना को व्यवस्था से उद्वेलित हो बालक की टोकरी पर शैया देने चल पड़ा। आखिर त्रिभुवन पालक की सेवा का इससे अच्छा अवसर भला क्या हो सकता था।
1: अंत में बालक नारायण को यमुना की भक्ति के आगे समर्पित हो जाना पड़ा और उन्होंने अपना नन्हा एक पांव टोकरी से बाहर निकालकर यमुना को स्पर्श से पावन किया। यही पावन स्पर्श रास्ता बनाता चला गया और जा पहुंचे गोकुल। यहाँ नंदराज के घर लड़की का जन्म हुआ था। सन्नाटे भरे अंधेरे में ही बालक को माँ यशोदा के पास सुलाकर लड़की को साथ ले मथुरा लौट पड़े।

दूसरे दिन प्रातःकाल पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में बधाइयों का तांता लगना प्रारंभ हुआ। गोकुलवासी नंद के घर की ओर दौड़ पड़े। आसपास के निवासी और गोपियां भी एक दूसरे से कह रही थीं।

वहां पहुंचकर कन्हैया को देखा तो लगा जैसे कई कई जन्मों का आंखों का रण चुक गया। अपलक निहारती सारी जनता अपना तन मन बिसर चुकी थी। चारों ओर ढोल मंजीरे पर नृत्य करते गोकुलवासी नंदराज को बधाई दे रहे थे।

माँ यशोदा तो नन्हे बालक का सौंदर्य देखकर मानो बुत बनी खड़ी थी। बार बार सुध आने पर कन्हाई को वक्ष से लगाकर मातृत्व की वर्षा कर रही थी। अब प्रारंभ हुआ कृष्ण के श्रृंगार का सिलसिला। श्यामल तन, गहरे काले बाल, घुंघराली लटे नहाते समय अपनी अलग ही छटा बिखेर रही थीं।

नाना प्रकार के उपटन और प्रसाधनों से स्नान और श्रृंगार की प्रक्रिया पूर्ण हुई और अब कन्हई को विश्राम और अठखेलियों के दूसरे चरण की ओर ले जाते हुए झूले में डाला गया। लोरियां गाई जाने लगीं। कन्हई मुख से पैर का अंगूठा चूसते अपने शिशु अवतार का भरपूर आनंद ले रहे थे। संगी साथी गा रहे थे।

0: इस संकीर्तन के साथ ही हमारी आज की वंदना संपन्न होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। जन्माष्टमी पर प्रस्तुत है विशेष चिंतन। आलेख और स्वर है मुकाम सिंह चौहान का।
1: भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व भारतीय इतिहास के लिए ही नहीं, विश्व इतिहास के लिए भी अलौकिक और अद्भुत व्यक्तित्व है और सदा रहेगा। वे हमारी संस्कृति के एक विलक्षण महानायक हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी तुलना न किसी अवतार से की जा सकती है और न संसार के किसी महापुरुष से। यही उनके जीवन चरित्र की विलक्षणता है और यही उनका विलक्षण जीवन दर्शन भी है। अपनी सरस और मोहक लीलाओं व परम पावन उपदेशों से अंतः एवं बाह्य दृष्टि द्वारा जो अमूल्य शिक्षण उन्होंने दिया था, वह किसी वाणी अथवा लेखनी की वर्णनीय शक्ति एवं मन की कल्पना की सीमा में नहीं आ सकता। ज्ञानी ध्यानी जिन्हें खोजते हुए हार जाते हैं, जो न ब्रह्मा में मिलते हैं, न पुराणों में और न वेद की रचनाओं में, वे मिलते हैं ब्रजभूमि पर। यह श्री कृष्ण के चरित्र की विलक्षणता ही तो है कि वे अजन्मा होकर भी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, मृत्युंजय होने पर भी मृत्यु का वरण करते हैं, वे सर्वशक्तिमान होने पर भी जन्म लेते हैं तो कंस के बंदी ग्रह में। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व और कृतित्व बहुआयामी और बहुरंगी है, यानी बुद्धिमता, चातुर्य, युद्ध नीति, आकर्षण, प्रेम भाव, गुरुत्व, सुख दुख और न जाने कितनी विशेषताओं और विलक्षणताओं को स्वयं में समेटे हैं। एक भक्त के लिए श्री कृष्ण भगवान तो है ही, साथ में गुरु भी हैं, जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व की विविध विशेषताओं से भारतीय संस्कृति में महानायक का पद प्राप्त किया। एक ओर वे राजनीति के ज्ञाता तो दूसरी ओर दर्शन के प्रकांड पंडित। अपनी योग्यताओं के आधार पर वे युग पुरुष थे, जो आगे चलकर युगावतार के रूप में स्वीकृत हुए। गीता के माध्यम से कर्म और सांख्य योग के संदेश वाहक और महाभारत युद्ध के नीति निर्देशक थे, किंतु सरल निश्चल ब्रजवासियों के लिए तो वह रास रसैया, माखन चोर, गोपियों की मटकी फोड़ने वाले नटखट कन्हैया और गोपियों के चित्त चोर थे। गीता में इसी की भाव अभिव्यक्ति है, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस भावना से भजता है, मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। श्री कृष्ण का चरित्र अत्यंत दिव्य है, हर कोई उनकी ओर खींचा चला जाता है। जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे, भक्ति का मार्ग प्रशस्त करे, भक्तों के पाप दूर करे, वही श्री कृष्ण है। वह एक ऐसा आदर्श चरित्र है जो अर्जुन की मानसिक व्यथा का निदान करते समय एक मनोवैज्ञानिक, कंस जैसे असुर का संहार करते हुए एक धर्मावतार, स्वार्थ पोषित राजनीति का प्रतिकार करते हुए एक आदर्श राजनीतिज्ञ, विश्व मोहिनी बंसी वजैया के रूप में सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ, ब्रजवासियों के लिए समक्ष प्रेमावतार, सुदामा के समक्ष एक आदर्श मित्र, सुदर्शन चक्रधारी के रूप में एक ऐसा योद्धा व सामाजिक क्रांति के प्रणेता, जो अपनी देवीय शक्तियों से द्वारपर के आसमान पर छा नहीं जाते, बल्कि एक राहत भरे एहसास की तरह पौराणिक घटनाओं की पृष्ठभूमि में बने रहते हैं। दरअसल श्री कृष्ण में वह सब कुछ है जो मानव में है और मानव में नहीं भी है। वे संपूर्ण है, तेजोमय है, ब्रह्मा है, ज्ञान है। इसी अमर ज्ञान की बदौलत उनके जीवन प्रसंगों और गीता के आधार पर कई ऐसे नियमों और जीवन सूत्रों को प्रतिपादित किया गया है जो कलयुग में भी लागू होते हैं, जो छल और कपट से भरे इस युग में धर्म के अनुसार किस प्रकार आचरण करना चाहिए, किस प्रकार के व्यवहार से हम दूसरों को नुकसान न पहुंचाते हुए अपना फायदा देखें, इस तरह की सीख देते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर हमें श्री कृष्ण की शिक्षाओं और जीवन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए।
0: जन्माष्टमी पर विशेष चिंतन अभी आपने सुना। आलेख और स्वर था मुकाम सिंह चौहान का। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। खेती की बातें। आइए अब सुनते हैं इस कार्यक्रम में बिंदु भाटे के स्वर में पोषक तत्व कब कब दें।
2: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, आज हम खेती की बात नामा आपको बताऊंगा कि अच्छी फसल की अच्छी गुणवत्ता लेना का लेना कई कई चीज न जरूरी है। सबसे पहली बात तो आवज कि एमो पोषक तत्व अच्छा अगर मिली जाए तो फिर हमारी फसल खूब अच्छी फलज फूलज और अच्छा उत्पादन दे। हर फसल में पोषक तत्व को होनो घनो जरूरी है। पोषक तत्व अच्छा रहेगा तो हमारी फसल भी हमको अच्छी मिलेगा न रोग बीमारी नसीब बचेल रहेगा। वो दुई तरह का हो, एक ऐसा पोषक तत्व जो कि जरूरी है तो देवान जैसा नाइट्रोजन छे पोटाश सल्फर फास्फोरस ये अपना को देनु पड़े। कुछ छे जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक बोरान ये मुख्य छे। एवं छे तो जैसो हमारो पौधो बढ़वार पर जैसो छे तो डिसूर फूटी के ऊपर आवन तब छे तो नाइट्रोजन की घनी जरूरत छे। ये तत्व ऐसो छे जो कि पौधा को थोड़ो बढ़ावज अच्छो मजबूत करे। एक बाद में आवाज अपनो नाइट्रोजन का बाद में फास्फोरस जमा अपन देवान जमा छे तो जड़ नख अच्छी मजबूती एकासी मिले। न जड़ न अच्छी मजबूत रहेगा तो पौधो भी अच्छो रहेगा, पूरा पौधा को विकास अच्छो होएगा। असच पोटाश जमा अंकुरण वगैरह एको हो तमा अपन देवान जैसे पर एम पोटाश देना सी पौधा में जो ठंड सहन करने की शक्ति छे वो बढ़ी जाए। साथ छे तो जो भी हम उत्पादन ले रहा ओना अनाज में या फल या फूल में छे तो चमक एक अलग तरह की अपना का देखने का मिले। सूक्ष्म तत्व जैसा कि अपन बात करी जिंक न बोरान ये छे तो पत्ती नख पीलो पड़ना से बचाव और अपनी जो रबी की फसल छे ओमा छे तो अपन खाद को भी घनो महत्व छे। खाद अगर हम समय पर देवा बखत बखत सी तो पौधा का एक तरह को अच्छो पोषण मिले अच्छो खान पान मिले। अपन गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद ये अपन फूल आने पर अपन देवान और ओका बाद में छे तो एकासी मिट्टी की गुणवत्ता तो बढ़ी जाए और साथ ही रासायनिक उर्वरक देना की जरूरत पड़ तो अपना एक लेना ध्यान रखनु चाहिए कि जैसो नाइट्रोजन पोटाश खच तो थोड़ो थोड़ो करी का ना अपना ख देणु जैसो अपन खाणु खावान धीरे धीरे खावान अलग अलग बखत पर खावान तो असज हमारा पौधा को एक तरह से ये भोजन छे। हमारा पौधा का भी एक एक बार मनी देणु हुई शुरुआत में अपन दे देवा जमा वावणी करान फिर ओका बाद में एक तिहाई तो अपन पहले दे दियो वावणी की बखत फिर दूसरो जो भाग छे ओको ओ छे तो सिंचाई की बखत देवा ओका बाद में छे तो तीसरो भाग जमा अपना जो फसल लगाई जपड़ना ओमा दाणो बनी रो होए ओती बखत देवा। असो हम धीरे धीरे करी कना अगर देवांगा तो एको जो पोषण छे वो पूरो ही जाएगा साथ जो को पूरा पूरा तत्व भी मिलेगा। सिंचाई करती बखत देणु नहीं तो काई होएगा अगर हम सिंचाई करती वक्त नहीं देवांगा तो ये पानी में घुल ही नहीं पावेगा न असज वही जाएगा। साथ छे तो कभी हमने सूखा में दे दिया तो ये हवा में उड़ी जाएगा तो हमको इन्हीं बात को ध्यान रखनो कि जमा हम पानी वाला तव एक अपन देवा अवा छे तो ये अपना का जो सूक्ष्म तत्व छे इनका भी कवा देणु एको भी अपना का जैसे अपन अभी गहू चना लगाई रखा है तो एम अपना का ध्यान रखनो कि अपन कवा पानी दे रहा और कवा छे तो एक अपना का पोषक तत्व की एक जरूरत छे तो ओती ओती बखत पर अपना का देणु जैसे कि अपन रबी की फसल छे ओमा ये अपन काम करी सकान एवं छे तो 60 से 65 दिन पर अपन देवान आना फिर छे तो ओका बाद में 80 से 85 दिन पर अपन एक पोषक तत्व देवान। खाद की जो मात्रा छे अगर हम ज्यादा देवांगा तो भी हमारा पौधा में उत्ती सहन करने की शक्ति नहीं आवागा और पौधों जड़ ही भी सकल अने एक कमती भी नहीं देवा कमती भी देवांगा तो छे तो बढ़वार अच्छी नहीं होएगा तो इन्हीं बात को भी अपना का ध्यान रखू। मिट्टी जो परीक्षण हो नी और मिट्टी को स्वास्थ्य अच्छो रखना का लेना वो कार्ड भी बने तो वो भी अपना का जरूर बनाऊ। किसान भाई बहन से आज हमारो योज कहणु छे भाई किसान भाई बहन का राम राम।
0: खेती की बातें में अभी आपको बिंदु भाटे बता रही थी फसलों में पोषक तत्व कब कब दें। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

अयोध्या की राजसभा में श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं बहुत आंखें दिखाई, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुल गुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। यह शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण छा गया।

0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम विवरण आप सुनेंगे इस विज्ञापन के बाद।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 6:50 हुए हैं, वक्त है कार्यक्रम विवरण का। तो आइए अब आपको हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:20 से सुनिएगा कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा, प्रस्तुति है मुकाम सिंह चौहान की। सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुनहरे पल में। 7:35 से 8:30 से काव्य गोष्ठी का आनंद लिया जा सकता है। 9:00 से लोक संगीत में आप सुन सकते हैं कलाबाई खरलवा और साथियों के गाए निमाड़ी लोकगीत। 9:15 से सुगम संगीत में सुनिएगा सोनू निगम को। 9:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा पंडित निखिल बनर्जी के सितार पर बजाए राग भटियार का। 10:05 से सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन में हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। हमारी आज दिन की सभा में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 11:00 से प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। 12:00 से फिल्म संगीत। 1:00 से महिला कार्यक्रम। 1:30 से लोक संगीत। 1:45 से सुगम संगीत। 2:00 से फिल्म संगीत। 2:30 से चित्रपट संगीत। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी रोज की तरह संध्या 5:00 से युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी के साथ। 5:45 से सुनिएगा फिल्म संगीत। 6:00 से NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। 6:30 से सुगम संगीत में लुत्फ लीजिएगा जगजीत सिंह की गाई गजलों का। 6:45 से लोक संगीत में आप सुन सकते हैं नीता राय और साथियों के गाए लोकगीत। 7:20 से किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी प्रसारित किया जाएगा। 8:15 से सुनिएगा कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। चित्रगीत 9:15 से सुने जा सकते हैं। श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन प्रसारित किया जाएगा 9:30 से। 10:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा उस्ताद अमीर खान के गाए राग जय जयवंती का। तो ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी F-17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण के लगभग 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोनोसिस कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-05 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी, इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के पदाधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल संशोधन विधेयक की जांच के लिए गठित इस संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने दो और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर दो C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबीहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है, उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण चालकों में से एक होगा। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों और घरों में सजावट की गई है। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। अहमदाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि द्वारिका में जन्माष्टमी मनाने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जन्माष्टमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारत ने चीन की हांगकांग टीम के विरुद्ध महिला क्रिकेट एशिया कप के सातवें मैच में 137 रन से बड़ी जीत हासिल की है। इसी के साथ भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में कल टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी के दम पर 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
2: अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
3: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
2: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
3: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
2: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
3: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
2: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
3: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
2: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
3: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
2: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
3: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
2: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
3: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
4: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
3: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
2: समय है पानी बचाने का,
3: पानी का मोल समझने और समझाने का।
2: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
5: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
6: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
7: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
6: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
8: आकाशवाणी इंदौर।
7: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा।
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, धार्मिक पर्यटन स्थलों में अधोसंरचना को और मजबूत बनाने की योजना। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कल शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में आज जन्माष्टमी का उल्लास। 29 ऐतिहासिक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर श्री कृष्ण पर्व के आयोजन। और प्रदेश में मानसून सक्रिय। पन्ना सतना में नदियों में बाढ़ की स्थिति। नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा में भारी बारिश का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन के विस्तार के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल गुजरात में द्वारका में भगवान श्री द्वारकाधीश के दर्शन के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा में कहा कि मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों एवं देवस्थानों पर सहज एवं सुगम आवागमन, श्रद्धालुओं के ठहरने, उनकी सुरक्षा और पर्यटकों की वृद्धि को देखते हुए वहां सभी जरूरी अधोसंरचनाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। उज्जैन में श्री महाकाल लोक के निर्माण के बाद श्रद्धालुओं की संख्या 20 गुना बढ़ गई है। वर्तमान में लगभग 10 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री उज्जैन आ रहे हैं।
1: जिस प्रकार से तीर्थाटन का मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से प्रतिसाद मिला है, अकेले उज्जैन में बाबा महाकाल के कारण से बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालु दर्शनार्थी लगभग 20 गुना बढ़े हैं। आज की स्थिति में 10 करोड़ से ज्यादा यात्री उज्जैन आ रहे हैं। हमारी राज्य सरकार भी लगातार उस दिशा में काम कर रही है, इसलिए हमारे सभी देवस्थानों पर सुव्यवस्था स्थापित करके यात्रियों के लिए सुगम आवागमन, रहने सहने की व्यवस्था, देवस्थान पे प्रॉपर जो जरूरतें उन प्रकार के निर्माण कार्य।
0: डॉक्टर मोहन यादव आज सीहोर में एक निजी कंपनी की नई पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण इकाई के पहले ट्रांसफार्मर का रोल आउट शुरू करेंगे। करीब 50 एकड़ में स्थापित यह देश की एक ही स्थान पर स्थित सबसे बड़ी पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण इकाई है। यहाँ 220 केवी से 1200 केवी तक के ट्रांसफार्मर बनाए जाएंगे और हर महीने 35 ट्रांसफार्मर तैयार करने की क्षमता होगी। इकाई से 2000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सीहोर में बनने वाले ट्रांसफार्मर देश के साथ वैश्विक बाजारों में भी भेजे जाएंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। यह समारोह राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य अतिथि एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आरसीवीवी वीपी नरोहना प्रशासन एवं प्रबंधक की अकादमी भोपाल में होगा। इस अवसर पर उन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने, शैक्षणिक नवाचारों को बढ़ावा देने और विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण निर्मित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। राज्य स्तरीय पुरस्कार 2026 के लिए चयनित शिक्षकों को शॉल श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और 25,000 रूपये की सम्मान राशि प्रदान कर अलंकृत किया जाएगा। समारोह में विगत वर्ष 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित दो शिक्षकों शीला पटले और भेरूलाल ओसारा को समारोह में शॉल श्रीफल, प्रशस्ति पत्र तथा सम्मान राशि प्रदान कर विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज भक्तिभाव और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। 15 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बना है। जन्मोत्सव को लेकर भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला को फूल बंगले की तर्ज पर

पुरी श्री कृष्ण की झांकी और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। मुरैना में श्री कृष्ण पर्व का आयोजन किया जा रहा है। खंडवा में भव्य मटकी फोड़ महोत्सव में शहर सहित आसपास के क्षेत्रों की गोविंदा टोलियां भाग लेंगी। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-5 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अनुसार प्रक्षेपण के करीब 18 मिनट बाद भारत के पहले इमेजिंग उपग्रह को जियोसिंक्रोन्स कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। EOS-5 से वास्तविक समय में तस्वीरें मिलेंगी। इससे कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मदद मिलेगी। इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। भारत ने हांगकांग में चीन के खिलाफ गुरुवार को महिला एशिया कप 2026 के सातवें मैच में 137 रन से बड़ी जीत हासिल की। इसी के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शतकीय पारी के दम पर 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। मंधाना ने शेफाली वर्मा के साथ बतौर सलामी जोड़ी 48 गेंदों में 74 रन की साझेदारी की। इसके जवाब में चीन 16 ओवर में 2 गेंदों में सिर्फ 56 रन पर सिमट गई। शीर्ष स्थान पर बने रहते हुए भारत 5 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ अपना अंतिम ग्रुप मैच खेलेगा। वहीं पाकिस्तान अपना पहला मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है। एम्प्लॉयज प्राइवेट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO ने योग्य संस्थानों से विश्वास 2026 पहल के तहत EPF से जुड़े नुकसान के लंबे समय से लंबित विवादों को काफी कम दरों पर निपटाने का आग्रह किया है। प्रदेश में खजुराहो पन्ना सतना सहित पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। कल 9 स्थानों पर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। खजुराहो एयरपोर्ट पर 178, पन्ना में 164, रामपुर बागेलान में 130, अमरपाटन में 129, देवनगर में 128, मझगांव में 122 मिलीमीटर वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि छतरपुर, सागर, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी और बैतूल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबलपुर और बालाघाट समेत कई जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। पन्ना जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते अमानगंज में मीढ़ासन नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं पन्ना की पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने बताया कि किलकिला नदी के विकराल रूप से जलमग्न हुए धाम मोहल्ले में फंसे 12 लोगों को राज्य SDRF और पुलिस की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला है। डायल 112 के माध्यम से नगर में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया है। नदी घाट के पास स्थित निचले इलाकों के परिवारों से तुरंत मकान खाली कर सुरक्षित स्थानों पर जाने का आग्रह किया है। प्रभावित परिवारों के लिए स्थानीय कन्या स्कूल और बॉयज स्कूल में राहत शिविर बनाए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर के युवा बुंदेली गायक सुनील लोधी को 1,00,000 रुपए की सम्मान निधि, बेहतर इलाज, आंखों की रोशनी के लिए आवश्यक सहयोग और औपचारिक संगीत शिक्षा में मदद देने की घोषणा की है। धार जिले के जनपद पंचायत मनावर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय युवा संगम एवं उद्यम संवाद में 50 युवक युवतियों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 17 युवाओं का विभिन्न कंपनियों में चयन हुआ। डिंडोरी में आपदा मित्र योजना अंतर्गत 7 दिवसीय प्रशिक्षण का कल शुभारंभ हो गया। झाबुआ के पेटलावर क्षेत्र में निर्माण कार्यों के लिए कुल 12,50,00,000 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। आगरमालवा जिला एवं जल एवं स्वच्छता मिशन में कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने हर घर नल से जल समूह का जल प्रदाय योजना के कार्यों का प्लान तैयार कर 1 सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अशोकनगर जिले के 4 मंदिरों पर श्री कृष्ण पर्व का आयोजन आज किया जाएगा। शिवपुरी में सिद्धेश्वर मंदिर प्रांगण में श्री कृष्ण भजन संध्या होगी। इंदौर जिले में भिक्षावृत्ति की रोकथाम के लिए प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने इंदौर जिले में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर सुने। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम इंदौर परिक्रमा, प्रस्तुति है मुकाम सिंह चौहान की।
2: इंदौर परिक्रमा, जय जय जय जय जय जय जय जय इंदौर। इंदौर परिक्रमा,
3: क्या बात है, क्या बात है इंदौर की, क्या बात है।
2: इंदौर परिक्रमा,
4: नमस्कार श्रोताओं, इंदौर परिक्रमा के साथ मैं मुकाम सिंह चौहान। हमारे सभी सुनने वालों को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी की और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, आज चहु और बाल कृष्ण के जन्मोत्सव का महापर्व जन्माष्टमी इंदौर सहित पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। सभी देवालय आकर्षक विद्युत सज्जा से जगमग हो उठे हैं और हजारों भक्तों की उपस्थिति हमारी सामूहिक आस्था का प्रतीक है। आज दिन भर विशेष आयोजन हो रहे हैं। ये आयोजन मुख्य रूप से प्रमुख प्राचीन एवं प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में, जिनमें राजवाड़ा स्थित गोपाल मंदिर, गीता भवन, वैष्णव धाम, इस्कॉन मंदिर सहित विभिन्न छोटे बड़े मंदिर शामिल हैं। इसके साथ ही बहुत सारे स्थानों पर शोभा यात्राएं, भजन कीर्तन, आध्यात्मिक प्रवचन, झांकियां, बांसुरी वादन, नृत्य नाटिका, महाअभिषेक, झूला झूलन, भव्य महाआरती और माखन मिश्री के रूप में प्रसादी वितरण जैसे भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। जन्माष्टमी पर्व के आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं आप।
5: हरे कृष्णा। आकाशवाणी इंदौर की ओर से, कौन जगत की ओर से, सभी श्रद्धालुओं के लिए, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए श्री कृष्ण के प्राकट्य जन्मोत्सव जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन जो है भारतीय संस्कृति और आध्यात्म परंपरा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केवल भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्मरण का ही याद नहीं दिलाता है, बल्कि उनके जीवन और उनके दिए गए उपदेशों को याद करने के मानव समाज में धर्म, कर्तव्य, प्रेम, करुणा और अध्यात्म के मार्ग को प्रशस्त कराता है। इस प्रकार भगवान स्वयं भगवद गीता में बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान धराधाम पर प्रकट होते हैं। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े पाप असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे ताप सज्जन की पीड़ा। तो ये जो भगवान की जो जीवन से भगवान अनेक शिक्षाएं ली जा सकती, और जो इसको समझ जाता है वो दिव्य पथ को प्राप्त हो जाता है। 4.9 भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम योगम ये वेदी तत्वतः त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म की दिव्यता को समझ लेता है, उसे संसार चक्र में दोबारा नहीं फंसना। हम देखते हैं कि बाल्यकाल से ही उन्होंने व्रजवासियों के साथ कितना प्रेम और आनंद उठाया, किस प्रकार गोवर्धन पर्वत को उठाकर उनकी रक्षा की, और जिसमें गोवर्धन वासियों व्रजवासियों की शरणागति का लक्षण दिखता है, और इंद्र के अहंकार को चूर किया। तो हमें भी शिक्षा मिलती है कि हमें भी प्रकृति से, समाज से समरसता और सामंजस्य बना के चलना चाहिए। प्रकृति के प्रति भी कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। भगवान हमारे पिता हैं तो प्रकृति हमारी माता है। सुदामा की मित्रता से एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि मित्रता जो है वो जाति या धन या पद के आधार पर नहीं, ये तो प्रेम और आत्मीयता का बंधन है। वहीं दूसरी ओर कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान देकर सारे मानव समाज का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वो अर्जुन को दी हुई शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। यदि हम अर्जुन की शिक्षाएं जीवन में उतार पाए तो निस्संदेह आज हमारे समाज में जो अराजकता, स्ट्रेस है, एंजाइटी

है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन, इतनी सारी समस्याएं हैं, वो गीता की शिक्षाओं के माध्यम से निस्संदेह हम उनको कम कर सकते हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारे पास सुविधाएं बहुत हैं, हमारी सड़कें चौड़ी होती जा रही हैं, लेकिन हमारे घर हमारे हृदय की रास्ते सकरे होते जा रहे हैं। हमारे पास संसाधन बढ़ते जा रहे हैं लेकिन संस्कार कम होते जा रहे हैं। इसलिए यदि मानव समाज में हमें खुशहाली लानी है, तनाव चिंता और असंतोष की मुक्ति लानी है, तो निस्संदेह भगवान कृष्ण का जो दिव्य संदेश भगवद गीता, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। बोलते हैं कृष्णा इज द बेस्ट मैनेजमेंट गुरु एंड क्राइसिस मैनेजमेंट लीडर, क्योंकि अर्जुन से बड़े मैनेजमेंट क्राइसिस हमारे जीवन में नहीं है। तो अर्जुन शिक्षा प्राप्त करके गीता की उस क्राइसिस से बाहर आए, तो निस्संदेह हम समाज की और व्यक्तिगत समस्याओं से कृष्ण की शिक्षाएं प्राप्त करके जरूर बाहर आ सकते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्य को निष्ठा के साथ करते रहना है और परिणाम के पीछे भागना नहीं, साथ में अपने कर्तव्य का भी त्याग नहीं करना है। समाज के प्रति, देश के प्रति और ईश्वर के प्रति कर्तव्य का पालन करता है, विद्यार्थी को अपने कर्तव्य का पालन, गृहस्थ को अपने कर्तव्य का, युवाओं को, परिवार को, समाज को, सबको एकजुट लेके चलने की शिक्षा जो भगवान देते हैं। ये जो केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, परंतु ये जीवन भर का कमिटमेंट है। भगवान को हम सब मानते हैं, भगवान की मानना पड़ेगी, भगवान की बात जो कि उन्होंने गीता और भागवत से बताई है। हम कुछ छोटे छोटे संकल्प अपने जीवन में ले सकते हैं, प्रतिदिन कुछ समय अपने आप के लिए आध्यात्मिक चिंतन मनन के लिए निकालें, अपने माता पिता, वरिष्ठों, गुरुजनों सब प्रति कृतज्ञता का भाव विकसित करें, बच्चों से स्नेह करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। भगवान ने सब कुछ स्वयं अपने जीवन से सिखाया है।

0: श्रोताओं, 5 सितंबर यानी कल शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। यह दिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करने का दिन है और अपने उन सभी शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया कि हम आज समाज में खड़े होकर अपनी बात कह सकें। कहा जाता है कि माता पिता हमें जीवन देते हैं, लेकिन शिक्षक हमें उस जीवन को जीना सिखाते हैं। एक शिल्पकार की तरह शिक्षक कच्चे घड़े को आकार देकर उसे मजबूत और सुंदर बनाते हैं। स्कूल की उन 4 दीवारों से लेकर जीवन के हर एक मोड़ पर अनुभव सिखाने वाले हर उस व्यक्ति तक, चाहे माँ हो, पिता हो या कोई मार्गदर्शक, हर कोई हमारे लिए एक शिक्षक है। शिक्षक दिवस पर अपने संदेश के साथ जुड़ रहे हैं IIM के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार सिंह।
1: शिक्षक दिवस हम मनाते हैं 5 सितंबर को, जिस दिन डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। और मैं चूंकि तमिलनाडु में 5 वर्षों तक रह चुका हूं और वहीं तमिलनाडु के उत्तरी छोर पर एक स्थान है तिरुथनी, जहां उनका जन्म हुआ। और शिक्षक दिवस मनाने के पीछे का जो उद्देश्य है उसे हमें बार बार स्मरण रखना चाहिए। और शिक्षक दिवस पर मुझे ये कहना है कि शिक्षक, विद्यार्थी और पूरा समाज, ये तीनों का समावेश और तीनों के कल्याण का समावेश शिक्षक दिवस के संदेश में जाता है। पहली बात तो ये कि शिक्षक, मैं भी एक शिक्षक हूँ, और शिक्षक का कार्य ही है कि वो विद्यार्थी को समेकित विकसित करें। समेकित रूप से विकसित करने का अर्थ जो हम समझते हैं उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। और विद्यार्थी का हर पक्ष, जैसे जिस विषय का वो विद्यार्थी है उस विषय के ज्ञान में वो गहराई

0: जाए, व्यक्तित्व का विकास हो, मूल्य परक उसकी शिक्षा हो और उस समाज के लिए उपयोगी हो, इन सारे विषय को देखते हुए शिक्षक को भी अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है। और जब से ये तकनीक का ज़माना और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना कहते हैं, इस ज़माने में किसी भी शिक्षक को, चाहे वो विद्यालय के हों, चाहे महाविद्यालय के या विश्वविद्यालय के या संस्थानों के, उच्च संस्थानों के, सबको ये सप्ताह में 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए भी सप्ताह में ज़रूर एक बार विचार करना चाहिए कि अब मेरे कक्षा में जाने की क्या उपादेयता है। और जो चीज़ें टेक्नोलॉजी के माध्यम से विद्यार्थी स्वतः खोज सकता है, उसी विषय को न पढ़ाते हुए जहां विद्यार्थियों को, जिसको कहते हैं मिसिंग लिंक, जिसको कहते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइंस, कि 2 पंक्तियों के बीच में क्या अनकहा रह गया, क्या छुपा रह गया, उस सब चीज़ को जोड़ने के लिए शिक्षकों को अब तैयार होना होगा। तभी हम जो है शिक्षक दिवस शिक्षक के रूप में ठीक से मना पाएंगे। और विद्यार्थियों के लिए ये संदेश है कि विद्यार्थी चौकस रहें, विद्यार्थी समर्पित रहें मानवीयता के लिए, देश के लिए, और अपने आप को, अपनी, जिसको कहते हैं ना, अपनी भित्ति, अपनी भीत को बनाने के लिए, अपने आधार को मजबूत बनाने के लिए वो चौकस रहें। और समाज भी ये विद्यार्थी और शिक्षक के संबंधों को और पुष्ट होने में सहयोग करे। गार्जियन का रोल भी आजकल बहुत अच्छा, माने बहुत इसका महत्व माना गया है कि गार्जियन अपने घर में किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं विद्यार्थियों को, वो उन्हें स्वतः खेलने दे रहे हैं या कोई दबाव में रख रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से गार्जियन के लिए भी विचार करने की आवश्यकता है। गार्जियन और शिक्षक भी आपस में थोड़ा ज़्यादा मिलें और अलग से समाज में गार्जियंस के लिए ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की आवश्यकता हो कि वो स्कूल जाते हुए बच्चों को या उच्च शिक्षा में जाते हुए बच्चों को किस प्रकार से वो व्यवहार अपना दें। तो इन सब बातों को कहते हुए मैं शिक्षक दिवस की बहुत शुभकामनाएं प्रकट करता हूं।
1: शिक्षा के क्षेत्र में कई शिक्षक अपना संपूर्ण जीवन इस तरह से समर्पित कर देते हैं मानो एक भक्त अपने आराध्य की भक्ति में। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर इन शिक्षकों का मूल ध्येय देश का भविष्य तैयार करना है और इसके लिए वे हर संभव प्रयास करते रहते हैं। देवास जिले के सतवास से जुड़ रहे हैं मनोज कुमार दुबे।
2: शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सतवास में मैं माध्यमिक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं बच्चों को विद्या अध्ययन कराता हूँ और वही मेरा मिशन भी है। मैं बचपन से ही ये सोचा करता था कि ईश्वर काश मैं शिक्षक बन जाऊं, और ईश्वर ने वो मनोकामना पूर्ण की। और एक मिशन रहा पूरे जीवन में ये कि मैं बच्चों के लिए खूब काम करना है। मेरी आराधना स्थली, मेरी पूजा स्थली मेरा स्कूल ही है। मैं हमेशा अपने बच्चों में ईश्वर के दर्शन करता हूँ। मेरा ध्येय जीवन का मकसद जो है वो यही है कि मैं गीत लिखता हूँ, मैं कवि हूँ और मैं फिल्म राइटर एसोसिएशन का एसोसिएट मेंबर भी हूँ। मैं आपको शिक्षक कविता की पंक्तियां सुनाता हूँ। मेरी मुट्ठी में बंद है समय की धड़कन, मेरी आंखों में आने वाला कल पलता है, नव सृजन खेलता है मेरी गोद में शिशु बनकर, मेरी उंगली पकड़कर युग चलता है। अंधेरे अंधेरे खौफ खाते हैं मुझसे क्योंकि मैं रोशनी का रक्षक हूँ, और दुनिया वालों मुझे सहेज कर रखो, मैं राष्ट्र निर्माता हूँ, शिक्षक हूँ, ज्ञान के प्रकाश के लिए जब युग। उसकी पंक्तियां जो है कि ज्ञान के प्रकाश के लिए जब युग, शिक्षक का जन्म कैसे होता है, ज्ञान के प्रकाश के लिए जब युग मंदिर की दहलीज पर बरसों रोता है, तब दया आती है ईश्वर को। और दुनिया में किसी शिक्षक का जन्म होता है, जब जन्म होता है शिक्षक का तो सारा देवलोक स्तुति गाने लगता है, सूरज मंत्रोच्चार करता है, सागर मंगल वाद्य बजाने लगता है, माँ गंगा स्नान कराती है शिक्षक को अपने पवित्र जल से। जब बच्चा होता है तो उसको स्नान कराते हैं पहले, माँ गंगा स्नान कराती है शिक्षक को अपने पवित्र जल से, और वस्त्र पहनाती है वासंती बहारें, रात लगाती है आंखों में आत्मविश्वास का काजल, और कलम किताब लाते हैं चांद और सितारे बहुत स्नेह से। ये संपूर्ण प्रकृति शिक्षक के व्यक्तित्व को संवारती है, उसके गले में पहनाकर ईमानदारी की माला, उसके मस्तक पर लगाकर आदर्श का तिलक, शिक्षक की आरती उतारती है। और इस तरह से सज धज कर जब शिक्षक विद्यालय में ज्ञान बांटने के लिए जाता है तो गुरु को करने के लिए प्रणाम, पृथ्वी पर गोविंद भी उतर आता है, जो मिटाता है नफरत के अंधेरे, उस सूरज का अवतार है शिक्षक, संस्कारों के अभावों से आहत वसुंधरा की पुकार है शिक्षक, राष्ट्र के सुनहरे भविष्य का आधार है शिक्षक, और जो झलकता है मेरे स्कूल के बच्चों की आंखों में वो मासूम प्यार है शिक्षक। अब तो एक ही प्रार्थना है मेरे ईश्वर, अब तो एक ही प्रार्थना है मेरे ईश्वर कि इस जीवन को इन बच्चों की आराधना में ही लगाना और मत बनाना मुझे कुछ और, हर जन्म में बस शिक्षक ही बनाना।

0: श्रोताओं, थोड़े ही दिनों बाद गणेश उत्सव की धूम रहेगी। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का आयोजन अत्यंत भव्य और सुव्यवस्थित रूप से किया जाएगा। इस दौरान होने वाले प्रमुख आयोजनों और व्यवस्थाओं के संदर्भ में हमें जानकारी दे रहे हैं।
1: जय श्री गणेश। गौरी शंकर मिश्रा, असिस्टेंट मैनेजर, श्री गणपति मंदिर प्रबंध समिति खजराना इंदौर। आप सभी भक्तों को बड़े हर्ष के साथ में सूचित कर रहा हूं कि दिनांक 19/8/2026 को कलेक्टर श्री स्वयं वर्मा साहब, प्रशासक क्षितिज सिंगल साहब की अध्यक्षता में आहूत बैठक के अनुसार इस वर्ष भी श्री गणेश जन्मोत्सव चतुर्थी 2026 का उत्सव बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाना है। उसी के साथ में इस बार भी विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन प्रबंध समिति और दानदाता और भक्तों के सहयोग के साथ में किया जा रहा है। दिनांक 26 तारीख को जो हमारा प्रथम सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम है, उसमें आराध्या शर्मा जी के द्वारा कथक और एक विभिन्न नृत्यों जो शास्त्रीय हमारे नृत्य होते हैं उनका प्रदर्शन है। साथ में 17 तारीख को स्कूल के बच्चे, जो इंदौर शहर के बड़े और अच्छे प्रतिभावान स्कूल के बच्चे हैं, उनका गायन और तथा सांस्कृतिक प्रोग्राम है। साथ में 17 तारीख को नेशनल स्कूल डिस्कवरी और इस तरह के विभिन्न संस्थानों के द्वारा भी कथक की प्रस्तुति है। 18 तारीख को सुप्रसिद्ध गायिका प्रियानी वानी पंडित, जो मुंबई की कलाकार है, उनके माध्यम से संध्या भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इसी प्रकार 19 तारीख को श्वेता गुंजन जी, जो अपने नेशनल लेवल की गायिका है, उनके द्वारा भी भजन संध्या का आयोजन किया गया है। 18 और 19 जो हमारी भजन है वो दानदाता और हमारे भक्तगण श्री राजकुमार रसाठी एवं अरविंद बागड़ी जी के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। साथ में इस वर्ष हमने जो अनंत चतुर्थी पर विशेष झांकी का जो आयोजन है वो धार्मिक थीम पे गणपति बप्पा जो हैं वो गज पर सवार होकर पूरे शहर को आशीर्वाद देने के लिए निकलेंगे। और इसी प्रकार हमारे यहाँ जो 1,25,000 मोदक का जो प्रस भोग लगता है वो 14 तारीख को अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर साहब श्री स्वयं वर्मा साहब, प्रशासक महोदय श्री सतीश सिंह साहब के साथ में प्रातः 10 बजे ध्वजा पूजन कर और 1,25,000 मोदक प्रसाद भगवान को अर्पित कर भक्तों में वितरित करने के पश्चात उस उत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही भगवान श्री गणेश जी के स्वर्ण आभूषणों से श्रृंगार, इसी प्रकार उनका फूल बंगला तथा आकर्षक विद्युत साज सज्जा से पूरे परिसर को जगमग कराने का भी हम लोगों का इस वर्ष प्रयास है। सभी भक्तों से अनुरोध रहेगा कि इस संपूर्ण 10 दिवसीय उत्सव में आप सपरिवार श्री गणपति मंदिर प्रबंध समिति के स्वागत के आधार पर आप परिसर में पधारे और भगवान के दर्शन लें और विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक सांस्कृतिक और उत्सव है उसका आनंद प्राप्त करें। जय श्री गणेश।
0: इंदौर परिक्रमा।

0: इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा।
1: अभी आप सुन रहे थे इंदौर परिक्रमा, प्रस्तुति थी मुकाम सिंह चौहान की। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कार्यक्रम सुनहरे पल में प्रस्तुत है फिल्म गीत गाता चल का गीत, आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाज़ में। गीतकार संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी
2: हाँ।
1: नहीं झुमके ना, पहले बचत,
3: पहले झुमके।
1: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या,
1: जाते हो कि
3: हाँ?
1: लगाओ इंजेक्शन,
4: RBI कहता है।
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: कसम फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाज में। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार हैं पप्पी लहरी।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: लता मंगेशकर को सुनिए फिल्म शागिर्द में। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आकाशवाणी इंदौर से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल। 8 बजने को हैं समाचार, कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए

0: 31 सदस्यों की संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GLSV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित और आवश्यक कक्षा में स्थापित कर दिया है और हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके सबसे भारी उपग्रह को स्थापित किया है। एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
1: इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेटा फॉर आवर कंट्री।
0: सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर संसद की 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। एक रिपोर्ट।
3: इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य किसी गैर सरकारी संगठन या संस्थान द्वारा विदेशी योगदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी बनाना और संस्थाओं के संयुक्त पैनल का नेतृत्व करेंगे। समिति में लोकसभा के प्रमुख नामों में भर्तृहरि मेहताब, तेजस्वी सूर्या, निशिकांत दुबे, ए राजा और सुप्रिया सूले शामिल हैं। राज्यसभा से हर्षवर्धन श्रृंगला, संजय कुमार झा, प्रफुल्ल पटेल और मेनका गुरुस्वामी को इस समिति में शामिल किया गया है। संसद के दोनों सदनों ने 12 अगस्त को विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच की मेजबानी करेगा। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश तथा वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक शिष्टमंडलों के प्रमुखों से द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं, जिसे नेपाल के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार मंत्री महावीर पुन को सौंप दिया गया है। गृह मंत्रालय नेपाल में आई बाढ़ के बाद लापता हुए भारतीय व्यक्तियों की पहचान के लिए उनके निकटतम जैविक रिश्तेदारों की डीएनए जांच करवाने की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि रिश्तेदारों के जैविक नमूने कुछ निर्धारित केंद्रों पर लिए जा सकते हैं और प्रोफाइल तैयार की जा सकती है। फिर इस प्रोफाइल का मिलान नेपाल में मिले मृतकों के अवशेषों के डीएनए से कराया जाएगा। ये जांच नेपाल के अधिकारियों की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी। इस संबंध में हेल्पलाइन नंबर है 9779841616095। इस बीच नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,259 हो गई है। आपदा के एक सप्ताह से अधिक समय के बाद भी 5,000 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 355 शव बरामद किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New

0: Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोटर वाहन उद्योग से स्थानीयकरण को बढ़ावा देने, निर्यात बढ़ाने और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में कहा कि आने वाले वर्षों में ऑटोमोटिव क्षेत्र भारत की विकास गाथा का सबसे महत्वपूर्ण वाहक होगा। उन्होंने उद्योग से भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारियों, बढ़ते घरेलू बाजार और विनिर्माण में वैश्विक बदलावों से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान तेल, खनिज या एल्यूमिना खरीदने या न खरीदने जैसे फैसलों से नहीं बल्कि बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। कीव में यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सीबिहा के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से ऊर्जा खरीदने के फैसले पर भारत के प्रति जो यूक्रेन का दृष्टिकोण है उसका देश सम्मान करता है और उम्मीद करता है कि दूसरे देश भी भारत के इस रुख का सम्मान करेंगे। भारत ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रक्षा अताशे नियुक्त करने का फैसला किया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। बेल्जियम ने इस वर्ष की शुरुआत में नई दिल्ली में रक्षा अताशे नियुक्त किया था। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री वाख द वेवर ने अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 13 अरब डॉलर का है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिश्री ने कल नई दिल्ली में क्वाड शेरपाओं की बैठक की मेजबानी की। मंत्रालय ने बताया कि चर्चा में क्वाड सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिनमें समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, उभरती प्रौद्योगिकी और मानवीय सहायता शामिल हैं। शेरपाओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र, व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। अमरीकी रक्षा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को F404IN20 इंजनों की एक नई खेप भेजी है जिससे देश के घरेलू तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। F404 इंजन HAL और GE एरोस्पेस के बीच 2021 में हुए एक अनुबंध के तहत 99 पावर प्लांटों की आपूर्ति की जा रही है।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
4: भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है।

0: उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में जन्माष्टमी समारोह में शामिल होंगे।
1: हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबी मथुरा वृंदावन की गलियों में हर तरफ आज यही शोर है। आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहाँ रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उधर जन्माष्टमी का पर्व गुजरात में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
2: पवित्र नगरी द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। तड़के मंगला आरती के साथ शुरू हुआ पूजा अर्चना का क्रम पूरे दिन विविध भोग दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ जारी रहेगा। उत्सव का मुख्य आकर्षण आज मध्यरात्रि की महाआरती होगी, जब बाल गोपाल के जन्म लेते ही पूरा मंदिर परिसर हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की के जयकारों से गुंजायमान हो उठेगा। वही प्रभु श्री हरि की प्रतिमा का नयनाभिराम श्रृंगार कर उन्हें दिव्य आभूषणों से अलंकृत किया गया है। पूरे परिसर में भजन कीर्तन और कृष्ण लीला की मधुर स्वर लहरियां गूंज रही है। द्वारका के अलावा राज्य के डाकोर के रणछोड़ राय जी और अरवली के श्यामला जी मंदिर में भी जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। अपर्णा खोंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की शतकीय पारी की बदौलत 5 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में हांगकांग की टीम 17वें ओवर में मात्र 56 रन पर सिमट गई। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत की प्रगति दुनिया के लिए विश्वास का स्रोत, बेल्जियम के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। लोकसत्ता ने लिखा है, डायमंड से डिफेंस तक पहुंचा भारत बेल्जियम का रिश्ता। बकौल नवभारत टाइम्स, समझौते में रॉकेट, गोला बारूद, ड्रोन और एयर डिफेंस जैसी कई तकनीकें शामिल। अमर उजाला की सुर्खी है, अमरीका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अन्य से बेहतर टैरिफ पर अड़ा भारत। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ किया, प्रतिस्पर्धी देशों से कम टैरिफ मिलने पर ही समझौता अंतिम रूप लेगा। दैनिक जागरण सहित अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय के इस बयान को प्रकाशित किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास कानून के छात्रों का आचरण नियंत्रित करने का अधिकार नहीं। नालसर विवाद में अदालत ने कहा, अनुशासन का अधिकार शिक्षण संस्थान के पास। बकौल हिन्दुस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के हवाले से लिखा है, पिछले एक वर्ष में 2 करोड़ बच्चों का हुआ ऑनलाइन यौन उत्पीड़न, 11 लाख बच्चों की एआई जेनरेटेड तस्वीरें साझा हुई। एआई को नहीं, किसी रचना का रचयिता बनने का हक। राजस्थान पत्रिका ने भारतीय कॉपीराइट ने एआई सिस्टम दाबूस को रचयिता मानने से इनकार किया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राजस्थान पत्रिका ने उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों का उल्लेख करते हुए लिखा है, भगवान कृष्ण के हर रूप में छिपी है जिंदगी की एक खूबसूरत सीख।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। विदेशी योगदान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 की जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों के मंच की मेजबानी करेगा। भारत ने नेपाल में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए राहत सामग्री से भरे 2 और विमान भेजे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारतीय महिला टीम हांगकांग को 137 रन से हराकर T20 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Akashwani presents Morning News. Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. ISRO successfully launches its Earth Observation Satellite EOS-05 onboard GSLV F-17 rocket from Sriharikota in Andhra Pradesh. Government forms 31-member Joint Parliamentary Committee to examine Foreign Contribution Regulation Amendment Bill

0: शोभित बिंदिया का और माँ यशोदा की गोद में भगवान श्री कृष्ण की निधिया का।
1: क्या बात है।
0: तो आज के इस काव्य कलश में प्रथम कवि के रूप में मैं इंदौर से ही पधारे श्री अतुल दवे जी को प्रस्तुत करूंगा। वह पढ़ेंगे एक गीत। गीत क्या है, रोशनी का घट या डोरी पे थिरकता नट, सांस का संगीत है ये, धड़कनों की ताल है, एक परिचित गंध वाला रेशमी रुमाल है। श्री अतुल दवे जी,
2: आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी की नजर एक प्यार भरा गीत।
0: स्वागत भाई।
1: स्वागत है साहब।
2: तुम्हारी नजर का

0: क्या बात है, क्या बात है,
1: लग रहा
0: बहुत अच्छा अतुल जी,
2: बहुत बढ़िया भैया।
1: तुम्हारी नजर का गीत का बंद देखिएगा।
0: स्वागतम,
2: स्वागत है।
1: सुबह शबनमी सिंदूरी जामुनी,
2: वाह क्या बात, बहुत बढ़िया।
1: सुबह

0: बहुत बढ़िया,
1: अंतिम बंद स्वागत
0: स्वागत है।
1: था कल तक मका आज घर हो गया है, था कल तक मका
2: आज घर हो गया है,
1: हो गया है। जमाना मेरा हम सफर हो गया है।
2: बहुत

0: का
1: असर
0: असर
1: लग रहा
0: लग
1: है। क्या क्या
0: रहा
1: बात है,
0: है।
1: बहुत बढ़िया।
0: बहुत खूबसूरत शहर लग रहा है। एक माँ नर्मदा पे वंदन गीत पेश कर रहा हूँ,
1: स्वागत
0: आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ।
1: स्वागत।
0: निर्मल मारेवा की धारा,
1: क्या बात है।

0: गीत का अगला बंद
1: स्वागत।
0: गाई है देवों ने महिमा निराली, खुशहाली देती माँ दुख हरने वाली।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: गाई

0: पार गीत का अंतिम मन
1: स्वागत
2: स्वागत
0: चंचल हरिया नयन तृप्त करती
1: क्या कहना है क्या कहना है
0: वरदानी मैया सदा झोली भरती
1: बहुत अच्छे
0: चंचल

0: अपार नर्मदा मात की जय। जय हिंद।
1: धन्यवाद अतुल जी, आपने बहुत श्रेष्ठ गीत पढ़ा। वैसे भी कहते हैं कि परंपराओं का, संस्कृति का सबसे मधुर उद्घोषक यदि कोई है तो वह है गीत। बेशक आज के गीतों में मधुरी मादरता की कमी है, प्यार का पराग नहीं है। सस्ते संदर्भों के साइनाइड ने गीतों के सरोवर को विषाद कर दिया है। तो मैं अगले कवि के रूप में, अगले गीतकार के रूप में रतलाम से पधारे भाई आशीष दशोत्तर से प्रार्थना करूंगा। प्रसाद ने जय रामायण में लिखा है, प्रणय किरण का कोमल बंधन मुक्ति बना बढ़ता जाता, दूर किंतु कितना प्रतिपल वह हृदय समीप हुआ जाता। मधुर यामिनी सी तरंदा जब फैली मूर्छित मानस पर, तब अभिन्न प्रेमास्पद उसमें अपना चित्र बना जाता।
2: बहुत
1: श्री आशीष दशोत्तर रतलाम।
3: बहुत बहुत धन्यवाद भाटी जी, अपने एक गीत के साथ उन अतिथियों के महत्व को रेखांकित कर रहा हूं जिन्हें आजकल भुला दिया गया है।
1: स्वागतम भाई।
3: मुदित मुदित

0: और अगला बंद देखें,
1: स्वागत भैया।
0: अभिनंदन अतिथि का करना यह सौभाग्य हमारा है, अल्प समय में बहुत सहजता का सत्कार हमारा है।
2: अच्छे,
1: बहुत बढ़िया,
0: आप हम

0: होती है।
1: क्या बात,
0: पुण्य उदित होता है जिसके द्वार पे दस्तक होती है। और एक सरोकारों का गीत हमारा
1: स्वागत है,
0: स्वच्छता को लेकर पूरे देश में
2: अभिनंदन, प्रासंगिक गीत अभिनंदन।
0: तो हमारा भी कुछ दायित्व है कि हम अपनी
1: रचनाओं के बिल्कुल
0: कोशिश करें। सारी दुनिया को वो ही भाता है,
1: सारी दुनिया को ही भाता है,
0: सारी दुनिया को वो ही भाता है, स्वच्छ संसार जो बसाता
2: है। बहुत अच्छे आशीष जी, बहुत अच्छे।
1: क्या बात है,
0: स्वच्छ संसार जो बसाता है,
2: वाह वाह।
0: अपने परिवेश को बचा कर जो, अपने परिवेश को बचा कर जो, अपना परिवार वो बचाता है।
1: बहुत बढ़िया है,
2: बहुत अच्छा,
1: बहुत बढ़िया।
0: अपना परिवार वो बचाता है, अपने कर्तव्य को निभा कर वो, अपने कर्तव्य को निभा कर वो, अपना अधिकार भी तो पाता।
1: क्या बात है,
2: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है आशीष भाई, स्वागत है,
1: स्वागत भी है।
0: साफ तन मन को खूब कर करके,
2: वाह।
0: साफ तन मन को खूब कर करके, साफ जीवन को भी बनाता है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया।
0: साफ अपनी समझ को रखता है, साफ अपनी समझ को रखता है, और सबको यही बताता है।
2: बहुत अच्छा,
0: आखिरी बंद देख लें,
2: स्वागत
1: है।
0: स्वच्छ आशीष।

0: है,
1: बहुत अच्छा है,
2: बहुत बढ़िया,
0: सारी दुनिया को वो ही भाता है,
2: क्या बात है,
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
2: बहुत
1: एक बहुत प्रासंगिक गीत के लिए आशीष जी आपका अभिनंदन,
0: बहुत धन्यवाद।
1: युग कवि और युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्र है,
0: क्या बात,
1: हिमालय इसका मस्तक, गौरी शंकर शिखा कश्मीर की रीठ है, पंजाब और बंगाल दो इसके मजबूत कंधे हैं, दिल्ली इसका दिल है, नर्मदा करधनी है, सागर इसके पखपखारता है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह वंदन की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है और बिंदु बिंदु गंगा जल। तो मैं उज्जैन से ही पधारे भाई विकास चौरसा जी से कहूंगा इन पंक्तियों के साथ कि हम सब है भारतीय, हमें रहना है इस तरह गुलदस्ते में सजाए गए फूल जिस तरह, उनका एक गीत है भारत विषय पर।
2: आदरणीय अध्यक्ष जी को और हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं को नमन करते हुए अपनी यह रचना प्रस्तुत कर रहा हूं।
1: स्वागत भाई।
2: यह भारत भूमि की पुण्य धरा, पावन पूजित कण कण माटी, तन मन अर्पण जीवन है इसे, रही मातृ समान सदा परिपाटी।
1: बहुत अच्छा है।
2: यह

0: परिपाटी। इस रिश्ते से हम पुत्र हुए और पुत्र का फर्ज निभाएंगे, अवसर मिले तो इसके लिए बलि वेदी पर चढ़ जाएंगे।
1: बहुत अच्छा है विकास जी,
0: अवसर मिले तो इसके लिए बलि वेदी पर चढ़ जाएंगे। अगला बंद है, ज्ञान और विज्ञान यहाँ पर दोनों ही एक साथ चले, ज्ञान और विज्ञान यहाँ पर दोनों ही एक साथ चले, जपसी तपसी हम श्रमधारी हैं, भाग्य हमारे फूले फले।
1: वाह वाह।
0: इस रिश्ते से हम शुभ चिंतक, इस रिश्ते से हम शुभ

0: भूमि की पुण्य धरा,
1: वाह वाह,
0: पावन पूजित कण कण माटी, तन मन अर्पण जीवन है इसे, रही मातृ समान सदा परिपाटी।
1: बहुत अच्छा चौरसिया जी।
0: कहीं नित्य है कहीं न्यायाधिपति, कहीं किसान बने हम डोल रहे, कहीं शिक्षा के मंदिर में हम प्राण में अमृत घोल रहे,
1: वाह वाह,
0: कहीं शिक्षा के मंदिर में हम हर प्राण में अमृत घोल रहे, इसे रिश्ते सम से हम कर्णधार।

0: दी पर चढ़ जाएंगे।
1: बहुत अच्छा है।
0: यह भारत भूमि की पुण्य धरा, पावन पूजित कण कण माटी, तन मन अर्पण जीवन है इसे रही मातृ समान सदा।

0: पर चढ़ जाएंगे, अवसर मिले तो इसके लिए बलि वेदी पर चढ़ जाएंगे।
1: बहुत अच्छा विकास जी, बहुत अच्छा।
0: एक छोटी सी रचना लाया हूं,
1: स्वागत।
0: और भी उन्नति की राह पर है सद्भावों का दौर है, उन्नति की राह पर यह सद्भावों का दौर है, आओ मिल आगे बढ़े हम प्रगति की ओर है।
2: क्या बात है, बढ़िया है।
0: उन्नति की राह पर है सद्भावों का दौर, आओ मिल आगे बढ़े हम प्रगति की ओर, हम प्रगति की ओर बढ़े हिल मिलकर सारे, श्रम के बूते आज फले हैं कर्म हमारे।
1: क्या कहना है,
0: खुशियों की ज्योति हर घर में जल रही, खुशियों की ज्योति हर घर में जल रही, वसुधै कुटुंबकम की देखो देश में हवा चल रही।
1: बहुत अच्छा है।
0: हितकारी हर योजना नित नई बहार, हितकारी हर योजना नित लाए नई बहार, तत्पर सदा विकास में है भारत सरकार।
1: वाह।
0: है भारत सरकार हो मजबूत लोकतंत्र, आत्मनिर्भर भारत रहे यही सच्चा है मंत्र।
1: बहुत अच्छा।
0: यही सच्चा है मंत्र, विश्वास कर चलते रहो सपने का हो साकार, विश्वास कर चलते रहो हो सपने साकार, सबका साथ की भावना सबके मन में प्यार।
1: क्या कहना है,
0: सबके मन में प्यार।
2: क्या बात,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और ये चौरसिया जी की रचनाएं हमने अभी सुनी, और आइए अब आज की इस काव्य कलश का संचालन करें सूत्रधार हमारे इस गोष्ठी के, देश के वरेण्य कवि जो अपनी कविताओं के जरिए सभी को आनंदित करते हैं, सभी के मन में काव्य के प्रति प्रेम जगाते हैं, उन्हें हम आवाज़ दें इन पंक्तियों के साथ कि हम बदले समय की धारा मौसम का रंग बदलें।
1: वाह।
3: हम बदले समय की धारा मौसम का रंग बदलें, हम बदलें दुनिया का चलन जीने का ढंग बदलें।
1: वाह वाह।
3: दुनिया हमें ना अपनाए तो दुनिया नहीं बसाएं, आओ ऐसा गीत गाएं। मेरी मुराद है श्री अशोक भट्टी जी से, वे आए आज के इस गोष्ठी को अपनी रचनाओं से और ऊंचाइयां प्रदान करें। भट्टी जी
0: स्वागत।
1: धन्यवाद आशीष जी,
0: स्वागत।
1: मित्रों, रामकृष्ण को हम पौराणिक संदर्भों में देखते हैं वो ठीक है,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन वर्तमान संदर्भों में राम के द्वारा जो मील के पत्थर स्थापित कर दिए गए, जो प्रमाण स्थापित कर दिए गए हैं, प्रामाणिक बिंदु स्थापित कर दिए गए हैं, जब तक धरती रहेगी वही याद आएंगे, चाहे प्रतीक मिठास का हो या प्रतीक मजबूती का हो।
0: जी बिल्कुल।
1: हमने बहुत कुछ देखा, नई पीढ़ी को कई चीजें याद नहीं, नई पीढ़ी ने कई चीज देखी नहीं है,
0: बिल्कुल,
1: जैसे चौका चूल्हा नई पीढ़ी को याद ही नहीं क्या होता है। तो मैं सीधे सीधे अपनी कविता शुरू करता हूं।
0: स्वागत है।
1: पसर गई कड़वाहट जब से, रिश्तों के उलझे ढेर में, मिठास ढूंढते आज राम जी फिर शबरी के बेर।
0: क्या बात है,
2: क्या बात,
0: बहुत
1: हुई दिवंगत खातिरदारी, बिसर गए पकवान यहाँ, विस्की रम के दौर जहां हो, रोता है जलपान वहां, थाली पर क्यों धूल जमी, मनुहार सुबक कर कहती है, स्वाद ढूंढती सभी जुबाने, बेस्वाद घरों में रहती है।
0: क्या बात।
1: तो हल्दी बोल रही मिर्ची से, मिर्ची बोल रही हल्दी से, हम मिलेंगे कितनी देर में, मिठास ढूंढते आज राम जी फिर शबरी के बेर।
0: क्या बात है।
1: पीले चावल हवा हुए, मनुहार भेजना भूल गए, रीत रिवाज अब आमंत्रण के सब फंदे पर झूल गए, ना इत्र लगा ना गले मिले, ये कैसा सम्मान हुआ, समधी का अगर सुना है पर रोशन एक उद्यान हुआ।
0: क्या बात।
1: तो बिन ब्याह आंगन बोल रहा, बिन ब्याह आंगन बोल रहा, हम सजेंगे कितनी देर में, मिठास ढूंढते आज राम जी फिर शबरी के बेर।
0: क्या बात।
1: और आपके करीब पहुंचता हूं
2: जी।
1: चकले पर चलते थे बेलन, औकात स्वयं की तोल रहे, चूल्हा टूट गया कोने का, लकड़ी कंडे बोल रहे।
0: क्या बात।
1: तो नहीं फूलती आज रोटियां, माँ जो रोज बनाती थी, धनिये की चटनी के संग वो कितने कोर खिलाती।
0: क्या बात है।
1: गोबर से लिपता था चौका, अब ग्रेनाइट के फेर में, मिठास ढूंढते आज राम जी फिर शबरी के बेर में। अब एक मजबूती का प्रसंग और देखिए कविता की अंतिम पंक्तियों में।
0: स्वागत।
1: मृदंग मंजीरे भूल गए, अब होता क्यों शंखनाद नहीं, वीणा की रुंझन खोई है, वंशी का स्वर भी याद नहीं, बिन बिंदिया के भाल दिखे, कॉन्वेंट एजुकेशन, बिन बिंदिया के भाल दिखे, पांव से बिछिया गायब है, लड़कियां माड़ने भूल गई, आंगन से तुलसी गायब है।
0: क्या बात।
1: तो संस्कार मजबूती ढूंढे, संस्कार मजबूती ढूंढे, अंगद जी के पैर में मिठास ढूंढते आज राम जी, फिर शबरी के बेर में, फिर शबरी के बेर। तो दोस्तों, हम चार कवियों ने इस काव्य कलश प्रोग्राम में आपको कविताएं प्रस्तुत की, और चूंकि हम हिंदी में कविताएं पढ़ते हैं, पर हम हिंदी पर कविता कई बार नहीं पढ़ते हैं, तो हम सब कवियों का दायित्व कि हम हिंदी पर भी कविता पाठ करें।
0: बिल्कुल।
1: मैं भारत की समस्त भाषाओं को यदि आभूषण मानकर एक कविता आपको प्रस्तुत करूं, तो वो कुछ इस तरह होगी। आप ये देखें कि कौन सा आभूषण कहां पहना जाता है, या उस आभूषण की विशेषता क्या है।
0: स्वागत।
1: पसर गई कड़वाहट जब से रिश्तों के उलझे ढेर में, बड़े गर्व से कहता निश्चल निर्मल मन, भारत माँ को आज सजाएं भाषाओं के आभूषण।
0: क्या बात है।
1: बाजूबंद उर्दू के बांधे, हाथों में गुजराती कंगन,
0: क्या बात।
1: उड़िया के कुंडल, कानों में मलयाली पायल की छनछन, तमिल मुद्रिका, नथ पंजाबी, असमी बड़ी सयानी है, पैरों में है कन्नड़ बिछिया, चूनर राजस्थानी।
0: क्या बात है।
1: बालों पर है चमक डोंगरी, माथे पे हरियाणवी लाली, कमर पे साजे कर धनी तेलुगु, हार गले का बंगाली। तो सब भाषाएं सभी बोलियां भारत माँ की थाती हैं, बहुत मधुर है मणिपुरी भी, मीठी सिंधी मराठी है। और जिस बात के लिए कविता लिखी, भाषाओं के आभूषण से, भाषाओं के आभूषण से यूं श्रृंगार तो पूरा है, पर हिंदी की बिंदी के बिन सब श्रृंगार अधूरा।
0: क्या बात।
1: पर हिंदी की बिंदी के बिन सब श्रृंगार अधूरा है। चूंकि राम पर कविता पढ़िए, मैं आपको कृष्ण पर कुछ पंक्ति सुनाता हूँ।
0: जी बिल्कुल,
1: है ना।
0: स्वागत।
1: कृष्ण की शाश्वत आदतों, हमारी शाश्वत आदतों पर कृष्ण का प्रश्न और घंटी का उत्तर। मेरी 2 मिनट की कविता एक और सुने।
0: स्वागत।
1: कुछ लोग कहते हैं कृष्ण माखन चोर थे, कुछ कहते हैं कृष्ण चित चोर थे, वृंदावन की गोपियां कृष्ण को रंगे हाथ चाहती थी पकड़ना, ताकि यशोदा मैया छोड़ सके अकड़ना। मैया कहती थी कि मेरा कहना केवल गायों को चराता है, और गोपियां कहती थी आपका कहना तो माखन चुराता है। तो सब गोपियों ने एक जुगत निकाली, सबने माखन मटकी के साथ आरती के समय बजने वाली एक एक घंटी लटका दी, और कमरों में तालों के बजाय केवल कुंडी अटका दी। कृष्ण पहले तो करते रहे हंसी ठट्ठा, फिर गोप ग्वालों को करके इकट्ठा, माखन चोरी के लिए एक घर में किया प्रवेश, घंटी को बंदे देखा तो घंटी को दिया आदेश, ए घंटी मैं कृष्ण तूने मुझे पहचाना। घंटी बोली प्रभो मैं आपको पहचान गई हूं, आप 3 लोकों के स्वामी हो इतना जान गई हूं। तब कृष्ण ने कहा देख अपने मूल स्वभाव को तजना, मैं माखन चोरी करूंगा आज बिल्कुल मत बचना।
0: क्या बात।
1: घंटी बोली प्रभो इतनी मेरी औकात नहीं है, और 3 लोकों

0: की आज्ञा की अवहेलना करूं इतनी मेरी बिसात नहीं है।
1: क्या बात है।
0: तो कृष्ण मन सुखा के कंधे पर चढ़े, घंटी नहीं बजी। कृष्ण के हाथ माखन मटकी की ओर बढ़े, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने मटकी को हिलाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने माखन गोप ग्वालों को खिलाया, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने दूसरी मटकी पर हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने मटकी में से माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। और कृष्ण ने माखन जैसे ही अपने मुंह में डाला, घंटी बजने लगी।
1: क्या बात।
0: कृष्ण है नाराज, घंटी तेरे कारण ही रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा आज। तब घंटी ने उत्तर दिया, ये 16 कलाओं के मालिक को 16 पंक्तियां भेटती, 15 पंक्ति समाप्त हो गई, एक पंक्ति कविता जो 16 पंक्ति है वो आती है अब। कृष्ण है नाराज, घंटी तेरे कारण ही रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा आज। तब घंटी ने उत्तर दिया, प्रभो सालों साल का मेरा शाश्वत स्वभाव कभी सो नहीं सकता। सालों साल का मेरा शाश्वत स्वभाव कभी सो नहीं सकता। अरे तीन लोकों का स्वामी स्वयं भोग ग्रहण करे और मैं बजू नहीं, ऐसा
1: क्या हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया प्रसंग।
0: तो हम चार कवियों ने आपका कविताओं से आपका मनोरंजन किया कि हरा शजर न सही खुश्क घास रहने दे, तू जमी के जिस्म पर कोई लिबास रहने दे, कहीं ना राह में सूरज का कहर टूट पड़े, तू अपनी याद मेरे आसपास रहने दे। तो सावन भादों की रिमझिम किसे कहते हैं, दिन भर सूरज चमकने के बाद शाम कहाँ चला जाता है, सुबह सुबेड़ की टहनियों पर ओस की बूंदे कौन टांग जाता है, और चांद सारी रात किसका इंतजार करता है। इन बातों का उत्तर दे सकता है तो कोई कवि दे सकता है। ऐसे ही आज चार कवि आकाशवाणी इंदौर केंद्र में उपस्थित हुए कविता सुनाने के लिए, श्री अतुल दवे जी जो इंदौर से ही हैं, श्री आशीष दशोत्तर जी जो वरिष्ठ कवि हैं रतलाम से, और विकास चौरसिया जी जो मेरे शहर उज्जैन से ही हैं, और मैं कवि अशोक भाटी उज्जैन। तो हम चार कवि और आकाशवाणी इंदौर आपका हार्दिक धन्यवाद अदा करता है, साधुवाद प्रस्तुत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
2: अभी आप सुन रहे थे कवि गोष्ठी, प्रतिभागी थे विकास चौरसिया, अतुल दवे, आशीष दशोत्तर, संचालन कर रहे थे अशोक भाटी। प्रस्तुति सहयोग था सिद्धनाथ सोलंकी का। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में पेश है कलाबाई खारलवा और साथियों का गाया ये लोक भजन।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: लीजिए सुनिए एक और मालवी कृष्ण भजन। कलाकार हैं कलाबाई खरालवा और साथी।

सुगम संगीत में आज आप सुन रहे हैं सोनू निगम के गाए पॉप गीत। लीजिए सुनिए एक और पॉप गीत। कलाकार हैं सोनू निगम।

सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे सोनू निगम के गाए पॉप गीत। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुत है पंडित निखिल बनर्जी का सितार पर बजाया राग भटियार।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे पंडित निखिल बनर्जी का सितार पर बजाया राग भटियार। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 10 बजने को हैं जिले की चिट्ठी, कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए सुनिए कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख है राकेश चतुर्वेदी का, वाचन स्वर है रत्नेश सोनी के।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी, वाचन स्वर रत्नेश सोनी। कटनी जिले में भी पिछले एक सप्ताह से झमाझम बारिश हो रही है। मानसून के शुरुआती दौर में कम बारिश होने से जहां जिले के लोग चिंतित थे, अब इस बारिश से लोगों के चेहरे में खुशी देखी जा रही है। जिले में 1 जून से 3 सितंबर तक कुल 745 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल इस अवधि के दौरान जिले में 939 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। अभी भी जिले में पिछले साल की तुलना में 20% कम बारिश हुई है। जिले के 99 लघु और 1 मध्यम जलाशय में पानी लगभग भर गया है। कटनी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय पर झिंझरी स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कलेक्टर आशीष तिवारी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। जिले में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। कटनी जिले में वन महोत्सव के उपलक्ष्य में वन विभाग एवं स्व सहायता समूह के द्वारा जिले भर में वृद्ध वृक्षारोपण किया जा रहा है। वन मंडल अधिकारी गर्वित गंगवार ने बताया कि जिले के 6 वन रेंजों में 47 स्थान पर वृद्ध वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है लगाए जाएंगे और लगभग 4 लाख पौधे पुराने वृक्षारोपण स्थल पर लगाए जाएंगे। कटनी

में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने एवं उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक लोक कल्याण मेला आयोजित किया जा रहा है। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिनव विश्वकर्मा ने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से विशेष मेगा कॉम्बिंग ऑपरेशन संचालित किया गया। इस दौरान 118 कुल वारंटियों की गिरफ्तारी भी की गई। अवैध शराब के परिवहन, विक्रय एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए 16 प्रकरण आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किए गए तथा संबंधित आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। कटनी में रक्षाबंधन पर्व पिछले दिनों संपन्न हुआ। बारडोली उत्सव समिति द्वारा गाटर घाट में 2 दिवसीय कजलिया मेले का आयोजन हुआ। कटनी के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवा कनेक्ट संवाद के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा सहित जनप्रतिनिधि, खिलाड़ी, युवा एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक बड़ी संख्या में शामिल हुए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की तैयारियों के तहत नगर पालिक निगम कटनी द्वारा स्वच्छता के प्रति नागरिकों एवं सफाई मित्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। महिला समूहों के साथ जनसंवाद एवं बैठक आयोजित की गई। सफाई मित्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें सुरक्षित एवं बेहतर स्वच्छता कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया। कटनी में आपदा मित्र योजना के अंतर्गत 150 स्वयंसेवियों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, आकाशीय बिजली, चक्रवात, बादल फटना एवं सूखा आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कटनी में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 बीबीजी रामजी के अंतर्गत जिला स्तरीय पंच सम्मेलन संपन्न हुआ। विधायक बड़वारा धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने कहा कि ग्राम का विकास प्लान तैयार करते हुए जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों और वृक्षारोपण कार्य को प्राथमिकता से कराया जाए। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने विकसित भारत जी रामजी योजना के कानून, नियमों और प्रावधानों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कटनी जिले के सभी 1713 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में विकसित किए जाने की वृहद कार्य योजना कटनी महिला बाल विकास विभाग ने तैयार की है। बच्चों के मानसिक विकास के लिए प्ले स्कूल की तरह पजल गेम, खिलौने, कठपुतली और स्मार्ट गतिविधियों पर जोर दिया जा रहा है। समग्र ई KYC अभियान में कटनी जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। गर्भवती धात्री माताओं, अन्य महिलाओं व किशोरियों को पोषण मटका सजाकर पोषण आहार के महत्व के बारे में जानकारी आंगनबाड़ी केंद्रों में दी जाएगी। इसी के साथ कटनी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो, एमएच हॉटलाइन।

0: हेलो हेलो MH हॉटलाइन
1: कार्यक्रम में स्वागत है। जुड़ते हैं हमारे आज के पहले कॉलर से। हेलो हेलो
2: MH हॉटलाइन।
1: हाँ जी बोलिए।
2: गाना सुनना है सर।
1: बताइए कौन सा गाना सुनेंगे।
2: पालदा नाका इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताएं
2: जी। शुक्रिया।
1: गाना बताएं कौन सी फिल्म का सुनना चाहते हैं।
2: दिलवाले फिल्म का है। कितना सिंह चेहरा कितनी प्यारी आंखें।
1: जी और बताएं कैसा चल रहा है आपका मौसम।

0: हम क्या बोल रहा है आपके यहाँ?
1: सब ठीक चल रहे है?
0: बारिश हो रही है?
1: बारिश तो क्या, अपना इंदौर तो एक ही है
0: हाँ, काफी समय बाद बारिश।
1: जो
0: इंदौर में भी तो
1: आवाज
0: अलग
1: आपको
0: अलग
1: पता है वो
0: होती,
1: आपको भी रहेगा।
0: इंदौर में भी तो अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे
1: हाँ, लेकिन
0: कम
1: आपको
0: ज्यादा
1: तो पास
0: बारिश
1: पास में
0: होती।
1: ही है।
0: हाँ जी, लीजिए सुनिए आपकी पसंद का गीत।
1: शुक्रिया।

0: हेलो हेलो
1: हाँ जी सर।
0: जी बताएं।
1: सर नमस्कार सर, मैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील गांव नारगढ़ से बोल रहा हूँ, बंटी माली।
0: नमस्कार जी बंटी जी, स्वागत आपका।
1: सर सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरा पहली बार कॉल लगा है सर, मैं 2002 से रेडियो सुन रहा हूँ।
0: अच्छा
1: जी जी सर, बड़ा शौक है सर, और मैं अभी अगले महीने की 5 तारीख को नया रेडियो लाऊँ सर खरीद के।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: जी जी सर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहेंगे बंटी भाई?
1: सर मेरे को सुनना है वो इसका सबक मूवी का बरकरानी जरा जमके बरसो।
0: अच्छा जी, और कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मना रहे हैं बंटी भाई?
1: बहुत सब तैयार सर चल रही है सर, ये हमारे भतीजी गुड़िया सब तैयारी कर रही है सर, यहाँ पे बहुत अच्छा मना रहे सर जन्माष्टमी, यहाँ पे हमारे गांव नारगढ़ में।
0: अच्छा, मटकी फोड़ का आयोजन करते हैं?
1: जी सर
0: मटकी
1: हाँ
0: फोड़
1: करते
0: का
1: हैं सर। जी
0: कहाँ
1: जी सर,
0: पर?
1: हर मोहल्ले के हिसाब से करते हैं सर।
0: अच्छा, मोहल्ले में अलग अलग जगह करते हैं।
1: जी जी सर, मैं फेसबुक पे रिव्यू बनाता हूँ देसी किसान के नाम से, तो सर
0: अच्छा,
1: मेरे फॉलोअर भी अच्छे हैं फेसबुक पे, 152,000 फॉलोअर सर मेरे,
0: वाह वाह।
1: और इंस्टाग्राम पे भी सर 34,000, और फेसबुक पेज पे भी 52,000। अच्छा, लोगों को प्यार मिलता है, सबका आशीर्वाद मिलता है सर, और बाहर से मिलने भी आते हैं मुझे घर पे।
0: अच्छा जी, ठीक है, बात करके अच्छा लगा, आपकी पसंद का गीत सुनिए।
1: जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। मैं अनिल भंडारे सुजामा नगर से बोल रहा हूँ।
0: भंडारे साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताएं
1: आपको आपको और आपके पूरे परिवार का आकाशवाणी जन्माष्टमी की हमें और शुभकामनाएं।
0: आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको भी कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।
1: जन्माष्टमी का कार्यक्रम अन्नपूर्णा मंदिर में बहुत आन बान शान से मनाया जा रहा है।
0: क्या बात है।
1: रात को 12 बजे हम जन्म होगा, प्रसाद वितरण होगा, रात भर कार्यक्रम चलेगा।
0: जी,
1: भजन भजन कीर्तन रात भर चलेगा यहाँ पे कार्यक्रम में।
0: जी जी जी। गाना कौन सा सुनना चाहेंगे साहब?
1: हम नई दिल्ली का गाना।
0: नई दिल्ली।
1: नई दिल्ली मुरली बेरन भाई ओ कन्हैया तोरी मुरली बेरन। लता मंगेशकर का दिल्ली गाना है। शंकर जयकिशन का म्यूजिक है, चरण का गीत है।
0: अच्छा जी।
1: हेलो।
0: हाँ जी साहब,
1: शरणदत्त का गीत है, शंकर जी का संगीत पुराना, बहुत पुराना गीत है, लता का बहुत सुरीला गाना है।
0: ठीक है, सुनिए आपकी पसंद का गीत।
1: थैंक यू वेरी मच।

0: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: जी बताएं प्रेम सिंह जी, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: कृष्ण कन्हैया का कोई सा भी सॉन्ग सुनवा दीजिएगा, और अगर आपके पास में हो तो वो सुनवा दीजिएगा, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, या फिर एक वो भी है एरे कन्हैया तो किसको कहेगा तू मैया। अभी मौसम कैसा है सर आपके वहाँ?
1: बारिश हो रही काफी, आपके इधर कैसा है?

0: दोस्ती भी रहेगी और मतलब कान्हा जी के लिए मटकी भी फोड़ी जाएगी जन्माष्टमी मनाने के बाद में 12 बजे बाद।
1: अच्छा, प्रसाद वितरण भी होगा।
0: प्रसाद वितरण भी होगा और सभी अपने अपने घर से कृष्णा जी को मतलब भोग लगाने के लिए मिठाई बनाकर लाएंगे। हमने भी बनवाए हैं यहाँ पर भगवान जी के वो के लिए कान्हा जी के लिए।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है ना, आपकी पसंद का गाना मिल गया, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत, यशोमती मैया से बोले। ठीक है जी, सुनिए।
0: जी ठीक है सर, आपको सभी श्रोताओं को जन्माष्टमी की ढेर सारी
1: शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं जी।

0: हेलो नमस्कार।
1: हेलो नमस्ते।
0: नमस्कार, कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से बोल रहा हूँ, शेख हैदर खान।
0: हैदर खान साहब, आपका स्वागत कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ सर अभी तो।
0: जी जी जी, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे हैदर साहब?
1: ये लता जी के आज में गीत है, फिल्म का नाम है संजोग।
0: जी जी जी,
1: तो सबसे पहले तो मैं आपको गाना बता दूं, यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला।

0: रहा है
1: जी,
0: इसके गीत के बोल है वो सबसे पहले पूरे आकाशवाणी परिवार और सभी श्रोता बंधु को मेरी ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना।
0: हाँ,
1: खेती बाड़ी क्या बोल रही है हैदर साहब आपकी?
0: सर खेती बाड़ी तो अभी रात में पानी गिर गया आज तो
1: जी।
0: हाँ, और अभी करीबन वो बुधवार को भी पानी गिर गया था।
1: ठीक है, फसल अच्छी है?
0: हाँ फसल अच्छी है सर, अभी तो फिलहाल तो।
1: क्या लगाया, सोयाबीन?
0: बस सोयाबीन है फिलहाल सभी तो, या तो।
1: मक्का नहीं बोते हैं आप लोग?
0: नहीं, मक्का तो बस थोड़ी बहुत तो खाने के लिए घर के पास में बोते हैं।
1: अच्छा,
0: हाँ।
1: दूसरी फसल की क्या तैयारी, पानी कम गिरा इस साल?
0: हाँ सर, अभी देखें, अभी तो बारिश बाकी है।
1: चलिए, आपकी पसंद का गाना मिल गया, सुनवाते हैं हैदर साहब।
0: ओके ओके, थैंक यू, है ना सर,
1: वेलकम।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार सर, मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी डोंगरगांव मऊ से। और सबसे पहले तो समस्त आकाशवाणी परिवारों, सभी श्रोता भाई बहनों को मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: जी सर, आज कुछ सुनना है, फिल्म का नाम है अपने पराए और इसका गीत है यशुदास की आवाज में है और गाने के बोल है जाम रंग रंगारे हर

0: क्या बात है।
1: ये गीत सुनना है
0: जी। जी जी जी मिल गया आपकी पसंद का गीत, सुनिए।
1: जी जी जी धन्यवाद। नमस्कार
0: नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: सर, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: जन्माष्टमी की पूरे आकाशवाणी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल में हो।
0: आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। नाम बताइए आपका।
1: सर, गजराज लोधी बात कर रहा था, रेलाई राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा, कौन सा गाना सुनना
1: जी
0: चाहेंगे आप?
1: सर, कृष्ण कन्हैया मूवी का सुनना चाहेंगे।
0: अच्छा,
1: ये हो
0: आप
1: या
0: क्या
1: सोना
0: करते
1: मैया
0: हैं
1: की।
0: गजराज जी?
1: सर, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और जो साथ साथ समरसीबल है ना, खेतों के लिए जो पंप,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: उनकी
0: बोरिंग,
1: रिपेयरिंग करते हैं सर।
0: बोरिंग के पंप। हाँ,
1: जी।
0: तो उनका रिपेयरिंग का काम है आपका।
1: जी सर।
0: ठीक है, शॉप कहाँ है आपकी?
1: सर गांव में ही है,
0: अच्छा,
1: और शॉप पे आपका मोबाइल एप्लीकेशन पे रेडियो सुनता हूँ।
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
1: जी
0: ठीक है, आपकी पसंद का गाना मिल गया, सुनिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया।
0: आपका धन्यवाद।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी
1: रेलवे चोट लाइन जी,
0: हाँ जी बोलिए।
1: आदाब, नमस्कार सर।
0: आदाब नमस्कार। कौन साहब बात कर रहे हैं?
1: मोहम्मद यूनुस खत्री बोल रहा हूँ, छिपा कॉलोनी खंडवा से, और आपसे पहली बार मुलाकात हो रही। बहुत बरसों से तमन्ना थी आपसे बात करने की।
0: जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताएं क्या सुनना चाहेंगे खत्री साहब?
1: जी मुझे सुनना है फिल्म नागिन का गीत,
0: जी
1: तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है।
0: जी जी जी
1: बहुत बढ़िया गाना है,
0: जी
1: अच्छी फिल्म भी अच्छी थी, गाने भी अच्छे हैं,
0: जी
1: और आपसे बात आज पहली बार हो गई है तो हमारा भी दिल खुश हो गया थोड़ा सा।
0: जी क्या करते हैं साहब आप? खत्री साहब
1: पर मेरा कपड़े का, साड़ियों का बिजनेस है
0: खंडवा में?
1: जी, खंडवा में भी है, सूरत में भी है सर,
0: अच्छा दोनों जगह
1: होलसेल
0: है।
1: का रिटेल का दोनों का जी। इंशाल्लाह
0: जी
1: बस रेडियो पे सुनते रहते हैं, गिराकी करते रहते हैं, रेडियो
0: वाह वाह
1: चलते रहता है,
0: जी
1: आते कस्टमर वो भी अच्छे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे गीत वो भी सुन लेते हैं,
0: क्या बात।
1: फिर वो भी तारीफ करते हैं कि भाई रेडियो भी एक ऐसी चीज है, देखो हमारी अभी ये बेन हंस रही है, संगीता
0: जी
1: बेन, वो भी साड़ी लेना है तो वो भी देखो हंस रही है कि सही बात है, चाचा सही बोल, देखो क्या बोल रही है वो सुनो।
0: लाइव बात कर रहे हैं। जी जी बताएं।
2: हाँ जी, मैं भी गाने सुनती हूँ आपके दिन भर, है
0: वाह रेडियो में यही तो कि आप
2: ना।
0: काम भी कर सकते हैं और अपना मनोरंजन भी चलता रहता, साथ में
2: हाँ
0: डिस्टरबेंस नहीं रहता।
2: जी,
0: पूरा ध्यान नहीं दें, आप काम भी कर लें और गाना भी सुन लें
2: हाँ, वही
0: और
2: वही हमारे
0: जानकारियां
2: यहाँ
0: भी
2: दिन भर
0: मिलती
2: चलते
0: रहती हैं।
2: रहते हैं
0: जी
1: ये जो है ना, हमारे कस्टमर भी सुनते हैं
0: वाह
1: और इनको बोलते भी हैं, मतलब बेचारे सुनते भी हैं,
0: जी जी
1: है ना।
0: ठीक है। आपके
1: चलो
0: पसंद का
1: ठीक,
0: गाना मिल गया तो सुनिए।
1: जी।

0: इस गीत के साथ ही आज का MH हॉटलाइन कार्यक्रम खत्म करने की इजाजत दीजिए आसिफ अली को। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: हेलो हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उस्ताद सलीम अल्लाह वाले का गजल गायन। संगीतकार हैं तबला पर उस्ताद मोहम्मद नईम, वायलिन पर मनोज कुमार बमरेले, गिटार पर मोहम्मद अरशद और सिंथेसाइजर पर शाहिद मासूम।
1: ये आकाशवाणी है। आज के क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के पहले भाग में आप सुनेंगे उस्ताद सलीम अल्लाह वाले का गजल गायन।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक यू विल लिसन टू अ गजल रिसाइटल बाय उस्ताद सलीम अल्लाह वाले।
1: उस्ताद सलीम अल्लाह वाले का जन्म मध्य प्रदेश के देवास में एक संगीत परिवार में हुआ। उन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु से अपने पिता और गुरु उस्ताद दद्दू खां साहब से गजल गायन की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने आगरा और पटियाला घरानों के महान उस्ताद हाजी अमीर मोहम्मद खां साहब से शास्त्रीय गायन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे देश के एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आकाशवाणी महानिदेशालय नई दिल्ली द्वारा गजल गायन और तबला वादन दोनों विधाओं में टॉप ग्रेड से सम्मानित किया गया है। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले को बचपन से ही गजल गायन के प्रति गहरा लगाव रहा है। उनके द्वारा रचित गजलें शास्त्रीय रागों पर आधारित हैं। उन्होंने देश के अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संगीत समारोहों में गजल गायन प्रस्तुत किया है। इनमें देहरादून का विरासत समारोह, हैदराबाद का आलाप गजल समारोह और बज़्मे गजल तथा भोपाल के भारत भवन में संतवाणी समारोह प्रमुख हैं। उनके अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का जश्न उर्दू, भोपाल का बेगम ऑफ परी बाजार, जयपुर का सिंजारा समारोह, उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन और लखनऊ महोत्सव शामिल हैं। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले को मध्य प्रदेश कला गौरव पुरस्कार, अभिनव कला सम्मान, संगीत शिरोमणि सम्मान, तालमणि सम्मान, चक्रधर सम्मान और प्राइड ऑफ भोपाल सहित अनेक सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। उस्ताद सलीम अल्लाह वाले वर्ष 2023 में आकाशवाणी भोपाल में स्टाफ आर्टिस्ट के पद से सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 2023 में ही उन्होंने एक साथ 1500 विद्यार्थियों द्वारा तबला वादन करवाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया।
2: उस्ताद सलीम अल्लाह वाले वॉज बॉर्न इन देवास मध्य प्रदेश into a family of musicians. At the tender age of 5, he began his initial training

0: उस्ताद सलीम अल्लाह वाले की आवाज में अब पेश है राजेश रेड्डी की लिखी ये गजल, ऐसे न बिछड़ आंखों से अशकों की तरह तू।
1: नाउ प्रेजेंटिंग अ गजल रिटन बाय राजेश रेड्डी, ऐसे न बिछड़ आंखों से अशकों की तरह तू।

0: आज के इस गजल गायन की अंतिम प्रस्तुति में डॉक्टर बशीर बद्री की रचना परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता।
1: एंड नाउ फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ टुडेज गजल रिसाइटल वी ब्रिंग यू अ गजल रिटन बाय बशीर बद्र परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता।

0: अभी आपने उस्ताद सलीम अल्लाह वाले की गजल प्रस्तुति सुनी। संगत करने वाले कलाकार थे तबले पर उस्ताद मोहम्मद नईम, वायलिन पर मनोज कुमार बमरेले, गिटार पर मोहम्मद अरशद और सिंथेसाइजर पर शाहिद मासूम।
1: यू हैव जस्ट लिसन टू अ गजल रिसाइटल बाय उस्ताद सलीम अल्लाह वाले। ही वॉज अकम्पनीड बाय ऑन तबला उस्ताद मोहम्मद नईम, ऑन वायलिन मनोज कुमार बमरेले, ऑन गिटार मोहम्मद अरशद, ऑन सिंथेसाइजर शाहिद मासूम।
0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी भोपाल में की गई और इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया। इसी के साथ आज के क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के पहले भाग का समापन होता है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड एट आकाशवाणी भोपाल एंड ब्रॉडकास्ट बाय आकाशवाणी दिल्ली। With this, we conclude the first part of today's national program of regional folk and light music.

लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजस्थान के मांड गायक और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार गोपाल सिंह खींची के गाए लोकगीत। गोपाल सिंह खींची ने गायन की शिक्षा मांड गायक चिरंजी लाल तंवर, शमसुद्दीन और बनारसी बाबू से प्राप्त की है। आपने कई विदेशी मंचों पर भी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। आप गायन के अलावा तबला और नगाड़ा वादन की भी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। आपने कई सम्मान भी प्राप्त किए हैं। आइए अब सुनते हैं उन्हीं के गाए लोकगीत।

0: लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजस्थान के मांड गायक गोपाल सिंह खींची के गाए लोक गीत। ये प्रस्तुति आकाशवाणी जयपुर की थी।
1: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश इस घंटे की खास खबरें। प्रदेश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व भक्तिभाव और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज 55 जिलों के 111 स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पावन अवसर पर परशुराम श्री कृष्ण लोक का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस की बधाई दी है। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि समाज सेवा, समरसता और सांस्कृतिक चेतना को जगाने में संगठन की भूमिका सराहनीय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज सीहोर में बढ़ियाखड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक नई पावर ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान कंपनी के पहले ट्रांसफार्मर का रोल आउट भी होगा। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान अंतर्गत दूरस्थ जिलों का भ्रमण कर शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश द्वारा विकसित सुमन पंचायत और सुमन सखी चैटबॉट को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट प्रैक्टिस एवं अन्य राज्यों में लागू किए जाने वाले हस्तक्षेप के रूप में मान्यता मिली है। प्रदेश में पहली बार भोपाल देवास मार्ग के फंदा टोल प्लाजा पर बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम का परीक्षण शुरू किया है। इस व्यवस्था में वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। नगर निगम भोपाल द्वारा साकेत नगर एम्स अस्पताल और भानपुर क्षेत्र से अतिक्रमणों को हटाकर कुल 15 ट्रक विभिन्न प्रकार का सामान जब्त किया है। और पंजाब के लुधियाना में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स एकेडमी के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप श्रोताओं की पहली फरमाइश हमने ली है फिल्म सिलसिला से। स्वर है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों के। शब्द रचना है जावेद अख्तर की और संगीत है शिवहरी का।

सिलसिला फिल्म के इस खूबसूरत गीत को पसंद करने वाले श्रोता थे छत्तीसगढ़ के ततरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानीपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। अगले श्रोता हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद बफ़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। आप सभी श्रोताओं ने लिखा था कि हमें कोई भी अच्छा सा गीत सुनवा दें। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। हमने लिया है फिल्म निकाह से। इस गीत को गाया है सलमा आगा ने, शब्द रचना है हसन कमल की और संगीत है रवि का।

अभी हमने गीत सुनवाया निकाह फिल्म का अपने उन श्रोताओं को जिन्होंने लिखा था कि हमें कोई भी गीत सुना दीजिए। उनके नाम हैं इस तरह से, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। इसी गीत को पसंद किया था गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, लखविंदु संधु, महावीर संधु, गुरचरण, गिरिवर, रमेश और इनका पूरा परिवार, आप सभी ने पसंद किया था कार्यक्रम में ये गीत। अब हमने कार्यक्रम में अगला गीत लिया है फिल्म लावारिश से। कार्यक्रम में हमने अगला गीत लिया है फिल्म प्रेम पर्वत से, सुमधुर आवाज है लता मंगेशकर की। गीत लिखा है जानिसार अख्तर ने और संगीत है जयदेव का। इस गीत को पसंद किया आप सभी ने गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक ने। इसी गीत को पसंद किया है जिला बुरहानपुर मुकाम पोस्ट मोहद से आप सभी ने मुशर्रफ खां तड़बी, जरीना तड़बी, मुबारक तड़बी, परवेज तड़बी, बिटिया रोजमीन, तैमूर तड़बी, रीना मुशर्रफ, रोजुबाई तड़बी, सनी बाबू, परू तड़बी और इनके पूरे परिवार ने। तो आइए आप सभी की पसंद पर हम सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म है लावारिश। स्वर हैं आशा भोसले और किशोर कुमार के। गीत है अनजान का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत को सुनना चाहे मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गभाण, श्रीमती सरिता गभाण, प्रिंस एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत, प्रणीता, अर्जुन, आकार हाइट्स बहादुरपुरा, नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित और कुमारी ध्वनि गभाण ने। इसी गीत को सुनना चाहे जय किसान रेडियो श्रोता संघ कोटड़ा बहादुरपुर जिला मंदसौर से तूफान डांगी, नेपाल डांगी, राहुल डांगी, पप्पूलाल डांगी और विक्रम डांगी ने। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता ने। इसी गीत की फरमाइश की है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजूरिया, गीतारानी जाजूरिया, गगनदीप जाजूरिया और बेबी आरजू जाजूरिया ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न हुआ। इजाजत दीजिए अपनी दोस्त सरिता को, नमस्कार। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय है एक अंतराल का।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आगे सैलरी? नहीं झुमके
4: ना, पहले बचत,
3: पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: आरबीआई कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
8: हाँ हाँ क्यों नहीं,
7: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे दीदी धीरे धीरे।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
6: क्या?
5: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
6: वो कैसे?
5: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: पर सुनेंगे कैसे?
5: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जमुनिया का 17वां भाग।

0: मेहनती और ईमानदार रतन की आत्महत्या के बाद उसकी पत्नी जमुनिया को नवजात शिशु के साथ करण घर से निकाल देता है और एक रहमदिल इंसान छुल्लन बाबा इन दोनों को प्रश्रय देते हैं। जमुनिया के मन में पढ़ने लिखने की प्रबल इच्छा को देखकर छुल्लन बाबा उसे गांव के एक गुरुजी के पास ले जाते हैं, जिनसे शिक्षा लेकर जमुनिया शीघ्र ही पढ़ने लिखने और सोचने विचारने योग्य हो जाती है। तभी गांव की सीट महिला सीट हो जाती है, जिसके लिए दीवान, जो कि सदैव सरपंच रहता आया है, अपनी पत्नी को खड़ा करता है और गांव के लोग जमुनिया के व्यवहार से प्रभावित होकर जमुनिया को खड़ा करते हैं। इसी बीच गांव की लड़की मेघा और उसके दोस्त शिल्पी और जयंत भी गांव आते हैं और वे भी जमुनिया से जुड़ जाते हैं। अंततः जीत जमुनिया की होती है। इस बीच जयंत जमुनिया को चाहने लगता है और अपने प्रेम का बहुत संभलकर इजहार करता है। अब आगे
1: आप लोग शर्मिंदा ना करें, आप लोगों के कारण ही तो ये दिन देखने को मिला है। चलिए, आप सबका आज की पंचायत में स्वागत है। बाबा,
2: बोलो बिटिया,
1: आप इनको जानते हैं? ये कौन है?
2: अरे हाँ बिटिया, जानता हूँ, खूब जानता हूँ। ये दीवान का हिसाब किताब रखते हैं।
1: अच्छा,
2: कहाँ कितना खर्च हुआ इसकी जानकारी इनको रहती है। अरे भाई, ये दीवान के खास कारिंदा हैं।
3: लेकिन ये यहाँ क्यों आए हैं?
4: माफ करना जयंत बाबू, आप तो खुद बाहर के हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं और किस लिए बैठे हैं?
3: आप भी माफ कीजिएगा, मैं जमुनिया जी के साथ आया हूं और ये सवाल आप मुझसे नहीं पूछ सकते। और अगर आप भी दीवान जी के साथ आए होते तो मैं भी आपसे नहीं पूछता या आपके बारे में नहीं पूछता।
1: जयंत बाबू ने

0: बात तो पक्की की है भैया, आप दीवान जी को बुला कर लाओ तो ही हिसाब का लेन देन होगा। आज अगर टाइम ना हो तो फिर दीवान जी से पूछ लो कि वो कब हिसाब देना चाहते हैं, हम उसी दिन आ जाएंगे। पर हिसाब किताब तो उन्हीं को देना होगा।
1: बिल्कुल ठीक कह रही चौनिया,
2: पहुंचा देते हैं दीवान जी के पास खबर।
3: फायरे, कहाँ खबर लाया?
4: मालिक
3: मालिक मालिक का कर रहा है, बोल ना।
4: अरे वो जमुनिया बड़ी घाग है दीवान जी।
3: अच्छा,
4: कुछ चलने ही नहीं देती।
5: हाँ दीवान जी। हाँ,
4: उसने कहा है कि जब तक आप नहीं आएंगे चार्ज का लेन देन नहीं होगा।
3: अच्छा।
5: हाँ?
3: अरे उस ससुरी को चार्ज तो हम अच्छे से दे देते, पर का करें, अरे अभी समय हमारे खिलाफ चल रहा है।
5: तो है,
3: और हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, इसलिए हमें लग रहा है कि मजबूरी में हमें ही जाना होगा।
4: हाँ मालिक, हाँ मालिक।
3: देखा नहीं, जिस तेवर के साथ वो कल गोलू और अपनी उस देवरानी को लेकर गई और 25,000 के कागज फड़वाए, वो दीवान की जिंदगी में भूलने की चीज नहीं है रे। चलो चलत है। पर सुनो।
4: जी जी मालिक।
3: जो तुमने हिसाब किताब तो ठीक से लिख लिया है ना? हाँ का, और ये रजिस्टर, ये कार्ड सब ठीक ठाक तो कर लिए ना?
4: माफ करना दीवान जी, इसमें कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। और अगर इसे गौर से ऑडिट करवाया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे।
3: बहुत सही बच्चू, हमारी मुश्किल के जमाने आ गए, और ये सरकार भी सारी मुसीबतें हमारे लिए ही खड़ी करती है। अरे असली राज तो अब इन्हीं लोगों का है, बस एक शिकायत कहीं भी कर दो, इनको पूरा प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और ये हमारी छाती पर सवार हो जाएंगे तो भी कोई नहीं सुनेगा। का बखत आ गया है। चलो अब मुंह का देख लो, चलो चल के चार्ज देकर ही आते हैं। चलो
4: ठीक है मालिक। अच्छा चल, चलिए मालिक।
5: चलो
0: नमस्कार दीवान जी।
3: अरे नमस्कार नमस्कार जमुनिया जी। अरे भाई क्षमा कीजिएगा भाई, आने में थोड़ा विलंब हो गया। अरे भाई लोगों, आप सबको नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार भाई जी, हमारे मुरली बाबू हैं।
4: राम राम
6: राम राम मुरली बाबू।
3: हमारे गांव में सरकार का दिया बहुत कुछ है। हाँ, और वो सबका हिसाब यही देखते हैं भाई, इसलिए हमने पहले इनको भेजा था आपके पास। खैर एक काम करते हैं जमुनिया जी।
0: जी।
3: जो कुछ भी हमारे पास है वो हम आपको अभी दिए देते हैं, उसकी रसीद दे दीजिए।
0: बिल्कुल।
3: बाकी जो नहीं है उसके लिए BDO साहब से पूछकर आपको बता देंगे।
0: बात लिखा पड़ी की है दीवान जी, है ना? जो भी आप देंगे हम कागज पर लिख लेंगे।
3: अच्छा।
0: उस पर हम दोनों दस्तखत करेंगे, और जो नहीं है उसका हिसाब आप BDO साहब को देंगे। क्यों कैसे वो हम नहीं जानते।
3: अरे जमुनिया जी, भाई ये सरकार का दिया सारा सामान तो लगभग है। हाँ, लेकिन कैश हमसे कुछ गलती से ज्यादा खर्च हो गया है। भाई तो कहा है उसमें, नहीं हम कुछ दिनों में जुटा कर आपको दे देंगे।
4: जी जी
0: दीवान।

0: जी, सामान की ना मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं, लेकिन नगदी रकम है ना, उसके मामले में मैं बिल्कुल साफ हूँ। मैं उतने पे ही हस्ताक्षर करूंगी जितना आप मुझे देंगे, और आपके भी हक में यही है कि उतने पर ही दस्तखत करें। जब इंतजाम हो जाए तो दोबारा देकर उस पर हस्ताक्षर करेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्यों, है ना?
1: अच्छा अच्छा भाई, ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। तो आप बता सकती हैं जमुनिया जी कि भाई हमें कितनी नगद राशि आपको देना है?
0: अरे मैं कैसे बता सकती हूँ,
1: हाँ
0: मैं पढ़ी लिखी तो हूँ, पर मुझे इतना हिसाब किताब समझ में नहीं आता, है ना? पर आप बता सकते हैं दीवान जी, कितना पैसा इसमें कम है, क्यों?
1: तो जमुनिया जी, हमें भी कौन ठीक से याद है, और भाई हिसाब किताब करने में थोड़ा बहुत समय तो लगेगा ना।
2: हाँ, समय तो लगेगा थोड़ा बहुत।
1: तो जमुनिया जी ऐसा करते हैं, हम लोग एक हफ्ते बाद फिर यहीं मिल लेंगे, हाँ, और तब बची हुई नगदी रकम का हिसाब आपको दे देंगे, ठीक है ना? अभी हम चलते हैं, जय राम जी की।
3: जय राम जी की।
1: चलो भाई चलो। देखा मुरली, ही ससुरी सत्ता एक दिन में आदमी को कितना होशियार बना देती है।
2: वो तो है मालिक।
1: अरे इस जमुनिया के मुंह में कल तक जबान नहीं थी, आज वो दीवान से आंख में आंख डालकर बात कर रही थी। अरे अब तुम्हारे लिए हमने एक हफ्ते का टाइम ले लिया है, जो भी काला पीला करना है कर डालो, और नकदी का हिसाब किताब अच्छे से मिला लो, समझ गए?
2: कोशिश करता हूँ, पर सच्ची तो ये है मालिक की हमने खर्चा बहुत ज्यादा दिखाया है और कैश बहुत कम है, और जहाँ जहाँ खर्चा दिखाया है ना उसमें से ज्यादातर काम हुए ही नहीं है, और ये बात जमुनिया जरूर उठाएगी।
1: तब की तब देखेंगे, अभी तो हिसाब किताब मिलाओ जैसे तैसे, और चारे दे दो उस ससुरी को, जाओ।
2: ठीक है मालिक, चलिए।
1: ये हवेली इतनी सोनी तो कभी रही नहीं, कहाँ गए सब लोग? अरे कहाँ सबके सब मर गए तुम लोग?
4: सभी यही है मालिक, सभी अपने काम में लगे हैं। हुकुम सरकार।
1: हुकुम सरकार हैं? सरकार के बच्चे? अरे हम पूछते हैं, तुम लोगों ने इलेक्शन में ऐसा क्या किया जो इतने बुरे तरीके से नाक कटवा दी हमारी?
4: मालिक अब,
1: अरे आज ये दिन देखना पड़ रहा है तुम लोगों की वजह से, छोड़ेंगे नहीं ये जमुनिया और मेघा को, हम छोड़ेंगे नहीं।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
1: दोनों को अच्छे से सबक सिखाएंगे, और वो गुरु बड़ा ज्ञान बांटता घूमता है, अरे इसका ज्ञान भी अच्छे से निकालना है।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये गुरु के चलते जमुनिया आज इस लायक हो गई कि हमसे चुनाव भी लड़ी और जीत भी गई। अब तू यहाँ खड़ा खड़ा मेरा मुंह मत देख, सुन
4: मालिक,
1: ध्यान से सुन।
4: हाँ मालिक।
1: मुझे ये गांव में पहली आग देखनी है। आग? आग, हाँ, जिस भुग्गे का घर जलता हुआ देखना चाहता हूँ मैं। समझ गए तुम?
2: ठीक है मालिक।
1: भुग्गे का घर हवाले कर दो उसके घर को आग के।
2: चलो
1: जाओ, होशियारी से जाना।
5: तो आज का चार्ज

0: रहने देने का काम तो हुआ नहीं। मेघा जमुनिया, एक काम करते हैं, यही पास में एक छोटी सी झील है, सबके सब वहां चलते हैं और घूम कर आते हैं।
1: हाँ, चलो, हाँ, चलो, चलो।
2: आप लोग जाओ, हमारे तो कल के खाने का इंतजाम भी नहीं है। घर में कुछ डलिया और पंखे बने हुए हैं, हाट भी है आज, मैं उन्हें वहां बेच आऊंगी, तब हमारी रात की रसोई पकेगी।
0: हाँ, तो ठीक है, आप जाइए हाट, हम तीनों जाते हैं लेक पर। क्या ख्याल है मेघा?
1: अरे बिल्कुल नेक ख्याल है।
3: चलो चलो।
0: हाँ हाँ चलो।
3: मुझे तो लेक पर जाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ। नहीं होगा तो कुछ मछलियाँ मार कर लाएंगे।
1: बहुत मजा आएगा।
3: और मेघा के घर में तो बन नहीं सकती।
1: नहीं बाबा, मेरे घर में नहीं।
3: तो ठीक है, जमुनिया को दे देंगे और उसका भी काम चल जाएगा। और हाँ, जो पंचायत घर में बैठे बैठे हमने जो काम की प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, उस पर भी विचार करते हैं। फैसले तो आखिर जमुनिया को ही लेना है ना।
0: हाँ, ये बात सही कही तुमने शिल्पी।
2: देखो भाई लोगों, सबसे पहले वो काम करें जिसमें पैसा ना लगे।
0: लेकिन ऐसा कौन सा काम है जिसमें पैसा नहीं लगेगा?
2: स्कूल। गुरुजी दिन भर खाली रहते हैं और उनसे मैंने बात भी कर ली है, वो बच्चों को मुफ्त पढ़ाने के लिए तैयार है।
1: बहुत बढ़िया आइडिया है ये तो।
2: अपने गांव का 5 साल से छोटा कोई भी बच्चा काम पर नहीं जाएगा, उसे स्कूल जाना होगा।
4: हाँ, पर जमुनिया जी, तुम्हारी बात मानेगा कौन?
2: मनवाना आना चाहिए मेघा बहन। हाँ, हर साल चुनाव से पहले लोग दारू पी पी कर घरों में लोटपोट रहते थे, चुनाव के लिए निकलते ही नहीं थे। इस बार 100 में से 80% लोगों ने चुनाव में वोट डाला है। हमने कोशिश की तभी तो 80% मतदान हुआ है।
1: चलो, हमारी कोशिश कामयाब रही।
5: चलो चलो चलो बिटिया, ये भी कोशिश करके देखते हैं।
2: हाँ बाबा।
5: कि कितने लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और जो नहीं भेजेंगे उन्हें भी बनाने की कोशिश की जाएगी।
1: हाँ बाबा, बिल्कुल।
2: और दूसरी बात, जिन लोगों को पट्टा मिल गया है,
5: हाँ,
2: पर किसी कारणवश उसमें खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मदद की जाए।
5: बिल्कुल।
2: उनका खेत तैयार किया जाए और उन्हें उसमें खेती करने के लिए प्रेरित किया जाए।
1: बहुत बढ़िया आइडिया।
2: इसमें भी कोई खास पैसा खर्च होने वाला नहीं है।
5: बहुत ही अच्छी बात।
0: हाँ, और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बात है। चलो फिर इसी पर ध्यान देते हैं हम सब।

0: कौन है?
1: कोई नहीं भैया।
0: अरे इधर कौन है? कौन है इधर?
2: अरे
0: आग लग गई! अरे बचाओ ना! अरे बचाओ! आग लग गई ना!
3: कैसे होगा यार? बहुत ही बुरा हुआ है। देखो तो यार, धू धू करके कैसे घर चल रहा है। मेरे को तो ऐसे लगे यार जो सारी साजिश दीवान की है। मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। ऐसा करो यार, कल सुबह चल के रिपोर्ट करो यार पुलिस में, हैं? थाने में रिपोर्ट करो चल के।
4: मेरे ख्याल से पहले हमें भुग्गा की मदद करनी चाहिए। सब लोग थोड़ा थोड़ा घास फूस देकर भुक्का की झोपड़ी बनवाएं, उसका घर सही करें, उसके खाने व रहने की व्यवस्था करें। कपड़े वपड़े कुछ भी नहीं है
5: भैया। भैया कपड़े तो हम दे देंगे।
3: और जब भुक्का के घर बाग रख दो, दो चार दिन
4: रिपोर्ट तो कल भी हो सकती है। आप सब जानते हैं कि ये आग क्यों लगाई गई और किसने लगाई है।
2: और हम तो कह रहे हैं।
4: मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ये हमारे गांव के विकास के सपने को भटकाने का षड्यंत्र है।
2: ये बात है।
4: जो भी है वो नहीं चाहता कि हम सब एकदम से आगे बढ़े, वो चाहता है कि हम इन्हीं बातों में उलझे रहें। इसलिए इस बात

0: को भूल जाओ कि क्या हुआ। मिलजुल कर हम सब आगे बढ़ेंगे और भुग्गा की झोपड़ी उसे वापस देंगे। क्यों देंगे ना?
1: जमनिया भाई तो जो बात कर रहे थे भाई, गांव के फायदे की बात कर रहे थे।
2: चल भाई, मैं अपने घर से थोड़ी सी घास फूस ले आया हूँ, और भुग्गा को बोलो कि वो भी घर घर जाकर घास फूस बांस और झोपड़ी में लगने वाला सामान लोगों से मांग कर लाए। और उसकी झोपड़ी आज ही तैयार करनी है। चलो सब लोग आ जाओ, मदद करो। चलो चलो आ जाओ। अरे
0: का भैया भुग्गा, कोनो जरूरत तो नहीं है हमारी? घर में कुछ खाने पीने को है या नहीं? मैं लाऊं कहीं से?
3: जमुनिया बहन, मुझे तो पहले से ही शक था कि ऐसा कुछ जरूर होने वाला है, इसीलिए खाने पीने की चीजें मैंने पहले से ही बचा कर रखी हुई हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है, और ऊपर से तुमने ये छप्पर भी तो बनवा दिए हैं बहन। अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम जाओ बहन।
4: अरे सुनो रे, दीवान जी आ रहा है। ए जल्दी से चारपाई मां, चारपाई ला जल्दी से। जय राम जी की भैया।
5: हाँ तो तुम सभी हमारे ही ईंट के भट्टे पे काम करत हो। बहुत ही बढ़िया। अब हमें ये बताओ कि तुम में फतेहपुर गांव का कौन कौन है?
6: ऐसे को पूछ रहे?
5: जितना पूछा जाए उतना ही, उससे ज्यादा चौंच मत खोलो तुम।
6: पर बात का है मालिक।
5: बात की बात छोड़ो, साफ साफ बताओ कि फतेहपुर गांव के कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं?
7: एक तो मालिक मैं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ मालिक। और बाकी तो सब जो लोग फतेहपुर के ही हैं। हाँ, मैं बाहर से आया हूँ।
5: फतेहपुर वाले जितने यहाँ काम कर रहे हैं हमारे इस ईंट के भट्टे पे, वो सब लोग ठीक से सुन लो। कल से तुम्हारी नौकरी खत्म। सुना, अब तुमको ईंट के भट्टे पर काम करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम जो बाहर से आए हो, तुम इस बात का खास ख्याल रखोगे कि ईंट के भट्टे पर फतेहपुर वाला कोई भी काम नहीं करेगा।
6: भूखा मर जाएंगे मालिक।
5: फतेहपुर वालों फिर से सुन लो, कल से तुम सबकी यहाँ जरूरत नहीं है। अरे कल से हमारे ईंट के भट्टे पर फतेहपुर की चिड़िया भी काम नहीं करेगी। ठीक
7: दीवान जी? अरे तनिक हमारी भी सुन लो। क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने एक ऐसी योजना बनाई है कि जहाँ आदमी को काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, काम आदमी को ढूंढ रहे है।
5: अच्छा,
7: आपको मालूम है? और जय बात से हम आज आपको बता देना चाहते हैं कि आपके भट्टे पे हमारे यहाँ से कोई नहीं जाओगे। और सुन लो, और भट्टे पर बाहर के कोई भी आदमी को काम भी नहीं करने दिए जाएगा।
6: और क्या सही
7: है? अच्छा, आप देखेंगे कैसे भट्टा चलाते हो अब।
5: अच्छा,
6: और क्या?
5: अरे लोगों की ये हिम्मत।
7: बिल्कुल, अरे चिल्लाते रहो, चला के देख लो भट्टा।
8: अरे अरे दीदी रुकिए, मैं देखती हूँ कौन है। कौन है?
3: मैं हूँ।
8: अरे तुम यहाँ क्या लेने आए हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जो कुछ भी तुमने जमुनिया दीदी के साथ किया है, क्या उसे माफ किया जा सकता है? दरवाजा बंद कर रही हूँ, तुम्हें यहाँ आने की कोई

0: से कम इस घर में मुझे चैन से जीने दो और जमुनिया दीदी की सेवा करने दो। तुम नहीं जानते कि जमुनिया दीदी ने ही हमें दीवान की कैद से निकाला है।
1: अरे मुझे मुझे समझ में आ गया है। अगर तू नहीं चाहेगी तो मैं चला जाऊंगा, पर भाभी के एक बार पैर छू लेने दे। मैं सचमुच बहुत कमीना आदमी था जो अपने हीरा जैसे भाई को खा गया।
2: कौन है भाई, किससे बात कर रही हो?
0: इसका नाम सुनकर आपको अच्छा नहीं लगेगा दीदी, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि आपकी रात खराब हो। अच्छा होगा कि ये यहां से चले जाए।
2: कौन है, करण है क्या?
0: हाँ दीदी।
1: भाभी मैं आपका नालायक करण ही हूं, आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। हालांकि मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं हूं।
2: करण, तुम वाकई माफ करने लायक हो नहीं, लेकिन अगर तुम्हें माफ नहीं करूंगी तो तुम एक अच्छे आदमी नहीं बन सकते।
1: हाँ भाभी।
2: इसलिए तुमको माफ करने की मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर तुम उन्हें मानोगे तो ही मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ।
1: मुझे हर शर्त कबूल है भाभी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा।
2: तो करण, मेरी पहली शर्त
1: जी,
2: जिस पट्टे पर तुम्हारे भैया रतन ने खेती की, रात दिन एक किया, कल से तुम उसमें काम करोगे।
1: हाँ,
2: सुबह से शाम तक।
1: जी।
2: दूसरी शर्त, दारू को हाथ नहीं लगाओगे। तीसरी शर्त, 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलोगे बिना झुलन बाबा से पूछे। और आखिरी और सबसे बड़ी शर्त, मेरी देवरानी के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाओगे।
1: मुझे सब कबूल है भाभी, मुझे सारी शर्तें कबूल है।
2: तो ठीक है। गुरुजी प्रणाम।
3: प्रणाम प्रणाम। आओ आओ बेटा आओ, खुश रहो जमुनिया। देखो देखो, ये तुम्हारे सपनों का स्कूल।
2: मगर ये तो बहुत थोड़े बच्चे हैं गुरुजी, इससे इस गांव का क्या भला होगा? लगता है जिस तरह चुनाव के लिए घर घर जाना पड़ा था, वैसे ही बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी घर घर जाना पड़ेगा।
4: सुनो अम्मा, भाई साहब आप भी सब लोग इधर आना, मेरी बात सुनना, जरूरी बात करनी है।
2: देखो भैया, भला अपना ही है, इन बच्चों का बचपन अगर सुधर गया तो जवानी और बुढ़ापा अपने आप सवर जाएंगे, क्यों है ना? बिल्कुल, ये अपने काम आ सकते हैं। और मान लो किसी वजह से अपने काम नहीं भी आए तो कम से कम तुम्हारे ऊपर बोझ तो नहीं रहेंगे, क्यों है ना?
4: ठीक है बोल रही।
2: और सब लोग मिलकर कल एक सभा बुलाते हैं और पता करते हैं कि किन किन को पट्टा मिला है और वो खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनको किस चीज की कमी है, उस चीज की उन्हें मदद भी की जाएगी। ठीक है।
5: जयंत, ये सामान तुम्हारा है ना?
3: हाँ हाँ, इसको मेरा। हाँ हाँ, थैंक यू।
6: मिस्टर जयंत, आप तो इस गांव से प्रभावित थे कि एनजीओ खोलकर यहीं बस जाएं और इस गांव की तस्वीर बदल कर रख दें। तो क्या हो गया अचानक जो शहर की तरफ चल दिए?
5: अरे कुछ नहीं शिल्पी, जमुनिया ने इनका दिल तोड़ दिया।
6: अच्छा,
5: अभी इनका मन नहीं लगता यहाँ।
3: देखो मेगा, बात का बतंगड़ मत बनाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, और ये तो सब जीवन में चलता रहता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब सच नहीं है, पर ये इतना बड़ा सच भी नहीं है कि मैं किसी तरह के तनाव में आ जाऊं या कोई बड़ा फैसला ले लूं।
6: पर एक बात तो है जयंत जी, कि आपको जमुनिया ने बदल दिया है।
5: बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहती थी।
6: और एक बात, आप आने से
7: संग्रहालय से इसका

0: कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे धारावाहिक जमुनिया की 17वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज भक्तिभाव और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास भोपाल में श्री कृष्ण पर्व आयोजित किया गया। इस दौरान मटकी फोड़ सहित श्री कृष्ण लीलाओं पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। आज प्रदेश में 55 जिलों के 111 स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जानापाव में परशुराम श्री कृष्ण लोक का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस की बधाई देते हुए एक पोस्ट में कहा कि समाज सेवा, समरसता और सांस्कृतिक चेतना को जगाने में संगठन की भूमिका सराहनीय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज सीहोर के बड़ियाखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक नई पावर ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई का शुभारम्भ करेंगे। इस दौरान कंपनी के पहले ट्रांसफार्मर का रोल आउट भी होगा। नगर निगम भोपाल द्वारा साकेत नगर, एम्स अस्पताल और भानपुर क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाकर कुल 15 ट्रक विभिन्न प्रकार का सामान जब्त किया गया है। मौसम विभाग ने आज नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट, जबकि छतरपुर, सागर, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी और बैतूल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और पंजाब के लुधियाना में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 1 बज चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा।

कर में मुरली, अधरों पर मुस्कान, नैनों में बसे सारा जहान। नंद के आंगन आए नंदलाल, धन्य हुई माँ यशोदा, धन्य हुआ गोकुल धाम। कहते हैं सखियों, जब प्रेम अपने सबसे सुंदर रूप में धरती पर उतरता है तो वो कान्हा बन जाता है। जब मासूमियत मुस्कुराती है तो वो नंदलाल कहलाती है। और जब भगवान भी माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं ना, तो वो रिश्ता माँ यशोदा और कान्हा का वात्सल्य बन जाता है।

सखियो, आज की जो रात होगी ना, वो कोई साधारण रात नहीं है। ये वो पावन रात है जब मथुरा के कारागार में देवकी और वसुदेव के घर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और उनके जन्म के साथ ही पूरी सृष्टि में आशा का दीप जल उठा।

आंगन में पाया और यशोदा मैया ने अपनी गोद में समेट लिया और चारों ओर गूंज उठा, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।

यशोदा के कान्हा जब बड़े हुए तो गोकुल की गलियों में उनकी शरारतें भी बढ़ी। कभी माखन की मटकी पर नजर, तो कभी ग्वाल बालों के साथ खेल, तो कभी गोपियों की शिकायतें, और हर शिकायत के बाद माँ यशोदा का पूछना कि कान्हा तूने फिर क्या किया रे। लेकिन सखियों, सामने जब मासूम कान्हा मुस्कुराते होंगे तो मैया का सारा गुस्सा उसी मुस्कान में पिघल जाता होगा। यही तो कृष्ण है सखियों, वे भगवान भी हैं और घर आंगन में खेलता हुआ नटखट बच्चा भी है। हाथ में मुरली, माथे पर मोर पंख, पैरों में पायल और चेहरे पर मुस्कान। सखियों, आज ही के दिन जन्मे थे हमारे नंदलाला। प्रेम, भक्ति और वात्सल्य से भरे हुए जन्माष्टमी पर्व की आप सभी सखियों को ढेर सारी बधाइयाँ। आज इसी अवसर पर आपको सुनवाती हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गीत, जिसमें गोपियों की शिकायत पर नाराज माँ यशोदा को बड़े प्यार और दुलार से समझाते हैं हमारे नटखट कान्हा।

0: फिल्म गोपाल कृष्ण से अभी आपने ये बहुत प्यारा सा गीत सुना। आवाज थी चंद्रानी मुखर्जी की और कृष्ण की लीलाओं से भरा आज का दिन हम सभी याद कर रहे हैं, खुशी के साथ इस उत्सव को मना रहे हैं। सखियो, भगवान कृष्ण ने संसार को गीता का ज्ञान दिया, लेकिन मैया यशोदा के लिए तो वो वही नन्हे से लल्ला ही रहे। सखियो, कई बार हम भी अक्सर बड़ों में बच्चों को अब उनकी गलतियों के लिए पहचान लेते हैं। जैसे वो बहुत शरारती है, ध्यान नहीं देता है, बहुत जिद्दी है, लेकिन माँ यशोदा की तरह हम भी अगर अपने बच्चों की कमी के साथ साथ उनकी खूबियाँ देखें, उनकी खूबियों को देखना सीख जाए ना, तो शायद हर घर का बचपन थोड़ा और खूबसूरत हो जाएगा। तो केवल कमी ना देखे, अच्छाई भी तलाशे। और सखियो, अब बात करते हैं सरकारी योजना की। तो जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से चलाई जाने वाली योजना की, तो आज बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया योजना की। सखियो, आपके मन में कोई नया और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है ना, तो भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। स्टार्टअप इंडिया के जरिए पात्र नए उद्यमों को DPIIT की मान्यता, टैक्स से जुड़ी हुई कुछ सुविधाएं, नियमों में राहत, मेंटरशिप और फंडिंग से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। यानी सरकार का प्रयास है सखियों कि नए आइडिया को कारोबार में बदलने की जो राह है ना, वो आसान हो। सखियों, इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले अपने व्यवसाय की DPIIT स्टार्टअप रिकग्निशन के लिए पात्रता देखना और आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होता है। तो सखियों, अगर आपके पास हुनर के साथ कोई आइडिया है तो उसे सिर्फ सपना बनाकर ही ना रखिए, उसे स्टार्टअप में बदलने की दिशा में अपना एक मजबूत कदम बढ़ाइए। और सखियो, हम बढ़ते हैं भेंट वार्ता की ओर। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है सखियो, और इसी को ध्यान में रखते हुए सुनिए भेंट वार्ता, कुपोषण को दूर करने में सहायक मोटे अनाज। वार्ताकार हमारे साथ हैं, सोनाली नरगुंदे से बातचीत कर रही हैं दुर्गेश नंदिनी। तो आइए आपको सुनवाते हैं ये भेंट वार्ता।
1: सखियों, कुपोषण की स्थिति हमारे देश में चिंताजनक है। जी हाँ, बच्चे और महिलाएं बड़ी संख्या में कुपोषण और एनीमिया से पीड़ित हैं। कारण, जागरूकता की कमी और खाद्य असुरक्षा जैसे कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि सरकार ICDS और PM वॉन जैसी योजनाओं से इसे दूर करने का प्रयास कर रही है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर सोनाली नरगुंदे जी को। आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता विभाग की विभागा अध्यक्ष हैं। विषय आपको बता देते हैं। जी हाँ, कुपोषण दूर करने में सहायक मोटे अनाज। नमस्कार सोनाली जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको भी।
1: सोनाली जी, जैसा कि हमारा आज का विषय है कुपोषण दूर करने में सहायक मोटे अनाज, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप हमें ये स्पष्ट करें कि मोटे अनाज से क्या अभिप्राय है और ये किस तरह से कुपोषण को दूर करने में सहायक है।
2: जब हम मोटे अनाज की बात करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि मोटा अनाज मतलब कि बुरा अनाज या कुछ अलग तरह का अनाज, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि यही अनाज हमारा प्राथमिक अनाज रहा है, कालांतर में हम इसे भूल गए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: पहले हमारे देश में यही जिसको हम मिलेट कहते हैं, सुपर मील कह रहे हैं, सुपर फूड कह रहे हैं, अभी नई नई परिभाषाएं इसके लिए गठित हो गई हैं। और ये मोटा अनाज जो हमारा प्राथमिक अनाज था, ये अब बड़ा अलग तरह से हमारे प्रचलन में आ रहा है। मतलब इसको एक अलग ब्रांडिंग करके हमारे सामने रखा गया है। तो इसका कारण भी है, इसका कारण ये है कि पूरी दुनिया में अलग अलग तरह से अनाज और अनाज के प्रभावों के ऊपर बात होती रहती है, खानपान को लेकर। जैसे आपने कुपोषण की बात की, तो कुपोषण पे जो चर्चा चल रही है और हमारे यहाँ जो एनीमिया की स्थिति है बच्चों में और महिलाओं में, वो स्थिति देखते हुए जब हम आकलन करते हैं इसका, तो हम पाते हैं कि मोटा अनाज किस प्रकार से इसमें सहयोगी है। इसका कारण यह है कि 2023 में भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय मोदी जी

0: ने इसको एक 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित हुआ था और उस वर्ष में 2023 से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं इसी के ऊपर, मोटे अनाज के ऊपर। प्राथमिक तौर पर 7 प्रकार के मोटे अनाज कहते हैं जिसको मिलेट्स कहते हैं अंग्रेजी में, सुपर फूड की श्रेणी में जो है, इसके ऊपर बहुत सारे अनुसंधान हो रहे हैं, बहुत सारे शोध हो रहे हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, मोटा अनाज मतलब क्या, मोटा अनाज जिसको हम भूल चुके हैं, अभी हम सब गेहूं की रोटी खाने लगे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हमारे यहाँ पर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अलग अलग अनाज खाया जाता था, हमारे यहाँ अलग अलग मौसम के आधार पर अलग अलग अनाज खाया जाता रहा है, जो कि हम एक अलग प्रचलन के कारण भूलते गए। तो अभी सभी लोग गेहूं की रोटी खाते हैं, लेकिन हमारे पास बाजरा था, हमारे पास ज्वार थी, हम मक्का की रोटी खाते थे। अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो वहां पर रागी की रोटी या रागी के बॉल खाए जाते हैं, उसको रागी बॉल कहते हैं, रागी मुड्डा कहते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर मोटा अनाज हर जगह पर अलग प्रचलन में है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहां पर हमें ज्वार देखने को मिलती है, वैसे अगर हम राजस्थान और अलग क्षेत्र में गुजरात में चले जाते हैं तो वहां पर हमको बाजरा प्रचलन में मिलता है। यही उनकी मूलभूत रोटी रही है, लेकिन अब वो रोटी एक फैशन का चलन हो गई है। यही सारे मोटे अनाज हैं, और मतलब 7 प्रकार के मोटे अनाज हम देख पाते हैं अभी।
1: जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा और बहुत अच्छे से आपने स्पष्ट किया। बात हम करते हैं कि वर्तमान में मोटे अनाज अपने किन गुणों के कारण लोकप्रिय हो रहे हैं, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: अब जैसे हमने मोटा अनाज नाम रख दिया उसका, और मोटे अनाज का मतलब जैसे हम अपनी आतड़ी की बात करते हैं, आंत की बात करते हैं, मोटी आंत की, बड़ी आंत की, छोटी आंत की, पाचन तंत्र के हिसाब से।
1: जी, जी।
0: तो जब हम पाचन तंत्र में कोई चीज अपने मुंह में चबाते हैं और उसको अपने शरीर के अंदर जब वो चीज जाती है वस्तु, तो उसमें कुछ न कुछ तत्व ऐसा होना चाहिए जो उसको पचाने में सहायक हो सके, उसमें पाचन तंत्र को कहीं ना कहीं कष्ट न हो, ये एक मुख्य उद्देश्य रहता है। इसीलिए मोटा अनाज खाया जाता है। मोटा अनाज मतलब क्या, मोटा अनाज मतलब जिसमें बहुत ज्यादा फाइबर है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा रेशे हैं, जो रेशे आपको पाचन में सहायता करते हैं और वो जल्दी से अनाज आपका पच जाता है। एक तो मोटे अनाज का पहला तत्व यह है कि वो मोटा है, पचने में बहुत सरल है, कोई भी मोटा अनाज अगर आप खाते हैं तो आप जल्दी उसको पचा पाते हैं। दूसरा तत्व है, जब हम इसकी बात करते हैं, मोटे अनाज प्रचलन में आए इसलिए क्योंकि अभी सभी लोग ना फिजिक कॉन्शियस हो गए हैं, अपने शरीर को लेकर के, सुंदरता को लेकर के, वजन को लेकर के, बीमारियों को लेकर के, इस कारण बहुत लोग जागरूक हो गए हैं और उस रूपता के चलते मोटे अनाज को प्रचलन में लाया गया। तो मोटा अनाज ग्लूटेन फ्री है, उसका मुख्य तत्व है कि वो ग्लूटेन फ्री है। जब ग्लूटेन फ्री होता है तो वो आपको डायबिटीज और मोटापे जैसी बीमारियों से सीधे सीधे बचा लेता है।
1: जी,
0: इसलिए मोटे अनाज खाए जाते हैं।
1: तो ये तो हमें जानकारी मिली कि जो मोटे अनाज हैं उनमें क्या गुण पाए जाते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि वो सुपाच्य होते हैं।
0: बिल्कुल
1: सोनाली जी, हमारे देश में स्वास्थ्य और पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, इस विषय में भी आप जानकारी दें।
0: इसके दो प्रयास हैं। देखिए, सरकार के स्तर पर तो प्रयास जारी हैं। अगर हम कहें कि सरकार कुपोषण हटाने के लिए कुछ नहीं कर रही है तो मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ। जो लोग ये कहते हैं वो दुष्प्रचार कर रहे हैं।
1: जी, जी।
0: क्योंकि हम अपने आंगनवाड़ी में देखें, अगर हम आंगनवाड़ी में देखते हैं तो वहां पर भी जो वो दलिया बच्चों को दिया जाता है या खिचड़ी दी जाती है, वो मैंने स्वयं खाई हुई है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं है, क्योंकि वो खिचड़ी और दलिया बहुत अच्छा है और वो बच्चों के लिए उपयोगी है। दूसरी बात, अगर हम सुपाच्य और के सरकारी प्रयासों की बात करें तो सरकार जो भी धान्य दे रही है, जो भी अनाज वहाँ पर राशन में मिल रहा है लोगों को, वो बहुत अच्छा है, वो किसी भी स्तर पर निम्न स्तरीय नहीं कहा जा सकता है। तो कुपोषण के सरकारी प्रयास तो जारी है। दूसरा, हमें प्रयास करने चाहिए व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, जो हमारी परिवार की इकाई है वहां से माँ को शुरुआत करनी पड़ेगी कि माँ अपने बच्चों को जंक फूड से बचाए, उसको ये तले गले बाजार की चीजों बंद करें और घर में उसको बना करके दे। हमारे घर में दलिया बना करता था, मक्के का दलिया बनता है, राबड़ी जिसको राब कहते हैं, कहीं राबड़ी कहते हैं, कहीं दलिया बनता है, तो मक्के का दलिया भी बनता है और वो छाछ में बहुत अच्छा लगता है अगर बनाया जाए तो।
1: बिल्कुल,
0: तो ये प्रयास तो माँ कर सकती और कोई नहीं कर सकता।
1: सही कहा आपने, और ये कोशिश भी होनी चाहिए जैसा कि आपने कहा कि माँ ही कर सकती है। तो ये जो मोटे अनाज है उन्हें भावी पीढ़ी को उससे उनका परिचय कराना चाहिए और अपने रसोई में उन्हें शामिल करना चाहिए, तभी जाकर जागरूकता आ सकती है।
0: बिल्कुल, क्योंकि 7 प्रकार के जो हैं, हम ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी, ये सारे जितने भी हमारे तत्व हैं वो बड़े सुंदर हैं देखने में, सबके अलग अलग उपयोगिता है, उसमें सब में अलग अलग तत्व भी हैं और हर मौसम के हिसाब से आप इन मिलेट्स को बदल सकते हैं। मतलब मोटा अनाज हर समय पर आप अलग खा सकते हैं, जैसे आप ठंड में आप बाजरा खाएंगे, गर्मी में आप ज्वार खाएंगे और मक्के को आप पूरे साल भर खा सकते हैं। इन तीनों का दलिया भी खा सकते हैं, इन तीनों का थालपीट बन सकता है, इन तीनों की रोटी बन सकती है, इन तीनों की मिठाई भी बन सकती है। तो बहुत अलग अलग प्रकार हैं खाने के, और ये मैं सिर्फ साधारण तीन चीजों की बात की है। जी, जी। अगर आप रागी को शामिल करते हैं तो रागी में आपको आयरन रिच रागी होता है, क्योंकि रागी में वैसे ही तत्व है लोह, तो वो उसको आपको बच्चों को कहीं ना कहीं एनीमिया हटाने में मदद करता है।
1: बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। एक और प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहा है कि कुपोषण उन्मूलन के लिए नई रणनीतियों के विषय में अगर आप जानकारी देंगी तो हमारी सखियों को

0: वैसे अगर हम कुपोषण की बात करते हैं तो कुपोषण के लिए बहुत सारे जो तंत्र है वो काम कर रहा है, और कुपोषण से आप बच्चों को अपने बचा सकते हैं।
1: जी
0: तो ये तो माँ ही करेगी जो प्राथमिक स्तर पर खाना खिलाती है बच्चे को। इसके लिए अगर सरकारी प्रयास की बात करते हैं तो उन्हें एनीमिया दूर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग दवाइयां दी जाती हैं,
1: जी जी
0: वो
1: जी
0: दवाइयां ली जा सकती हैं और बच्चों को दी जा सकती हैं। पर छोटे बच्चों में तो प्राथमिक स्तर पर ये होता है कि उन्हें खान पान से ही सुधार करना चाहिए, उनको अगर हम दवाई पे ना रखें तो ज्यादा अच्छा है।
1: जी जी तो क्या इस तरह की कुछ जागरूकता शिविर का भी आयोजन होता है सोनाली जी?
0: हाँ, ये जागरूकता शिविर कुपोषण के ऊपर तो अभी बहुत काम हो रहा है, मतलब देश में

0: प्रकार के शिविर हम भी आयोजित करते हैं, मेडिकल वाले भी खुद भी करते हैं, सरकारी स्तर पर भी करते हैं, महिला एवं बाल कल्याण विभाग जो है वह भी करता है इस तरह के शिविर आयोजन, जिसमें कुपोषण और एनीमिया को दूर करने की बात की जा रही है। आमजन की भूमिका यही है कि उनको जानकारियों का स्तर मतलब बढ़ाया जाए कि वह सिर्फ मक्के को मक्के की रोटी की तरह ही लोगों ने सीमित कर दिया या बाजरे को बाजरे की रोटी की तरह सीमित कर दिया। इसके बहुत सारे प्रयोग हो गए। आजकल बहुत सारी महिलाएं जो घरेलू उद्योग में काम करती हैं, हम मेरे पास ही बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, मेरी साथी हैं, जो लोग इन सब मोटे अनाज से बिस्किट बनाती हैं, कुकीज बनाती हैं और बहुत सारे बेकिंग के आइटम्स भी बनाती हैं जो बच्चों को बहुत रोचक लगते हैं।
1: जी जी।
0: बच्चे क्या बड़े भी खाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम कुपोषण को हटाने के लिए या लोगों को मोटे अनाज को रोचक बनाने के लिए कर रहे हैं, वो प्रयास हमारे जारी है।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी आपसे मिली, आपने समय निकाला और विषय से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सिखियो, हमने सुनी भेंटवार्ता, विषय था कुपोषण को दूर करने में सहायक मोटे अनाज। सोनाली नरगुंदे से बात कर रही थी दुर्गेश नंदिनी चौधरी। और आज सखियों, चूंकि जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के दिन बहुत सारी जगह पर दही हांडी का आयोजन होता है, तो इसी पर सुनते हैं खुद्दार फिल्म का गीत, बहुत ही प्यारा सा गीत किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में।

सखियों आज जन्माष्टमी का पर्व है और आज तो बाजार में चारों तरफ कान्हा की रंग बिरंगी पोशाकें, नन्हे नन्हे मुकुट, मोर पंख और बांसुरी सजी हुई दिखाई दे रही होगी। आप सभी सखियों ने भी अपने घर के लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सी पोशाक तो जरूर खरीदी होगी, है ना सखियों? लेकिन सखियों जरा सोचिए तो, आज हम में से कितनों ने बाजार से कान्हा जी के लिए खुद से सुंदर सी पोशाक खरीदी होगी? किसी ने रेशम की, किसी ने जरी गोटे वाली, तो किसी ने मोतियों और लेस से सजी हुई पोशाक ली होगी। बस सखियों यहीं से, हाँ सखियों यहीं से शुरू होता है हमारे आज के मी टाइम का एक खूबसूरत सा बिजनेस आइडिया। अगर आपको सिलाई कढ़ाई, गोटा पट्टी, मोती और सजावट का थोड़ा सा भी हुनर आता है ना, तो भगवान

पोशाक बनाने का छोटा सा कारोबार शुरू किया जा सकता है। बहुत बड़ी शुरुआत करने की जरूरत नहीं है सखियों, पहले घर पर सुंदर डिजाइन तैयार कीजिए। लड्डू गोपाल की पोशाक, मुकुट, सुंदर सा साफा और श्रृंगार की चीजें, बस इन्हें अपने परिचितों और आसपास की पूजा सामग्री की दुकानों और स्थानीय ग्राहकों तक पहुंचाइए। धीरे धीरे आप सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर भी ऑर्डर कर ले सकती हैं इनके। ऑनलाइन ना सखियो, इसका बिजनेस बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत डिमांड होती है। और सखियो, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये काम ना आप घर पर अपनी घर की जिम्मेदारियों के साथ अपने खाली समय में भी कर सकती हैं। त्योहारों के मौसम में मांग बढ़ेगी और नई नई डिजाइन बनाने से आपको पहचान भी मिलेगी, पहचान भी बढ़ेगी। तो सखियो, इस जन्माष्टमी कान्हा जी को पोशाक पहनाने के साथ अपने हुनर को भी एक नई पहचान दीजिए, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत सारा निवेश किया जाए। कभी कभी बस एक हुनर, थोड़ी सी रचनात्मकता और शुरुआत करने का साहस ही काफी होता है। तो आप दीजिए अपने हुनर को एक नई सी पहचान। मैं आपको सुनवाती हूँ एक और बहुत प्यारा सा गीत फिल्म विवाह से।

और सखियो अब समय है हमारे क्रम ये जानना भी है जरूरी का। सखियो जीवन बीमा करवाना आज के समय की आवश्यकता है। अनहोनी या दुर्घटना होने पर जीवन बीमा आर्थिक रूप से मदद करता है। सखियो जीवन बीमा की किश्त किसी वजह से तय तारीख पर जमा नहीं हो पाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी दिन बीमा खत्म हो गया है। नियमों के अनुसार मासिक प्रीमियम को छोड़कर तिमाही, छमाही या और सालाना प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी में 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है। इस अवधि में पॉलिसी शर्तों के अनुसार चालू रहती है और जोखिम सुरक्षा में निरंतरता बनी रहती है। लेकिन सखियो इन 30 दिनों को राहत की अवधि समझिए, किश्त को टालने का नहीं। कोशिश करिए कि प्रीमियम इस अवधि के भीतर जरूर जमा कर दें, क्योंकि ग्रेस पीरियड खत्म होने पर पॉलिसी लैप्स हो सकती है। इसलिए किश्त की तारीख अगर चूक जाए ना तो घबराइए नहीं, 30 दिनों के बाद भी चालू रहता है जीवन बीमा। तो सखियो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। तो कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी सखियों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दीजिए सुषमा व्यास को अनुमति। नमस्कार।

अभी सखियां सुन रही थी महिला सभा कार्यक्रम। हमारा ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है। सबसे पहले आइए सुनते हैं ये सोहर।

इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम कुछ भजन प्रस्तुत कर रहे हैं। कलाकार हैं रवींद्र दीक्षित। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे रविंद्र दीक्षित के गाए हुए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
3: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
4: हाँ हाँ क्यों नहीं,
2: और झूलते झूलते सुनते हैं मालवा की शान आकाशवाणी।

0: अरे दीदी धीरे धीरे।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: इस समय आप है हमारे साथ।
6: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। प्रभु के चरण चिन्ह अब भी पड़े हैं हमारी वीथि में, झुकी है कदम की एक डार, हवाओं में उड़ता है पीतांबर, कभी कभी एक सिहरन सी उठती है यमुना के शांत पानी में। वो राग, वो लीला, वो भाव कितने रूपों में जागता है आज भी। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, कृष्ण एक महाराग हैं जिसकी अनुगूंज इस धरती पर सदियों से बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण की यात्रा बांसुरी से पांचजन्य के बीच संपन्न होती है। इस यात्रा में एक रस है, छंद है, पुकार है, प्रार्थना है, जो वेणु से उठती है और आगे बढ़ती हुई पांचजन्य के माध्यम से संभवामी युगे युगे का उद्घोष करती है। अद्भुत है श्री कृष्ण का चरित्र। कृष्ण संपूर्णता का नाम है। उन्हें नमन करते हुए आइए शुरू करते हैं फिल्म संगीत का आज का कार्यक्रम।

श्रोताओं, श्री कृष्ण स्पष्ट हैं और रहस्य भी हैं। वो योगीश्वर हैं और गृहस्थ भी। वो संत हैं तो योद्धा भी। वो चिंतक हैं तो सन्यासी भी। वो लिप्त हैं तो निर्लिप्त भी। उसी कृष्ण तत्व को नमन करने का दिन है आज।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ देर बाद सीहोर में क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड की नई पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण इकाई के प्रथम ट्रांसफार्मर को रोल आउट करेंगे। करीब 50 एकड़ में स्थापित यह इकाई एक ही स्थान पर स्थित भारत की सबसे बड़ी पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण इकाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अगस्त 2025 में इस संयंत्र का भूमि पूजन किया था और अब करीब 13 से 14 महीने में यहाँ उत्पादन प्रारंभ हो गया है। यहां 220 केवी से लेकर 1200 केवी श्रेणी के पावर ट्रांसफार्मर बनाए जाएंगे। इकाई की उत्पादन क्षमता हर माह 35 पावर ट्रांसफार्मर तैयार करने की होगी। इतनी बड़ी क्षमता वाली इकाई एक ही स्थान पर स्थापित होने से देश में उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन उपकरणों के निर्माण को मजबूती मिलेगी। आज देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भक्तिभाव और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। उन्होंने कामना की कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और पूजा के इस पवित्र अवसर पर सभी के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का संचार हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आज भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर श्री कृष्ण पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालकृष्ण एवं राधा रानी के स्वरूप में पधारे नन्हे मुन्ने बच्चों को माखन खिलाकर उनका स्नेहपूर्वक स्वागत किया। साथ ही कलाकारों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां देखी। डॉक्टर यादव ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई देते हुए कहा कि अब मध्य प्रदेश के प्रमुख देवस्थल धार्मिक पर्यटन के केंद्र बन रहे हैं।
1: देवस्थान हमारे लिए आजकल धार्मिक पर्यटन का केंद्र बन रहे हैं। ऐसे में सुशासन के लिए हमारे जैसे बाबा महाकाल के महालोक के बाद आज पूरे प्रदेश में वातावरण बदला है। वहाँ 2022 तक 60-70 लाख यात्री आते थे, गत वर्ष 14 करोड़ का आंकड़ा था, इस साल 20 करोड़ का आंकड़ा हुआ है। तो ऐसे में बाकी देवस्थान पे भी यात्री जाए और तीर्थाटन के माध्यम से हमारे राज्य की इकोनॉमी बढ़े, कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे प्रत्येक काम को इसी रूप में हम बढ़ा रहे।
0: प्रदेश के सभी जिलों में भी जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आगरमालवा में यादव व गवली समाज द्वारा संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की भव्य विशाल पालकी यात्रा निकाली गई। जबलपुर में शाम 4 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। खंडवा में भी शहर के मंदिरों में उत्साह और भक्ति का माहौल है। बात मौसम की, प्रदेश में बारिश का दौर फिर तेज हो गया है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जबकि मंडला में नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। छतरपुर के कुटनी और जबलपुर के बरगी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। भोपाल में भी आज सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: अब समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के सभी आईटीआई में रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु पहले आओ पहले पाओ राउंड की प्रक्रिया कल से प्रारंभ होगी, जो 7 सितंबर तक चलेगी। आगरमालवा में गोकवच अभियान के तहत करीब 100 गोवंशों के गले में रेडियम का बेल्ट पहनाया गया, जिससे रात के अंधेरे में सड़कों पर बैठी गायें दूर से दिखाई देंगी। और पन्ना में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा भगवान जुगल किशोर जी का जन्मोत्सव। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए DNA प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्री हरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है।

0: श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि EOS-05 भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को मजबूत करता है और इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती आधुनिकता को भी दर्शाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसके सफल प्रक्षेपण की सराहना की है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
1: I am very happy to announce that GSLV.
2: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भूकक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
0: ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच आज से नई दिल्ली में शुरू हो गया। सर्वोच्च न्यायालय इस मंच की मेजबानी कर रहा है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायिक प्रमुख और वरिष्ठ न्यायिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत रूस, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान के न्यायिक प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में आपसी न्यायिक हित के मुद्दों पर चर्चा होगी और न्यायपालिकाओं के बीच सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इस दौरान न्याय वितरण, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे समकालीन मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। इस दौरान प्रतिनिधियों को अनुभव और विचारों के आदान प्रदान का भी अवसर मिलेगा। यह 3 दिवसीय मंच न्याय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान, प्रौद्योगिकी और सतत विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को इटली में युद्ध बाद के इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये उपलब्धि उनके नेतृत्व में इटली के लोगों के भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दोस्ती ने भारत

0: वाराणसी पश्चिम में 208, नुआकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, थाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई है। काठमांडू के अस्पतालों में 2 और लोगों की मौत हुई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कल शाम तक 5053 लोग लापता थे। पीड़ितों की पहचान के लिए नेपाल में DNA जांच भी शुरू कर दी गई है। इस बीच एक बचाव अभियान में त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग से 2 लोगों को जीवित बचाया गया। ये लोग फोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ के बाद 10 दिनों से सुरंग में फंसे हुए थे। आपातकालीन दल ने अब तक 12,000 से अधिक लोगों को बचाया है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई थी। इससे उत्तरी और मध्य नेपाल के कई कस्बों और गाँवों में भारी तबाही हुई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
1: इस बीच भारत ने 2 और विमानों से नेपाल के लिए राहत सामग्री की नई खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के लिए 21.5 टन राहत सामग्री लेकर 2 C-130J विमान काठमांडू पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता 30 जून से 17 अगस्त के बीच गणना प्रपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और निर्धारित घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। फॉर्म 6 के जरिए अंतिम मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का अनुरोध किया जा सकता है। अंतिम मतदाता सूची 4 नवम्बर को प्रकाशित होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देशव्यापी अभियान के दौरान 3,800 से अधिक बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। अभियान के दौरान 575 से अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार ये अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चलाया गया। आयोग ने राज्य सरकारों, पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बच्चों के बचाव और पुनर्वास के लिए काम किया, साथ ही बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यभर में रेस्तरां, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 13 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बंद किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सरदवत मुखोपाध्याय ने बताया कि अभियान के तहत अब तक कुल 1,730 खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई है। गोवा सरकार कल से गोवा उज्ज्वला योजना शुरू करेगी। योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू LPG और PNG उपभोक्ताओं को प्रतिवर्ष 3 घरेलू LPG सिलेंडरों के मूल्य के बराबर वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने बताया कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए ₹3,000 सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
2: आज भगवान कृष्ण का जन्मदिन है और शानदार जन्मोत्सव की तैयारी पूरे शहर में हो रही है। समूचे ब्रजमंडल समेत प्रदेश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: गुजरात में भी धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और संदेश से भारतीय संस्कृति और दर्शन में जीवंतता आती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भगवान कृष्ण का जीवन और संदेश मानवता को सत्य, धर्म, कर्तव्य और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता का निरंतर मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण के दिव्य संदेशों में निस्वार्थ कर्म की प्रेरणा निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR हिंदी न्यूज को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश से फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
1: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है और करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर सहित कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज शिवपुरी, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह और नर्मदापुरम सहित कई जिलों के लिए अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: बिहार में गंगा, पुनपुन, गंडक और कोसी समेत कई प्रमुख नदियां उफान पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।
2: बिहार में गंगा समेत 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना सुरक्षा दीवार के सभी 108 गेट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन प्रभावित हुआ है। नालंदा के अस्थावा और पटना के धनरुआ में तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पटना समेत 8 जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान और बिजली चमकने की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज रात हल्की बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली चमकने का अनुमान है। चीन के शेंजन में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा। सात्विक और चिराग ने कल फ्रांस के टोमा जूनियर पोपोव और क्रिस्टो पोपोव को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। वहीं पुरुष सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल में हांगकांग के ली चेक यू से हार के साथ ही किदांबी श्रीकांत की चुनौती समाप्त हो गई। महिला सिंगल्स में भी भारत की चुनौती कल समाप्त हो गई। तन्वी शर्मा को जापान की तोमोका मियाजाकी से हार का सामना करना पड़ा। वियतनाम में जारी पिकल बॉल विश्व कप की टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा, इजराइल और चेक गणराज्य को हराया। टूर्नामेंट 6 सितंबर तक चलेगा। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो एएआईबी ने एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी शुरुआती रिपोर्ट जारी कर दी है। दिल्ली आ रही इस उड़ान को रास्ते में टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुछ यात्रियों को चोटें आई थीं। रिपोर्ट के अनुसार उड़ान के दोनों क्रू सदस्यों का साइको एक्टिव पदार्थों की जांच की गई। पायलट इन कमांड का प्रारंभिक नमूना नॉन नेगेटिव पाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी और अन्य पहलुओं पर विस्तृत जांच चल रही है। एयर इंडिया ने जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमों के किसी भी उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई भी की जाती है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज दोपहर में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 526 अंक के उछाल से 76,680, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक बढ़कर 23,938 पर कारोबार कर रहा था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। न्याय व्यवस्था और विवाद समाधान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीशों का मंच नई दिल्ली में शुरू। सरकार नेपाल में लापता व्यक्तियों के निकटतम परिजनों के लिए डीएनए प्रोफाइलिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगी। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1,282 हुई। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और चाइना ओपन बैडमिंटन में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला आज शाम क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, जन्माष्टमी का दिन और आपके बहुत सारे खतों के साथ आपकी फरमाइशें लेकर हाजिर हूं मैं। जाहिर तौर पर आपको इंतजार होगा, तो चलिए इंतजार के इन पलों को और नहीं बढ़ाते और मैं उठाती हूं चिट्ठियां जिनमें लिखी हैं आपकी फरमाइशें। ये पहली चिट्ठी आई हुई है जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट की ओर से। गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। राजा बाजार चौक बहिया आरा से पूनम देवी केशरी, संगीता देवी केशरी, बीना केशरी और प्रतिज्ञा केशरी। और आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं सौदागर फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मीका सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीतकार शब्बीर अहमद और संगीतकार हिमेश रेशमिया। फिल्म का नाम है ओ माई गॉड। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाणकर राही, सरिता गम्हाणकर, प्रिंस एकांश गम्हाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गम्हाणकर, प्रणीता गम्हाणकर, अर्जुन गम्हाणकर टुकटुक और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गम्हाणकर, सुमित गम्हाणकर, ध्वनि गम्हाणकर परी। ये चिट्ठी आई हुई है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा की ओर से। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत।

संदेश के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर है। छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, ये दतरेंगी के रहने वाले हैं। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गा राम साहू इसी गीत को पसंद करते हैं। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं लगान फिल्म का गीत। आवाजें आशा भोसले, उदित नारायण, वैशाली और साथियों की हैं। बोल जावेद अख्तर की हैं और धुन AR रहमान की।

0: और अब हम आपको सुनवाते हैं किसना फिल्म का गीत। आवाजें सुखविंदर, इस्माइल दरबार और आयशा की हैं। शब्द रचना जावेद अख्तर की और संगीत इस्माइल दरबार का है। अनुरोध आप सबका है, गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जूंधले और आरती जूंधले, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण और रमेश मिगलानी।
1: हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

इसी गीत के लिए फरमाइश आई थी मानोरा वाशिम से, ध्रुव कुमार गिरी, ज्योति गिरी, तेजस गिरी, प्रणीता, शैलेश, सोनम और धनुषपुरी, और पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक की ओर से।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GSLV-F17 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि इसरो और भारतीय उद्योग के बीच बढ़ती साझेदारी से देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ताकत और विस्तार मिल रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व आज भक्तिभाव और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास भोपाल में श्री कृष्ण पर्व आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के पावन चरण प्रदेश में पड़े, उन स्थलों को मध्य प्रदेश सरकार श्री कृष्ण पाथे के रूप में विकसित कर रही है। साथ ही भगवान श्री राम से जुड़े पावन स्थलों को श्री राम वन गमन पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। भोपाल के मास्टर प्लान से जुड़े सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भोपाल की कठिनाइयों और उससे जुड़े विषयों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप जो भी बेहतर रास्ता होगा, सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ेगी। मौसम विभाग ने आज नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट, जबकि छतरपुर, सागर, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी और बैतूल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और पंजाब के लुधियाना में आयोजित 21वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी छतरपुर द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30, रात 8:15 और रात 9:45। शाम 6 होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा रात 8:00। रात 9:30 पर सुनिए कार्यक्रम खेल जगत। इसमें आज आप सुनेंगे पंकज कुमार जैन के साथ की गई भेंटवार्ता, खेलों के विकास में शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। आपकी फरमाइश का प्रसारण समय है रात 10:00 और राग रजनी कार्यक्रम में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे पंडित गणपति भट्ट का ख्याल गायन राग बागेश्री। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का निर्धारित क्रम, आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल, OTT वेब्स और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:02 हो रहे हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

डीटीएच पर ये आकाशवाणी भोपाल है। अब लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी छतरपुर की है। इस कार्यक्रम में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। सबसे पहले सोहर आपको सुनवाते हैं, कलाकार हैं नीलम तिवारी।

0: मीडियम वेव 465.98 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा वाणी।
1: इटली के प्रधानमंत्री

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त मार्गेशा।
1: और मैं हूँ श्रद्धा। और दोस्तों, आज हम आपसे करेंगे ढेर सारी बातचीत और सुनेंगे बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे से गीत भी।
0: लेकिन सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से जन्माष्टमी के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: दोस्तों, आज के खास कार्यक्रम में हम ना जन्माष्टमी के त्यौहार के बारे में श्री कृष्ण की कहानी और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बातचीत करेंगे।
0: लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न पूछते हैं और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कार्यक्रम के अंत में बताते हैं। तो आज इसी कड़ी में पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है।
1: और दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न है कि भारत का पहला जल मार्ग कौन सी नदियों पर घोषित किया गया था।
0: दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इन दोनों प्रश्नों के सही उत्तर कार्यक्रम के अंत तक ढूंढ लेंगे। लेकिन उससे पहले आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: तो जैसा कि आपने अभी अभी ये जो गीत सुना है, तो हम अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किस विषय पर बातचीत करने वाले हैं, क्यों मागेशा?
1: हाँ बिल्कुल।
0: और दोस्तों, जन्माष्टमी पर अगर हम बातचीत करने जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे शुभ शुरुआत होगी श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, उनके बचपन की जो कहानियां हैं, उससे शुरुआत करने पर। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको श्री कृष्ण की सभी बाल लीलाओं के दर्शन कराए जाए, वो भी आपके दर्शन नहीं, माफ़ कीजिएगा, श्रवण कराया जाए श्री कृष्ण की सभी बाल लीलाओं का। क्यों?
1: सही कहा, तो इसके साथ शुरू करते हैं।
0: बिल्कुल। तो एक बार ज़रा सोचिए कि मथुरा के राजमहल में उस सुबह शहनाई बज रही थी, फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई थी और राजकुमारी देवकी दुल्हन के जोड़े में सजी थी। आंखों में नए जीवन का सपना, चेहरे पर शर्माती हुई मुस्कान। उनका विवाह वासुदेव से हो रहा था और उनका भाई कंस, जो उन्हें जान से भी ज़्यादा चाहता था, खुद घोड़ों की लगाम थामे उनका रथ थामे हुआ था। हंसते हुए गाते हुए अपनी लाडली बहन को खुद ससुराल पहुंचाने के गर्व में डूबा हुआ वो आगे बढ़ रहा था।
1: लेकिन उस खुशहाल माहौल को जैसे किसी की नज़र लग गई, अचानक आसमान से एक भारी गूंजती हुई आवाज़ उतरी। आकाशवाणी हुई, कोई दिखा नहीं, बस शब्द हवा में तैरते हुए हर दिशा से एक साथ सुनाई दे रहे थे।
0: हे कंस, जिस देवकी को तू आज अपने प्रेम से विदा कर रहा है, याद रख, इसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी।
1: एक पल में सब कुछ जम गया, घोड़े रुक गए, गीत थम गए, कंस के हाथ से लगाम छूट गई, देवकी के चेहरे की मुस्कान वही जम गई थी, और जो असमंजस से अपने भाई की तरफ देख रही थी, जिसकी आंखों में अभी थोड़ी देर पहले एक प्यार था, अब वहां सिर्फ खौफ और गुस्सा था।
0: जिस भाई के हाथ कुछ पल पहले अपनी बहन को खुशी खुशी ससुराल पहुंचाने के लिए रथ की लगाम थामे हुए थे, उन्हीं हाथों में अब तलवार थी,

0: कंस पागलों की तरह तलवार निकाल लाया और अपनी ही बहन का गला काटने के लिए हाथ उठाया, और देवकी बस इतना ही कर पाई कि कांपते हुए हाथों से अपने भाई को देख रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि इतनी सी देर में आखिर क्या बदल गया।
1: वासुदेव बीच में कूद पड़े, कंस के पैरों में गिरकर विनती करने लगे, इसे मत मारो, इसकी कोई गलती नहीं है, मैं वचन देता हूँ इसकी हर संतान जन्म लेती ही खुद तुम्हारे हाथों सौंप दूंगा।
0: कंस की सांसें तेज चल रही थी, आंखों में अब भी डर था, मगर वो रुक गया और उसी पल देवकी और वासुदेव को उठाकर उसने कारागार के उन ठंडी दीवारों के हवाले कर दिया जो अगले कई सालों तक उनका घर बन गई।
1: अब जरा सोचिए उन सालों का दर्द। देवकी की गोद में एक एक करके 6 बार जीवन आया और 6 बार ही जन्म के कुछ ही पल बाद वासुदेव अपने ही हाथों से उस नवजात को कंस के हवाले कर देते थे, जानते हुए कि आगे आखिर क्या होने वाला है।
0: हर बार देवकी की चीख कारागार की दीवारों से टकराकर वापस लौट आती थी, हर बार माँ की गोद भरती और अगले ही पल खाली हो जाती, हर बार वासुदेव अपनी आंखें बंद कर लेते थे क्योंकि पिता होकर भी वे कुछ नहीं कर पाते थे।
1: 7वीं बार गर्भ में पल रहे बलराम को किसी दैवीय शक्ति ने चुपचाप देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया और कंस को यही लगा कि जो गर्भ है वो गिर गया।
0: और अब आया वो 8वां मौका, भादों की वो रात जब आसमान फट पड़ा था, बादल इतने घने थे कि चांद का नामो निशान नहीं था और हर बिजली की कड़क के साथ कारागार की दीवारें कांप उठती थी।
1: देवकी प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी, पसीने से भीगी हुई थी, सांसें उखड़ रही थी। वासुदेव उनका हाथ थामे बैठे थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे दिल कह रहा हो कि इस बार काश कुछ अलग होने वाला है।
0: और ठीक आधी रात को एक हल्की सी चीख के साथ एक बालक का जन्म हुआ,
1: लेकिन इस बार कोई सैनिक दौड़कर नहीं आया, कोई खबर कंस तक नहीं पहुंची,
0: क्योंकि इस बार उस अंधेरी रात में अचानक एक तेज रोशनी भर गई और उस रोशनी में साक्षात भगवान विष्णु प्रकट हुए, 4 भुजाएं, हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, गले में वैजंती माला, और देवकी और वासुदेव डर के मारे कांप उठे मगर फिर हाथ जोड़कर सिर झुका लिया।
1: विष्णु भगवान की आवाज में एक अजीब सी शांति थी, उन्होंने कहा, घबराओ मत, मैं ही स्वयं इस बालक के रूप में जन्म ले रहा हूं ताकि कंस के अत्याचार का अंत कर सकूं। अभी इसे उठाओ, यमुना पार करके गोकुल जाओ नंद के घर, वहां आज ही रात यशोदा ने एक कन्या को भी जन्म दिया है, इस बालक को वहां छोड़ आना और उस कन्या को यहां ले आना।
0: और इतना कहते ही वो दिव्य रूप फिर से एक साधारण कोमल नवजात शिशु में बदल गया, बस एक नन्हा सा बच्चा जो कि माँ की गोद में सिसक रहा था।
1: देवकी की आंखों में आंसू बह निकले, इस बार डर के नहीं, एक अनकही राहत के।
0: 7 बार के दर्द के बाद आज पहली बार उन्हें लगा कि शायद ये बच्चा बच जाए, शायद उनकी गोद का ये लाल कंस के अत्याचार से बचकर एक नई दुनिया देख पाएगा।
1: तभी अचानक होने लगे वही चीजें, जो भारी लोहे के ताले कभी अपने आप नहीं खुलते थे वो खट की एक आवाज के साथ खुल गए, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें खोल गया हो।
0: बाहर पहरा दे रहे सैनिक जो अभी तक भाले थामे चौकन्ने खड़े थे वो सभी जम्हाई लेने लगे और एक एक कर वहीं जमीन पर बैठे गहरी नींद में डूब गए।
1: कमरे में जल रहा एक छोटा सा दिया जो हवा के हर झोंके से बुझते बुझने को था वो भी स्थिर होकर जल रहा था, जैसे रास्ता खुद अपने आप रोशन होकर ठहर गया हो।
0: वासुदेव जी की सांसें तेजी से चलने लगी, ये वही संकेत था जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण ने की थी। उन्होंने कांपते हाथों से बालक को एक टोकरी में लिटाया, ऊपर से एक कपड़े से ढका और टोकरी सिर पर उठाई और एक आखिरी नजर देवकी की तरफ डाली।
1: देवकी बस इतना ही कह पाई, इसे संभाल लेना।
0: वासुदेव ने सर हिलाया और अंधेरी बारिश में निकल पड़े।
1: बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, हर कदम पर पैर कीचड़ में धंस रहे थे, बिजली की चमक में एक एक पल का रास्ता दिखने को नहीं था, फिर सब फिर से काला सा होने लग गया था।
0: और तभी सामने आई यमुना उफनती हुई, लहरें इतनी ऊंची कि पार करना नामुमकिन लग रहा था। वासुदेव जी का दिल एक पल को डूब गया, लेकिन फिर उन्होंने टोकरी को कसकर पकड़ा और उतर गए पानी में।
1: हर कदम पर पानी और ऊपर

0: करता जा रहा था, घुटनों से कमर, कमर से छाती। वासुदेव जी ने टोकरी को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। बाहें कांप रही थी पर उन्होंने हार नहीं मानी।
1: और तभी जैसे ही यमुना की एक लहर टोकरी में सोए उस नन्हे बालक को पैर को छूने के लिए आगे बढ़ी, तो कहते हैं कि शेष नाग स्वयं जल से प्रकट हो गए।
0: अपने विशाल फनों को छाते की तरह बालक के सिर पर उन्होंने तान दिया ताकि बारिश की एक बूंद भी उसे ना छू पाए।
1: और फिर जो दृश्य बना होगा, एक बार सोचिए, चारों तरफ अंधेरी रात, आसमान से बरसता पानी, उफनती यमुना के बीच सिर पर नन्हे कृष्ण को उठाए वासुदेव और उनके ऊपर शेषनाग के विशाल फन एक दिव्य छत की तरह फैले हुए।
0: यमुना का उफान मानो श्रद्धा में झुक गया था। लहरें शांत होने लगी और रास्ता बनता ही चला गया,
1: जैसे स्वयं प्रकृति जानती हो कि ये कोई साधारण बालक नहीं, आज उसके साथ स्वयं नारायण चल रहे हैं।
0: गोकुल पहुंचकर वासुदेव जी चुपचाप नंद बाबा के घर में दाखिल हुए। यशोदा मैया गहरी नींद में थी, ठीक वैसे ही जैसे कारागार में पहरेदार सोए हुए थे। मानो पूरी सृष्टि ने मिलकर इस एक रात को अपने हाथों में थाम लिया हो।
1: वासुदेव जी ने कांपते हाथों से उस बालक को यशोदा मैया के पास सुला दिया। एक पल को उसे निहारा इस डर के साथ कि शायद यह आखिरी बार हो जब वो उसे इतने पास से देख रहे हों।
0: और फिर उतनी ही चुपचाप यशोदा मैया के पास सो रही नवजात कन्या को उठाकर वापस उसी रास्ते मथुरा लौट गए।
1: सुबह जब कंस को खबर मिली कि देवकी ने आठवीं संतान को जन्म दिया है, तो वो गुस्से में पागल होकर कारागार दौड़ा। उस कन्या को हाथों में उठाया और पटकने ही वाला था कि उसके हाथों से फिसलकर वो कन्या आकाश में उड़ गई।
0: देवी के रूप में प्रकट होकर उसने कहा, मूर्ख कंस, जिसने तुझे मारना है वो तो कहीं और सुरक्षित पल रहा है।
1: इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गई और वही कंस वहां खड़ा रहा, कांपता हुआ, अपनी हार का पहला एहसास ले रहा था।
0: और उधर गोकुल में उस छोटी सी कुटिया में जिस अवतार का इंतजार युगों से हो रहा था, वो आखिरकार धरती पर एक माँ की गोद की गर्माहट में बेखबर सो चुका था।

0: कृष्ण जन्म की अगली सुबह नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में ढोल नगाड़े बज रहे थे। हर घर से लड्डू बट रहे थे, गलियों में रंगोली सजी थी। यशोदा मैया अपनी बगल में सोए हुए उस तेजस्वी बालक को देख देख कर मुस्कुरा रही थी, जैसे उन्हें अब यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह खुशी सच में उनकी है।
1: पूरे गोकुल में जश्न का माहौल था। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि रातों रात एक बालक बदल दिया गया है।
0: कुछ दिनों बाद जब कंस के जासूस ने उसे बताया कि गोकुल में नंद के घर एक बालक का जन्म हुआ है और वहां धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा है, तो कंस के मन में शक का एक कीड़ा कुलबुलाने लगा।
1: क्या वो बालक जिसके बारे में आकाशवाणी हुई थी वही तो नहीं? उसने ठान लिया कि वो चुप नहीं बैठेगा और अपनी सबसे भरोसेमंद राक्षसी पूतना को उसने बुलाया ताकि गोकुल जाकर उस बालक का पता लगाए और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे।
0: पूतना के पास एक भयानक शक्ति थी, वो मन चाहा रूप धर सकती थी। उसने अपना डरावना असली चेहरा छुपाकर एक बेहद सुंदर स्त्री का रूप लिया, बालों में गजरा सजाया, चेहरे पर मीठी मुस्कान रखी और गोकुल की धूल भरी गलियों की तरफ चल पड़ी।
1: वो सीधा नंद बाबा के आंगन में पहुंची, जहां यशोदा मैया उस वक्त कान्हा को खिला रही थी। पूतना को देखकर मैया मुस्कुरा दी, कोई शक नहीं हुआ और ना ही किसी ने सवाल उठाया।
0: पूतना ने विनम्रता से झुककर कहा, मैया ये तो साक्षात लक्ष्मी का रूप नजर आ रहा है आपका बालक, जरा मुझे भी गोद में लेने दो ना।
1: यशोदा मैया, जो किसी पर संदेह करना जानती ही नहीं थी, बिना

0: उसके कारण हिलने तक लगी थी।
1: फिर एक भयानक पल में वो अपने असली विशालकाय डरावने रूप में लौट आई और धड़ाम से जमीन पर गिर गई।
0: पूरी धरती जैसे कांप उठी हो। धूल का गुब्बार आसमान तक उड़ा और गोकुल के लोग डर के मारे अपने अपने घरों से बाहर निकलकर दौड़ लेने लगे।
1: लेकिन यशोदा मैया के लिए उस पल दुनिया जैसे रुक सी गई हो। उनका कलेजा मुंह को आ गया। वो दौड़कर कृष्ण के पास पहुंची और उन्हें सीने से भींच लिया, मानो दुनिया की हर बुरी नजर से उन्हें बचा लेना चाहती हूँ।
0: उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे, हाथ कांप रहे थे, क्योंकि कुछ ही पल पहले उन्होंने अनजाने में अपने बेटे को मौत के मुंह में सौंप दिया था।
1: और उन माँ को क्या पता था कि जिसकी गोद में उसने अभी अभी अपने बच्चे को भेजा था वो पूतना थी, वो एक राक्षसी थी।

0: सपना जैसी भयानक घटना के बावजूद भी गोकुल में जल्द ही फिर से हंसी खुशी लौट आई थी, क्योंकि कान्हा तो कान्हा थे, उदास उन्हें रहना आता कहाँ था।
1: कुछ ही महीनों में वो घुटनों के बल चलने लगे, फिर लड़खड़ाते कदमों से दौड़ने लगे, और उसी के साथ शुरू हुई उनकी उन शरारतों की कहानी जो आज तक हर घर में सुनाई जाती है।
0: यशोदा मैया की

0: रसोई का वो नजारा हर सुबह ना बिल्कुल एक जैसा हुआ करता था। मैया बैठी होती, हाथ में मथानी, दही से मक्खन निकाल रही होती, कमरे में घी दही की खुशबू फैली रहती थी।
1: और मक्खन से भरी मटकी को उन्होंने एक नई तरकीब से ऊंचे छीके पर टांग रखा था, इस उम्मीद में कि आज तो कान्हा की पहुंच से दूर ही रहेगी।
0: लेकिन दरवाजे की ओर से झांक रहे थे नन्हे कृष्ण, आंखों में शरारत की चमक, होठों पर मुस्कान दबाए
1: और वो चुपचाप बाहर निकल आए, अपने सखाओं को इशारा किया और देखते ही देखते एक मानव पिरामिड बन गया। कोई कंधे पर चढ़ा, कोई सिर पर पैर रखे और अब सबसे ऊपर हाथ फैलाए मटकी तक पहुंचने ही वाले थे हमारे बाल कृष्ण।
0: और बस ठीक उसी पल यशोदा मैया की नजर उन पर पड़ गई।
1: ओहो कान्हा, ये आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी और फिर वो पूरा पिरामिड हंसी के फव्वारे और गिरते पड़ते बच्चों के साथ बिखर गया।
0: कान्हा भाग खड़े हुए, हाथ में टूटी हुई मटकी का टुकड़ा, मुंह और गालों पर मक्खन लपेटे और पीछे पीछे यशोदा मैया डंडा लेके दौड़ी। लेकिन उस डंडे में गुस्सा कम प्यार ज्यादा झलकता था।
1: रोज सुबह गांव की गोपियां यशोदा मैया के दरवाजे पर आ खड़ी होती थी, हाथों में टूटी मटकियां, चेहरे पर बनावटी गुस्सा। मैया तेरे लाला ने आज फिर मेरी मटकी फोड़ दी। मैया आज मेरा सारा माखन चुरा गया तेरा लल्ला।
0: और यशोदा मैया हर बार मुस्कुराते हुए यही कहती, मेरा खाना तो अभी बहुत छोटा है, वो भला ये सब कैसे कर सकता है।
1: लेकिन उन्हीं आंखों में एक माँ का वो गर्व भी झलकता था, जो जानती थी कि उसका बेटा नटखट तो है पर निर्दोष भी है।
0: यही तो कृष्ण की सबसे बड़ी खूबी थी, वो शरारत करते लेकिन उस शरारत में भी एक मासूमियत, एक अनकही दिव्यता झलकती थी।
1: और एक बार तो गुस्से में यशोदा मैया ने कान्हा को ओखली से रस्सी से बांध दिया।
0: लेकिन वहां भी कान्हा ने अपनी लीला दिखाई, घसीटते हुए ओखली को दो पेड़ों के बीच में खींच लिया और दोनों बड़े बड़े विशाल पेड़ जो थे वो धड़ाम से गिर गए।
1: और उन गिरे हुए पेड़ों से दो दिव्य पुरुष निकले। असल में वो शापित यक्ष थे जिन्हें कान्हा ने उसी पल मुक्ति दे दी और कान्हा की सजा भी एक लीला बन गई।
0: लेकिन गोकुल की इन शरारतों के बीच एक दिन कान्हा की लीला का रुख कुछ ऐसा बदल गया कि पूरा गोकुल डर उठा।
1: यमुना के पानी में कालिया नाम का एक विशाल और विषैला नाग रहता था। उसके विष से नदी का पानी जहरीला होने लगा था, आसपास के पेड़ पौधे सूखने लगे थे और गोकुलवासी यमुना के उस हिस्से के पास जाने से भी डरते थे।
0: एक दिन खेलते खेलते कान्हा की गेंद उसी यमुना में जा गिरी। उनके जो दोस्त थे, उनके जो सखा थे, उन्होंने सपने उसको रोका, लेकिन कान्हा कहाँ रुकने वाले थे, वो सीधे यमुना में कूद पड़े।
1: और जैसे ही कालिया नाग ने उन्हें देखा, उसने अपने विशाल फनों से कान्हा को जकड़ लिया। गोकुल के बच्चे दौड़ते हुए गांव पहुंचे और खबर सुनते ही यशोदा मैया और पूरा गोकुल यमुना किनारे पहुंच गया।
0: लेकिन तभी हुआ कुछ ऐसा जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं।
1: कान्हा कालिया नाग के बंधन से निकलकर उसके फणों पर चढ़ गए और फिर शुरू हुआ वो अद्भुत नृत्य जिसे आज भी कालिया मर्दन की लीला के रूप में याद किया जाता है।
0: एक के बाद एक कान्हा कालिया के फणों पर नृत्य करते रहे और आखिरकार उस विषैले नाग को का जो अहंकार था वो टूट गया।
1: कालिया ने हार मान ली और कृष्ण से क्षमा मांगी और कान्हा ने उसे जीवन दान दिया, लेकिन यह आदेश भी दिया कि वो यमुना छोड़कर कहीं और चला जाए।
0: जिस यमुना के किनारे कुछ देर पहले सब डरते रहते थे, उससे दूर भागते रहते थे, वहीं फिर से खुशियां लौट आई। गोकुल ने अपने कान्हा को सिर्फ एक नटखट बालक के रूप में नहीं बल्कि अपने रक्षक के रूप में भी देखा।
1: लेकिन अगले ही दिन वही कान्हा फिर वही नटखट कान्हा बन गए।
0: कभी किसी की मटकी छुपा दी, कभी सखाओं के साथ मिलकर किसी गोपी की राह रोक दी, कभी गायों की पूंछ पकड़कर हंसते हंसते भागे। और जब शरारत यशोदा मैया तक पहुंची तो मासूम चेहरा बनाकर ऐसे खड़े हो जाते जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं हो।
1: यही तो कान्हा की बाल लीलाओं की खूबसूरती थी। एक पल में वो यमुना के विषैले कालिया को परास्त करने वाले थे और अगले ही पल मैया की आंखों से बचकर माखन चुराने वाले नन्हे से कान्हा।
0: उनकी हर शरारत में जैसे गोकुल के लिए एक नई खुशी छुपी थी। इसलिए तो कृष्ण की ये नटखट लीलाएं सिर्फ कहानियां नहीं बनी, वो गोकुल की यादों का हिस्सा भी बन गई।
1: और आज भी जब कोई मुस्कुराकर कान्हा को याद करता है ना, तो सबसे पहले आंखों के सामने वही नटखट सा चेहरा आता है, गालों पर मक्खन, आंखों में शरारत।

0: दोस्तों, इन शरारतों में ना कृष्ण कभी अकेले नहीं थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही गोकुल के गलियों में एक शोर गूंज उठता था। श्रीदाम, सुबल, मधुमंगल और सखाओं की पूरी टोली हाथों में लाठी और छोटी बांसुरी लिए गायों को हाँकते हुए निकल पड़ती।
1: रास्ते में धूल भरे होते, बीच बीच में हरे भरे पेड़ खड़े होते और उन पेड़ों की छाव में बच्चे बैठे होते, हंसी मजाक करते, एक दूसरे को धकेलते, दौड़ लगाते। कोई पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ रहा होता, कोई नदी किनारे कुश्ती लड़ रहा होता
0: और बीच में खड़े होते कान्हा, बांसुरी होठों से लगाए, आंखें बंद किए, एक अलग ही धुन में खोए हुए।
1: जिस भी घर के सामने से ये टोली गुजरती ना, वहां से कुछ न कुछ खा पी ही लेती। कभी कहीं दही का कटोरा, कभी कहीं मक्खन की डली, कभी पके हुए फल।
0: गांव वाली खिड़कियों से झांक कर देखते, मुस्कुराते, फिर भी शरारत करने का मन नहीं होता था, क्योंकि उन शरारतों में भी एक अपनापन था, एक ऐसा प्यार जो शब्दों में हम बयां ही नहीं कर सके।
1: दोपहर होते होते सब यमुना किनारे पहुंच जाते। कोई पानी में छपाक छपाक कूदता, कोई किनारे पर बैठकर मिट्टी के खिलौने बनाता और कान्हा बीच में बैठकर सबको कोई कहानियां सुना रहे होते या फिर किसी शरारत की कोई नई तरकीब गढ़ रहे होते।
0: हंसी की आवाजें दूर तक गूंजती रहती और थकान का नामो निशान किसी के चेहरे पर तो होता ही नहीं था।
1: लेकिन कान्हा की बाल लीलाएं सिर्फ सखाओं के साथ खेलने और शरारत करने तक सीमित नहीं थी। एक दिन गोकुल में इंद्रदेव की पूजा की तैयारी हो रही थी,
0: तब

0: राणा ने गोकुलवासियों से सवाल किया, हमारी रोजी रोटी का आधार तो ये गोवर्धन पर्वत, हमारी गाय और हमारी धरती है, तो पूजा भी उन्हीं की होनी चाहिए ना।
1: ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे गोकुलवासियों ने बस इसलिए मान लिया कि कान्हा ने कह दिया। उन्होंने कान्हा की बात सुनी, उनके बारे में सोचा और जब उसके बारे में उन्हें सही लगा फिर उसके बाद उन्होंने आगे बात बढ़ाई।
0: फिर गोकुलवासियों ने मिलकर ये तय किया कि इस बार इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत, अपनी गायों और अपनी धरती के प्रति कृतज्ञता उनको व्यक्त करनी चाहिए।
1: पूरे गोकुल में उत्सव जैसा माहौल बन गया। पकवान बने, गायों को सजाया गया और गोवर्धन की पूजा की गई।
0: लेकिन इंद्रदेव इससे क्रोधित हो गए और गोकुल पर मुसलधार बारिश होने लगी। देखते ही देखते चारों तरफ पानी भरने लगा।
1: वो बारिश सिर्फ बारिश नहीं थी, जैसे पूरा आसमान गोकुल पर टूट पड़ा हो। बच्चे डरने लगे, गायें घबराकर इधर उधर भागने लगी, गोपियां अपने बच्चों को सीने से लगाकर बचाने लगी।
0: लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब जाए तो जाए कहाँ।
1: लेकिन तभी कान्हा ने सबको भरोसा दिया, डरो मत।
0: और फिर नन्हे से कान्हा ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया।
1: एक बार सोचिए ना उस दृश्य को, एक तरफ आसमान से लगातार बरसता हुआ पानी, चारों तरफ अंधेरा और डर, और दूसरी तरफ एक नन्हा सा बालक अपनी सबसे छोटी उंगली पर पूरा पर्वत उठाए खड़ा है।
0: पूरा गोकुल, बच्चे बड़े, गोपियां और उनकी गायें उसी पर्वत के नीचे आकर सब खड़े हो गए।
1: 7 दिनों तक बारिश होती रही लेकिन कान्हा अपनी उंगली पर गोवर्धन उठाए मुस्कुराते रहे।
0: सखाओं के लिए तो जैसे ये कान्हा का कोई नया खेल था। कोई उन्हें देखकर हैरान था, कोई उनके पास खड़े होकर मजाक कर रहा था,
1: और कान्हा जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सबके बीच मुस्कुराते खड़े थे, जैसे गोवर्धन उठाना भी उनके लिए सखाओं के साथ खेलने जैसा ही काम हो।
0: आखिरकार इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने वर्षा रोक दी। गोकुल फिर से सुरक्षित था।
1: शाम ढलते ही जब कान्हा गायों को लेकर घर लौटे तो पूरा गोकुल जैसे जी उठा।
0: धूल भरे पैर, माथे पर मोरपंख का मुकुट, हाथ में बांसुरी और चेहरे पर मुस्कान, जिसे देखकर हर थकान दूर हो जाती थी।
1: हर माँ हर बहन उस दृश्य को देखने के लिए ना अपने दरवाजे पर आ खड़ी होती थी जब कृष्ण और उनके सखा बाहर से हेल कूद कर अपने घर जाने के लिए निकलते थे, अपनी आंखों में वात्सल्य लिए, जैसे दिन भर बस उसी एक पल का इंतजार करती हो जब श्री कृष्ण हमारे दरवाजे के सामने से निकलेंगे।
0: ये वो उम्र थी जब कृष्ण सिर्फ नंद बाबा के लाडले नहीं रह गए थे बल्कि पूरे गोकुल के दुलारे बन चुके थे। हर घर का बच्चा उन्हें अपना दोस्त मानता, हर माँ उन्हें अपना बेटा।
1: और शायद यही गोकुल के कान्हा की सबसे खूबसूरत बात थी, सखाओं के लिए वो सबसे प्यारे दोस्त थे, मैया यशोदा के लिए नटखट सा लाल और गोपियों के लिए माखन चोर,
0: और पूरे गोकुल के लिए वो कान्हा जो हर मुश्किल में सबसे आगे खड़े मिलते थे।

0: तो दोस्तों, ये था आज का युववाणी कार्यक्रम। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो चलिए, अब समय आ गया है आपको उन दोनों प्रश्नों के उत्तर बताने का। और आज हमने जितनी कृष्ण लीलाओं की बात की, हमें उम्मीद है कि आपको वो भी पसंद आई होगी। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न था, वो ये था कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। इसका सही उत्तर है नीलगिरी।
1: और दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी पर घोषित किया गया था, और इसका उत्तर है गंगा भागीरथी हुगली।
0: तो दोस्तों, इसी के साथ आपको जन्माष्टमी त्योहार की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: नंद के आनंद भयो,
0: जय कन्हैया लाल की।

अभी युवा साथियों के लिए युवाणी का प्रसारण किया जा रहा था। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

दाग दी फायर इस फिल्म के का गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वर में शत्रुघ्न समीर की थी। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं विमलेश
3: और मैं अजीत महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने सुविचार भेजा है।
2: लिखते हैं, रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से निभाएं, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर संदेश के लिए। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजनी जंघेल जी ने हमारे परिवार वाले संवाद पर स्लोगन भेजा है। लिखते हैं,
3: शिक्षित परिवार बच्चों को केवल पढ़ना नहीं लेकिन अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश

0: से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं।
1: नमस्कार। पेड़ की बात कार्यक्रम सुनते समय जब माइक्रोस्कोप पर तने और पत्ती को बच्चों को दिखाया गया तो हमें अपने छात्र जीवन के वो दिन याद आ गए जब हमने भी बायो लैब में इसी तरह दिन गुजारे थे।
0: जी,
1: कार्यक्रम दिलचस्प और जिज्ञासा को शांत करने वाला रहा। उमंग की पूरी टीम को धन्यवाद और आभार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए।
1: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर जी लिखते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें मेहनत का सहारा मिलता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म से नाता रखता है। उसके लिए हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। बस विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ाइए।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने एआई से संबंधित हमारी बातचीत पर एक विशेष प्रतिक्रिया भेजी है। आइए सुनते हैं।
0: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 4 तारीख को कार्यक्रम उमंग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के बारे में आप दोनों की बातचीत सुनने को मिली। आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी जिसमें एआई के फायदे और नुकसान के बारे में बताया गया। सुनकर बहुत अच्छा लगा। उमंग टीम के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहकर संदेश भेजने के लिए।
0: जी,
1: तो करते हैं शुरुआत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी की।
0: जी,
1: तो विमलेश जी, पहले दिन हमने भारत की बात की।
0: जी,
1: आज का क्या कार्यक्रम है?
0: हाँ जी जी, आज हम चलेंगे हिमाचल प्रदेश की वादियों में। मुझे तो हिमाचल सुनते ही वहाँ की सुंदर सुरम्य घाटियाँ, सेबों से लदे बगान और हिमालय की चोटियाँ याद आ जाती हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा एक अमेरिकी व्यक्ति जिसने भारत में सेब को नई पहचान दी।
1: विमलेश जी, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि आज एक अमेरिकी व्यक्ति की विशेष चर्चा क्यों, इसका औचित्य तो समझाइए।
0: जी जी जी, जरूर। देखिए, हमारे भारत की विरासत इतनी समृद्ध है कि इससे प्रभावित होकर बहुत से विदेशी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए। जैसे स्वीडन की मिस मार्गरेट नोबेल, जो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या बनकर बाद में सिस्टर निवेदिता कहलाईं, और बंगाल की स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया।
1: जी बिल्कुल विमलेश जी, मुझे तो फ्रांस की मिस मिर्रा अल्फांसा की याद आ रही।
0: जी,
1: जो श्री अरविंद की शिष्या बनी और बाद में मदर कहलाईं।
0: जी,
1: और साथ ही साथ मदर टेरेसा भी मुझे याद आती हैं।
0: तो अजीत जी, इसी क्रम में आज हम श्रोताओं को एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहेंगे जिसने भारत में आकर न सिर्फ यहाँ का जीवन जिया बल्कि पूरे प्रदेश की तकदीर बदल दी। अजीत जी, अब आपकी बारी कहानी को आगे बढ़ाने की।
1: जी, श्रोताओं जरा सोचिए, एक विदेशी युवक जिसने हिमाचल की पहाड़ियों में नए तरीके से सेब की खेती शुरू की।
0: जी,
1: और उस खेती से लाखों किसानों की आजीविका चलने लगी।
0: वाह, ये तो सच में अद्भुत है। कौन था वो युवक?
1: विमलेश जी, उस युवक का नाम था सत्यानंद स्टोक्स।
0: जी,
1: उसका मूल नाम सैमुअल इवांस स्टोक जूनियर था। उसका जन्म अमेरिका के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। आराम की जिंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना।
0: तो वे भारत क्यों आए?
1: युवावस्था में वे मात्र 22 वर्ष की आयु में अमेरिका के फिलाडेल्फिया से कुष्ठ रोगियों की सेवा की भावना से भारत आए।
0: जी,
1: और हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ क्षेत्र में रहने लगे। उन दिनों वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन था।
0: श्रोताओ, वो एक ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो सिर्फ दूर खड़े होकर केवल सलाह देते हैं, वे लोगों के सुख दुख में सहभागी बने।
1: बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। बाद में उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया और अपना नाम सत्यानंद रख लिया। उन्होंने भारतीय जीवन पद्धति को भी सम्मान दिया।
0: अजीत जी, हम बात कर रहे थे सेब की खेती के बारे में।
1: जी देखिए, ऐसा नहीं था कि उन दिनों हिमाचल में सेब की खेती नहीं होती थी। समस्या थी गुणवत्ता की।
0: जी,
1: तो उन्होंने यानी सत्यानंद जी ने अमेरिका के लुसियाना प्रांत से उच्च गुणवत्ता वाले सेब के पौधे मंगवाए और हिमाचल में लगाए।
0: जी,
1: शुरुआत आसान नहीं थी। लोगों को विश्वास ही नहीं था कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन आएगा,
0: लेकिन धीरे धीरे जब उन पौधों ने फल देना शुरू किया तो इन उच्च गुणवत्ता वाले सेब के फलों ने बाजारों में धूम मचा दी। उनकी भारी मांग होने लगी और इससे हजारों किसानों के जीवन में भारी परिवर्तन आया।
1: और हम सब जानते हैं कि आज हिमाचल के सेब पूरे देश में ही नहीं लेकिन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं।
0: जी,
1: न जाने कितने किसानों का जीवन बदल गया। एक व्यक्ति का दूरदर्शी निर्णय लाखों लोगों के लिए आशीर्वाद और वरदान बन गया। इसलिए तो उन्हें यानी सत्यानंद स्टोक्स को हिमाचल का एप्पल मैन भी कहा जाता है।
0: जी हाँ, फलों का व्यापार बढ़ा तो सड़कें भी बनी, बागवानी का विस्तार हुआ, फलों की खेती में नवाचार शुरू हुए, धीरे धीरे उस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया। लेकिन श्रोताओ, उनका योगदान केवल खेती तक ही सीमित नहीं था, है ना जी जी?
1: जी हाँ विमलेश जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सच्चाई ये है कि सत्यानंद जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई।
0: जी,
1: जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना।

0: पड़ा।
1: यानी जिस व्यक्ति ने पहाड़ों में पौधे लगाए थे उसी व्यक्ति ने अन्याय के विरुद्ध भी आवाज उठाई, उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है, देशभक्ति केवल जन्म से नहीं होती, कभी कभी सेवा से भी पैदा होती है। अजीत जी, तो अब करते हैं समापन कुछ विचारों के साथ।
0: जी जरूर।
1: श्रोताओं, कल्पना कीजिए, एक दिन था जब उस युवक के हाथ में कुछ पौधे थे और उन पौधों ने वहाँ के लोगों के जीवन की दिशा बदल दी। शायद हमारे पास हजारों एकड़ जमीन नहीं है, लेकिन हमारे हाथों में भी कोई न कोई पौधा तो अवश्य ही है, कोई विचार, कोई सेवा।
0: जी, शायद कोई प्रतिभा या आंखों के सामने कोई ऐसा बच्चा जिसे हम शिक्षा दे सकते हैं, तो इसीलिए
1: कभी किसी काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि विशाल वृक्ष भी एक छोटे से बीज या पौधे से आरंभ होते हैं। इसलिए हम जहाँ भी रहें यूं ही जीवन व्यतीत न करें, कुछ ऐसा रोप कर जाएं जिसकी छाया आने वाली पीढ़ियां पा सकें।
0: जी, बहुत अच्छा विचार। तो साथियों, ये थी एक अमेरिकी युवक की भारत से प्रेम की कहानी। आज कभी यदि आप हिमाचल जाएं तो वहां के सेबों से लदे बागों को देखकर इस व्यक्ति को जरूर याद करें, जो सैमुअल इवांस स्टोक्स जूनियर से अब सत्यानंद स्टोक्स के नाम से इतिहास में जाना जाता है।
1: जी, और आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: जी, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को आप सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपको वहाँ कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
1: तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न।
0: प्रश्न है, सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सत्यानंद स्टोक्स किस देश के किस शहर के निवासी थे?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। पहला कार्यक्रम है मेरे तो गिरिधर गोपाल।
1: इस कार्यक्रम में भक्ति मीराबाई के जीवन और उनकी कृष्ण भक्ति का विशेष उल्लेख किया गया है और चर्चा की गई है कि आज भी आधुनिक साहित्य उनकी कृतियों के प्रति आभारी है।
2: मेरे तो गिरिधर गोपाल।

0: मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त, उन्हें भक्ति काल के प्रमुख संतों में गिना जाता है। जन जन में प्रचलित मीरा के भजन उनकी सरल आस्था का सीधा साधा चित्रण है।
1: बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे।
0: इस भक्त कवित्री ने लगभग 1300 भजन लिखे।

0: मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। वो जोधपुर की एक रियासत मेड़ता के महाराज राव रतन सिंह की बेटी थी। बचपन में ही माता पिता का साया उनके सर से उठ गया था, इसलिए मीरा का पालन पोषण उनके दादाजी राव दूदा ने किया। शिक्षा के साथ साथ मीरा ने प्रशासन, राजनीति और संगीत में भी कुशलता प्राप्त की।
1: राव दूदा मीरा को बहुत लाड़ प्यार से पालते। नन्ही मीरा की भोली भाली बातों पर वो मोहित हुए रहते।
0: एक दिन की बात है, राव दूदा कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा कर रहे थे। तभी बाहर किसी की बारात को देख मीरा अपने दादाजी के पास आई।
2: बाबा, ओ बाबा, देखो तो घोड़े पर चढ़कर कौन जा रहा है?
3: अरे देखूं तो, अरे ये तो बारात जा रही है।
2: देखो चमचम वस्त्र पहने हैं, कैसी सुंदर पगड़ी है। ये कौन है बाबा, ये कहाँ जा रहा है?
3: अरे ये दूल्हा है बिटिया, शादी करने

0: जा रहा है, अभी उसकी बारात जा रही है, फिर किसी लड़की से शादी करके उसे पालकी में लेकर वापस आ जाएगा।
1: और मेरा दूल्हा कौन होगा बाबा?
0: अरे होगा बेटी, वो भी हो जाएगा रानी बिटिया, पर अब तू मुझे पूजा पूरी कर लेने दे।
1: नहीं, पहले आप मुझे बताइए मेरा दूल्हा कौन है, वरना मैं आपको गिरधर गोपाल का शिंगार नहीं करने दूंगी।
0: भाई बता दूंगा ना बेटी।
1: नहीं, पहले आप मुझे बताइए।
0: बेटी ये शिंगार इसीलिए तो कर रहा हूँ, यही है तेरा दूल्हा।
1: सच पापा, ये है मेरा दूल्हा।
0: सच्ची भाई?
1: मेरा दूल्हा गिरधर गोपाल।
2: बचपन की इस भोली घटना के बाद से ही मीरा जैसे जैसे बड़ी होती गई, कृष्ण भक्ति में रमती गई।

0: चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से मीरा का विवाह हुआ। लेकिन मीरा मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उनके ध्यान में खोई रहती थी।
1: पति भोजराज और ससुर राणा सांगा मीरा के इस निश्चल व्यवहार को बहुत सहजता से लेते,
0: परंतु ससुराल के अन्य लोगों को मीरा का ये रूप पसंद ना आता था।
2: उदा भाई, देखो तो मीरा तैयार हुई या नहीं।
3: भाभी की बातें मेरी समझ में नहीं आती माँ साहब। मैंने तो सुबह ही उनसे कह दिया था कि शक्ति माँ के दर्शन करने जाना है।
2: हाँ, तो फिर?
3: पर वो ना तो कुछ बोली और ना ही चली।
2: हाँ,
3: बस बैठी उस कृष्ण की मूर्ति की तरफ देखती रही।
2: हाय हाय,
3: जिसे अपने मायके से लाई है।
2: तो क्या अब तक तैयार नहीं हुई?
3: नहीं जी, तैयार होना तो दूर, वहाँ तो गाना बजाना चल रहा है।
4: नैनन में नंदलाल।
1: एक के बाद एक पति भोजराज और ससुर राणा सांगा की मृत्यु के बाद मीरा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा।
0: अब राणा सांगा का छोटा बेटा राणा विक्रमादित्य राजा बन चुका था।
1: विधवा मीरा का यूं गिरधर गोपाल के ध्यान में खोए रहना, नाचना गाना उसे राजघराने की परंपरा के अनुकूल न लगता था। वो अनेक तरीकों से मीरा को डराता, धमकाता, मीरा को मारने के षड्यंत्र करता।
5: विष अवश्य ही हमारा काम करेगा। भाभी सा, तैयार है ना आप? ये आपके गिरधर गोपाल का चरणामृत है भाभी सा। आपको गिरधर गोपाल में विलीन कर देगा। दासी!
6: जी, जी, जी राणा जी महाराज।
5: जाओ, ये कटोरा मीरा भाभी सा को दे आओ। उनसे कहना ये उनके कान्हा का प्रसाद है। क्या कहा? कान्हा का प्रसाद, चरणामृत।
6: जी महाराज।
5: जाओ, जल्दी पहुंचा दो इसे, कहीं देर ना हो जाए।
6: जो आज्ञा महाराज।
5: गिरधर गोपाल का चरणामृत।
6: राणी सा की जय हो।
7: आओ सखी, भीतर आओ।
6: जी, वो
7: क्या हुआ सखी? तनिक चिंतित सी लग

0: रही हो?
1: वो कुछ नहीं।
0: कहूँ ना सखी, क्या बात है?
1: वो रानी सा, वो महाराज राणा ने आपके लिए कान्हा का प्रसाद भेजा है। ये चरणामृत।
2: क्या? मेरे कान्हा का प्रसाद?
1: पर हमें तनिक शंका होती है।
2: दो दो हमें, हम अभी पिएंगे।
1: रुकिए रानी सा, रानी सा जरा ठहरिए। रानी सा, क्या मालूम विश्वत हो?
0: राणा भेजा विष का प्याला, पीवत मस्त होई। दास मीरा लाल गिरधर, होनी हो

माना जाता है कि राणा ने कभी टोकरी में सांप भेजा, कभी मीरा के बिस्तर पर कांटे बिछवाए, लेकिन कृष्ण के प्रति आस्था मीरा को हर कष्ट से बचाती रही।

0: और एक दिन वो भी आया जब मीरा महल के सारे सुख और आराम छोड़कर मेवाड़ त्याग कर वृंदावन की ओर चलती।
1: हाथ में एक तारा लिए जोगन बनी मीरा को यूं रास्तों में नाचते गाते देख लोग हैरान हो जाते।
0: कुछ लोगों को मीरा का ये दिव्य रूप मोहित करता, लेकिन मीरा का यूं नाचना गाना उस समय के कुछ अंधविश्वासी लोगों के लिए बहुत असहनीय था। रास्ते में लोग तरह तरह की बातें करते।
2: भाई साहब, सुना है कि रानी मीरा ने महल छोड़ दिया।
3: अरे छोड़ना ही था
4: और कहीं, विधवा होकर नाचनो गानो
3: और क्या।
2: अरे भाई, पर ऐसी भक्त को भला कोई दीवारों में बांध सकता है क्या।
1: चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है।
5: हाँ, कितनी भली है रानी सा।
6: गाती भी बहुत अच्छा है।
2: हाँ, बहुत अच्छा। मैं मिला हूँ एक बार उनसे।
7: वो देखो, वो आ रही है, तुम्हारी रानी सा।
8: प्रणाम रानी सा।
9: प्रणाम रानी सा।
10: प्रणाम।
11: जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण।
12: ऐसे पैदल कहाँ जा रही है रानी सा।
11: अपने कान्हा के पास वृंदावन।
8: यूँ अपने घर परिवार को छोड़कर।
11: मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई।
2: मगर लोग क्या कहेंगे रानी सा।
7: राजकुमार भोजराज की विधवा और
11: जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
0: इस तरह समाज की और कुल की रीतियों को तोड़ती मीरा वृंदावन जा पहुंची।

0: इस समय की भी एक घटना बहुत प्रसिद्ध है।
1: कहा जाता है कि उस समय चैतन्य संप्रदाय के परम सिद्ध संत श्री रूप गोस्वामी वहाँ रहते थे।
2: गोविंद जय जय गोपाल जय जय
3: गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
1: मीराबाई उनसे मिलना और उनके दर्शन करना चाहती थी, परंतु गोस्वामी जी ने कहला भेजा,
4: हम स्त्रियों से नहीं मिलते।
5: क्या सच गोस्वामी जी ने ऐसा कहा?
6: जी हाँ माता, गोस्वामी जी स्त्रियों से भेंट नहीं करते, उन्होंने सदा इस नियम का पालन किया है।
5: हम तो समझते थे कि वृंदावन में श्री कृष्ण ही एकमात्र पुरुष है। ठीक है, जैसी हरी इच्छा, चलती हूँ। स्वामी जी से कहना, संत देख दौड़ी आई।

कहते हैं, गोस्वामी जी मीराबाई की इस बात से इतने प्रभावित हुए कि स्वयं नंगे पांव बाहर तक आए और संत मीरा से मिले। मीरा वृंदावन की गलियों में, मंदिरों में नाचती गाती

0: फिर एक दिन वो वृंदावन छोड़ द्वारिकापुरी चली गई।
1: वहां उन्होंने रणछोड़ जी के मंदिर में डेरा जमाया। यहां वो अपने कान्हा की चाकरी करती।

0: अब तक बहुत ही प्रसिद्ध और जन जन की प्यारी बन चुकी थी।
1: उनकी ये लोकप्रियता उनके मायके मेड़ता और ससुराल मेवाड़ तक भी जा पहुंची। मीरा इस सब से अनजान कृष्ण की भक्ति में खोई रहती है।

0: बहुत सुंदर।
1: मीरा बाई के दर्शन करके मैं तो धन्य हो गया।
2: इतनी मधुर आवाज।
3: हाँ।
2: सुना है मेड़ता और मेवाड़ दोनों राज्यों से उन्हें बुलावा आया है।
3: क्या?
4: हाँ, पर वो गई नहीं।
1: अरे सुना तो ये भी है कि उन्हें वापस ले जाने के लिए
5: ब्राह्मण भी भेजे गए हैं।
2: तो क्या हमारी मीरा बाई चली जाएंगी?
4: पता नहीं, उनके बिना तो सब कितना सोना सोना लगेगा।
1: हाँ भैया, बहुत सोना हो
6: जाएगा।
7: कहते हैं कि ब्राह्मणों के हठपूर्वक धरना देने पर मीराबाई श्री रणछोड़ जी से आज्ञा लेने मंदिर के भीतर गईं और वहीं मूर्ति में आत्मसात हो गईं।
0: विश्वास जो मानता हो, तर्क जो कहता हो, लेकिन ये सच है कि मीराबाई सीधी सुगढ़ और सपाट भाषा में कविता रचने वाली अनोखी भक्त कवित्री थी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरे तो गिरधर गोपाल, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन।
1: ये कार्यक्रम बच्चों में गणितीय और संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें एक बच्ची के जन्मदिन की पार्टी में हुए मनोरंजक संवाद बच्चों में नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं।
2: तुम भी लोग खाओ मिठाई, ये लो तुम भी लो।
3: मैं तो अपने जन्मदिन पर केक काटता हूँ।
4: मैं भी
5: मैं तो अपने जन्मदिन पे समोसे खिलाता हूँ।
2: मैं तो मेरे घर पे तो जन्मदिन पे तो ढेर सारी मिठाई आती है।
6: हाँ, यहाँ पर रखी तो है कितनी सारी।
7: क्या हर साल इतनी मिठाई आती है?
2: हर साल जब मेरा जन्मदिन होता है तब मैं जितने किलोग्राम

0: करती हूँ, उससे उससे दुगनी मिठाई आती है हमारे घर पे।
1: इतनी ढेर सी मिठाई का क्या करते हो?
0: सबको बांटते हैं और सबको खिलाते हैं। पता है जब मेरा जन्म हुआ था मैं 3 किलोग्राम की थी।
1: अच्छा, फिर तो तुम्हारे घर में 6 किलोग्राम मिठाई आई होगी।
2: हाँ, ये बात तो ठीक है,
1: हो गई दुगनी। अब तुम कितने किलोग्राम की हो कुंजम्मा?
0: अब मैं 30 किलोग्राम की हूँ।
1: तो अब तुम्हारे घर में क्या 60 किलो मिठाई रखी है?
0: हाँ, 60 किलोग्राम है।
3: अगर तुम 30 किलोग्राम और 50 ग्राम की होती तो?
0: अरे बस, किलोग्राम जितनी मिठाई लाते हैं। वैसे तो मैं अब भी 30 किलोग्राम और 500 ग्राम की हूँ।
4: इस हिसाब से तो तुम्हारे घर में 61 किलोग्राम मिठाई आनी चाहिए।
1: हाँ हाँ, 61 किलोग्राम।
2: अगर ऐसे तो हाथी की मम्मी भी ऐसी मिठाइयाँ बांटती तो।
0: पता है, हाथी का बच्चा 300 किलोग्राम का होता है।
5: 300 किलोग्राम?
1: तो उसकी मम्मी क्या 600 किलोग्राम मिठाई लाती है?
2: और चीटी की मम्मी, उसका भार तो 1 मिलीग्राम होगा।
3: 2 मिलीग्राम की मिठाई कौन बनाएगा?
0: और अगर डायनासोर को मिठाई बांटनी होती तो? तुम छोटे डायनासोर की बात, हम तो मिठाई खाते हैं।
3: हाँ, कहिए 60 किलोग्राम मिठाई खत्म ना हो जाए।
6: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम कुंजम्मा का जन्मदिन, और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, जगबंधु और कुसुमलता के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
9: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: इस समय आप हैं हमारे साथ।
1: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
2: आकाशवाणी इंदौर से आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। आज कलाकार हैं जगजीत सिंह।

आप सुन रहे थे कुंवर मोहेंद्र सिंह बेदी का कलाम जगजीत सिंह की आवाज़ में, संगीत दीपक पंडित का था।

आप सुन रहे थे कुंवर महेंद्र सिंह बेदी का कलाम जगजीत सिंह की आवाज़ में, संगीत दीपक पंडित का था। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। आज कलाकार हैं नीता रॉय और साथी।

लोक संगीत का प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी इंदौर से किया जा रहा है और आज कलाकार हैं नीता रॉय और साथी। आप सुन रहे हैं बुंदेली लोकगीत।

0: लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज कलाकार थे नीता रॉय और साथी। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र 7 बजने को अब समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
2: भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी की छटा बिखरी हुई है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर अभिभूत हो रहे हैं। यहाँ के प्रमुख मंदिर मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि द्वारिकाधीश मंदिर, वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बिहारी जी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जबरदस्त तैयारियां हैं, जहां रात में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। केरल में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। विशेष मंदिर अनुष्ठान, भव्य शोभा यात्राएं और प्रसिद्ध अरनमूला वल्ला सद्येक इस पर्व का हिस्सा हैं। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि ये मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज भारत और फ्रांस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। इस दौरान

0: मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान, एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल पर चर्चा हुई। डॉक्टर सिंह ने फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष कार्य मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय बैठक की। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय परिसर में परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधा और केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला में उन्नत उपकरण सुविधा का उद्घाटन किया। इस सुविधा से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और संबंधित क्षेत्रों में विश्वविद्यालय की विश्लेषण और अनुसंधान क्षमताएं बढ़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी सभा को संबोधित भी करेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने कड़े क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की जोड़ी को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे खेती गृहस्थी। इसमें सुनिए जयंत वर्मा की वार्ता, बदलते कृषि तकनीक ज्ञान उपलब्ध कराने में ड्रोन की भूमिका। इसके अलावा लोकगीत और आज की बात में आप सुनेंगे जानकारी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। रात्रि 8 बजे सुर्खियों में हम भोपाल केंद्र से रैली करेंगे और 8:15 पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम होगा दिल ने फिर याद किया। रात्रि 9:15 पर सुनिए चित्रगीत और 9:30 पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का प्रोग्राम होगा मन भावन। रात्रि 10:30 शास्त्रीय संगीत में सुनिए उस्ताद अमीर खान का गायन राग है जय जयवंती।

हमारे कल सुबह की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, 6:35 पर खेती की बातें में सुनिए धनेला रोग वाचक स्वर भारती उपाध्याय का, और 6:40 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान। 7:20 पर हम लेकर आएंगे सदाबहार फिल्मी गीतों का प्रोग्राम सुनहरे पल। 8:30 सुनिए फिल्म संगीत और 9:00 लोक संगीत का प्रोग्राम होगा। कलाकार हैं प्रभुलाल मालवीय और साथ ही 9:15 पर सुनिए सुगम संगीत। कलाकार हैं लता मंगेशकर। 9:30 शास्त्रीय संगीत में सुनिए पंडित जितेंद्र अभिषेकी का गायन राग है तोड़ी। 10:00 होगी जिले की चिट्ठी और

आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। शाम के 7:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश को पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर में नई पावर ट्रांसफार्मर यूनिट का किया लोकार्पण, बोले यह देश के इलेक्ट्रिकल इकोसिस्टम को ट्रांसफार्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रदेश में भक्तिभाव और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व और भोपाल, इंदौर, विदिशा, सतना, पन्ना, श्योपुर सहित कई जिलों में तेज बारिश, नदी नाले उफान पर। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के माध्यम से देश के पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की इस उपलब्धि पर कहा कि यह राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि यह सफलता भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि यह मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा।
3: I am very happy to announce that GSLV.
4: मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि GSLV-F17 वाहन ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 को सफलतापूर्वक और सटीक रूप से उसकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है। हमने इस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग करके एक बार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 5 के चालू हो जाने के बाद यह भू कक्षा से भारत का पहला समर्पित इमेजिंग उपग्रह बन जाएगा, जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक डेटा प्रदान करेगा।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सीहोर में क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड की नई पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण इकाई के प्रथम ट्रांसफार्मर को रोल आउट कर शुभारंभ किया। करीब 50 एकड़ में स्थापित यह इकाई एक ही स्थान पर स्थित भारत की सबसे बड़ी पावर ट्रांसफार्मर विनिर्माण इकाई है। डॉक्टर यादव ने यहां कहा कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को लगातार नई गति मिल रही है। प्रदेश में नई इंडस्ट्रीज की शुरुआत से उत्पादन बढ़ता है, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनते हैं और राज्य की इकोनॉमी के साथ देश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती है।
5: सीहोर श्योर है, निवेश में सिक्योर है और रिटर्न एश्योर है। सच में देश के इलेक्ट्रिकल इकोसिस्टम को ट्रांसफार्म करने में ये पावर ट्रांसफार्मर यूनिट अपनी बड़ी भूमिका अदा करेगी। हमारे पास इस मध्य प्रदेश की ग्रोथ के 5 दोस्त हैं: पैशन, पोटेंशियल, पॉलिसी, परफॉर्मेंस और प्रोडक्शन। इतनी बड़ी फैक्ट्री का, जो कहा गया देश ने दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसफार्मर बनाने की फैक्ट्री है, अब यहाँ की जो क्षमता भी बताई तो एक साल में 365 आप बनाएंगे। जब आज आप बड़े पैमाने पर ट्रांसफार्मर की फैसिलिटी देंगे, वाकई ये अद्भुत है और 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अगस्त 2025 में इस संयंत्र का भूमि पूजन किया था और अब करीब 13 से 14 महीने में यहां उत्पादन प्रारंभ हो गया है। यहां 220 केवी से लेकर 1200 केवी श्रेणी के पावर ट्रांसफार्मर बनाए जाएंगे। इकाई की उत्पादन क्षमता हर माह 35 पावर ट्रांसफार्मर तैयार करने की होगी। संस्कृति विभाग अंतर्गत श्री कृष्ण पाथे न्यास द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुक्रवार को राजधानी भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमादित्य वैदिक घड़ी 2.0 के वॉल वर्जन का लोकार्पण किया। इसमें लगभग 21 लाख वर्ष पूर्व तक की पंचांगीय गणनाओं का अध्ययन करने तथा आगामी लगभग 5 लाख वर्षों तक की कालगणना देखने की सुविधा विकसित की गई है। पिछले दिनों काशी विश्वनाथ मंदिर में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के अवलोकन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और अधिक परिष्कृत करने तथा प्राचीन काल की गणनाओं को इसमें समाहित करने का सुझाव दिया गया था। इस घड़ी में त्रेता युग, द्वापर युग से लेकर वर्तमान काल तक के विशाल कालखंड को भारतीय कालगणना के संदर्भ में समझने का प्रयास किया गया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
2: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आज भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर श्री कृष्ण पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाल कृष्ण एवं राधा रानी के स्वरूप में पधारे नन्हे मुन्ने बच्चों को माखन खिलाकर उनका स्नेह पूर्वक स्वागत किया। साथ ही कलाकारों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां देखी। डॉक्टर यादव ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई देते हुए कहा, अब मध्य प्रदेश के प्रमुख देवस्थल धार्मिक पर्यटन के केंद्र बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के पावन चरण पड़े उन स्थलों को मध्य प्रदेश सरकार श्री कृष्ण पाथेय के रूप में विकसित कर रही है। साथ ही भगवान श्री राम से जुड़े पावन स्थलों को श्री राम वनगमन पथ के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण पाथेय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के जीवन संदेशों को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा, जिससे हमारी नई पीढ़ी अपनी गौरवशाली विरासत से परिचित हो और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। प्रदेश के सभी जिलों में भी जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों को राधा कृष्ण के रूप में सजाकर जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। उधर उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भगवान बांधवाधीश का राम जानकी मंदिर खोला गया, जहां 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। नीमच में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आगरमालवा स्थित मुरली मनोहर मंदिर में आयोजित किए गए श्री कृष्ण पर्व के अंतर्गत विशेष सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा भक्ति गायन और श्री कृष्ण केंद्रित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी जा रही है। भोपाल, शिवपुरी, पन्ना, नर्मदापुरम, शहडोल, रायसेन, झाबुआ सहित सभी जिलों से जन्माष्टमी पर्व मनाए जाने के समाचार मिले हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा

शिक्षक दिवस के अवसर पर कल राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह समारोह राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकी अकादमी भोपाल में होगा। समारोह में प्रदेश भर से चयनित 33 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय पुरस्कार 2026 के लिए चयनित शिक्षकों को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और 25,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान कर अलंकृत किया जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में बारिश का दौर फिर तेज हो गया है। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जबकि मंडला में नर्मदा का जलस्तर बढ़ने से नदी उफान पर है। छतरपुर, सतना, मंडला और मेहर समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। छतरपुर के कुटनी और जबलपुर के बरगी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है। भोपाल, इंदौर में भी आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है। उधर शिवपुरी में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के बाद आज सिंध नदी में पानी का बहाव बढ़ने के बाद इस नदी पर बने मणिखेड़ा डैम के 4 गेट खोल दिए गए। सीहोर जिले में आज सुबह से हो रही लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और जल स्रोत भर गए हैं। शहडोल जिले में आज बारिश से थोड़ी राहत मिली, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं। छोटे बड़े सभी जलाशय और बांध लबालब भर चुके हैं। इस सीजन में पहली बार बाणसागर बांध 100% भर गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला जिले की 12 वर्षीय छात्रा पीहू परस्ते प्रदेश के चुनिंदा प्रतिभावान बच्चों में शामिल किया गया है। 26 अगस्त को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का अवसर मिला। नर्मदापुरम जिले की मंडी प्रांगण पिपरिया में आयोजित मुख्यमंत्री जन विश्वास शिविर में आयुष विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें 320 से अधिक नागरिकों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। जबलपुर में नर्मदा तट ग्वारी घाट में आज नर्मदा नदी में पेट्रोलिंग के दौरान होमगार्ड जवानों से भरी मोटर बोट अचानक डूब गई। हादसे में सभी जवान सुरक्षित बाहर निकल आए और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। शिवपुरी, मुरैना जिलों की शासकीय आईटीआई में प्रवेश के लिए पहले आओ पहले पाओ राउंड कल से 7 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। और पांडुर्णा में सदियों पुराने प्रसिद्ध गोटमार मेले की तैयारियां शुरू हो गई है। यह मेला इस साल 11 सितंबर को जाम नदी के किनारे लगेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मिनट रुको तो। हेलो, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, आइए सुनते हैं खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुन्न वाला सबै किसान भाई बहनख अनुराधा की राम राम। भाई बहनों ने आज छे भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि न आज को शुभ दिन कृष्ण जन्माष्टमी को दिन कृष्ण को आविर्भाव को दिवस पृथ्वी पर उनको अवतरण को दिवस न असो दिवस जका की अब खाली अपनो देश नहीं पूरो विश्व मनाई लो क्योंकि कृष्ण को जी व्यक्तित्व छे वो असो छे कि इतो जादुई न इतो आकर्षक कि उनकी सुरीली मुरली

0: ना आपका जीव को फल होएगा ओके चिंता छोड़ी देओ, ना खाली अपना कर्म का विशेष रूप से ध्यान राखी न करो कि कोई को नुकसान नहीं होए। ना कृष्ण ये नहीं कहता है कि भाई अपना जी कर्म छे वो व्यक्तिगत लाभ का लेना होना चाहिए, ओका समाज का फायदा होए, दूसरा लोग न खो फायदो है, ये सब चिंता की बात उनका रखना पड़ा। ऐसा अलग अलग एक चरित्र में अलग अलग रूप देखी राज आज इना कृष्ण का अपन न जगह जगह आज आयोजन हुई राज कृष्ण जन्म का, कहीं छे लोक नृत्य हुई राज, कहीं मटकी फोड़ को आयोजन छे, कहीं अलग अलग बच्चा छोटा छोटा तैयार हुए हुए न कृष्ण राधा का रूप धरेल छे। तो सब अपना अपना अलग अलग जितना व्यक्तित्व छे कृष्ण का उतना तरीका की उनकी भक्ति छे, हर व्यक्ति उनका अलग अलग रूप में पूजी राज, कोई अलग भाव विभोर हुई राज उनकी भक्ति में, उनकी लीला न का ध्यान में राखी राज, कोई उनकी बाल रूप का पूजी राज, कोई उनका जी वयस्क रूप में उनका उन जी काम करे आज उनका लोग याद करी राज। तो एक असो सब कृष्ण की जन्म से लई न आखिरी तक जिन अलग अलग रूप धरिया न उनका हर रूप की अलग अलग रूप में पूजा हो। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी को दिन एक असोज विशेष दिन छे, अपन अपना कार्यक्रम में भी आज कृष्ण जन्माष्टमी का कुछ गीत सुनांगा, खेती की बात न भी करांगा, पर ओका पहला सुनांगा ये संदेश।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी, मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
4: mmsky.mp.gov.in पर जाएं, सीखो कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
5: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
6: मास्टर जी ये किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
5: मैं फसल की नहीं एनपीएस पेंशन की बात कर रहा हूँ।
6: एनपीएस पेंशन?
5: हाँ, आज ही एनपीएस में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना बुढ़ापा सुरक्षित करो।
6: बुढ़ापा सुरक्षित?
5: हाँ भाई, एनपीएस भारत सरकार के पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है जिसमें आज से पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से। बुढ़ापे में पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है।
0: एक लोकगीत प्रीति भार्गव को गायल।

0: लईके चले वसुदेव कन्हैया जी के लईके चले। अभी अपूर्ण प्रीति भार्गव को गायल ये कृष्ण जन्माष्टमी को गीत सुनियो ना। देखो अभी अपन कृषि की बात करा, अपनी खेती बाड़ी की बात करा, तो हम इना समय तकनीक में बहुत बदलाव आई गोज न। हमारा किसान भाई बहन भी हम तकनीक का साथ खेती करी रहा है, पहला उसका बारे में जानकारी ले लेज न, फिर ही उनको निर्णय करे। तो एक ड्रोन भी एक जी तकनीक न आई रही, ओका में ड्रोन को भी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि छे न। ओका ज्ञान का आधार पर हमारा किसान भाई बहन ओके अपनी भूमिका तय करे। तो आज अपन बदलता कृषि तकनीक में ज्ञान उपलब्ध कराना में ड्रोन की काई भूमिका छे, एक बारा में एक वार्ता सुना जयंत वर्मा की।
1: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि ड्रोन का उपयोग खेती में किस प्रकार किया जाता है। आज के आधुनिक युग में कृषि क्षेत्र में भी ड्रोन तकनीक का उपयोग बहुत तेजी से हो रहा है। ड्रोन तक

तकनीक ने इंसानों के लिए खेती को हर तरह से अधिक प्रभावी, स्मार्ट और लाभकारी बना दिया है। ड्रोन तकनीक का महत्व कृषि अनुसंधान का इतिहास साक्षी है कि जब जब नई तकनीक विकसित हुई है और उसे किसान भाइयों ने अपनाया, तब कृषि उत्पादन एवं गुणवत्ता में क्रांतिकारी सुधार हुए। यह सतत विकास का एक अंग है। इसी कड़ी में ड्रोन तकनीकी कृषि के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करने जा रही है। भारत सरकार ने इसे अपनी नीतियों में प्राथमिकता पर रखते हुए इस तकनीक के कृषि में उपयोग हेतु क्रांतिकारी नीति की घोषणा की है। इसके साथ ही केंद्रीय एवं कल्याण मंत्रालय ने कृषि के क्षेत्र में ड्रोन के चालन के मानक जारी कर दिए हैं। इससे कृषि के क्षेत्र में न केवल ड्रोन उन विभिन्न तकनीकी विकसित करने हेतु अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा, अपितु कृषि में इसके व्यावसायिक उपयोग को भारी प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार विभिन्न फसलों, फसल चक्रों और अन्य कृषि कार्यों के लिए तेजी से तकनीकी विकास जरूरी है। ड्रोन तकनीक का उपयोग बढ़ने से तकनीकी रूप से प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं के रोजगार सृजन का भी अच्छा खासा संभावना है। भारत में कृषि का एक समृद्ध इतिहास है और आज तक इसकी ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। ड्रोन या मानव रहित वाहन UAV में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की संभावना है। फसल की गुणवत्ता बढ़ाने और कुल खर्च करने को कम करने की क्षमता है। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के उपयोग का भविष्य वास्तव में उज्जवल है। भारत में ड्रोन उपयोग के सामान्य नियम और विनियम की बात करें तो चालक की आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और ड्रोन का उपयोग करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ड्रोन का संवेदनशील क्षेत्रों जैसे हवाई अड्डों या उन क्षेत्रों में नहीं उड़ा सकते हैं जहां विमान यातायात की उम्मीद है। साथ ही सैन्य क्षेत्र, सरकारी कार्यालयों और सरकारी अधिकारियों के निवास क्षेत्र हैं। सभी ड्रोन के पास एक लाइसेंस प्लेट होना चाहिए जो मालिक, ऑपरेटर और उनके संपर्क विवरण के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान कर सके। एक बार में एक से अधिक UAV नहीं उड़ा सकते। सभी ड्रोन को देयता बीमा की आवश्यकता होती है। कृषि ड्रोन सभी किसानों के लिए, विशेष रूप से छोटे और मध्यम स्तर के किसानों के लिए उत्कृष्ट समर्थन बन सकते हैं। जिनके पास महंगे उपकरण, मशीन, वाहन या श्रम का खर्च उठाने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन नहीं है, ड्रोन की मदद से आप विभिन्न कृषि प्रक्रियाओं पर खर्च होने वाले समय की बचत करते हुए अपनी कृषि लागत में कटौती कर सकते हैं। कृषि ड्रोन का उपयोग पर विचार की आवश्यकताएं एवं संभावनाएं अगर हम देखें तो दुनिया तेजी से बदल रही है और इसके आसपास बहुत कुछ हो रहा है। ऐसे समय में अनुकूलन सभी के लिए महत्वपूर्ण है और किसानों के लिए भी। इसका अलावा लगातार और अक्सर प्रत्याशित जलवायु परिवर्तन को देखते हुए किसानों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए अगली पीढ़ी के प्रौद्योगिकी समाधान की आवश्यकता है। ड्रोन उस समाधान के रूप में सामने आए हैं जो स्मार्ट खेती को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण घटक हो सकता है, जिससे किसानों को फसल की गुणवत्ता में सुधार करने, उपज बढ़ाने, नुकसान को रोकने, लागत में कटौती करने और अन्य महत्वपूर्ण लाभों की एक श्रृंखला प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को अपार संभावनाएं हैं। ड्रोन का कृषि रसायनों जैसे कि खरपतवार नाशी, कीटनाशी, रोगनाशी और पोषक तत्वों के छिड़काव में आसानी से उपयोग किया जा सकता है। इससे श्रमिकों व कृषकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव से उन्हें बचाया जा सकेगा। साथ ही कठिन परिस्थिति जैसे बरसात के तुरंत बाद पानी से भरे धान के खेतों में, मई जून में गन्ने की फसल में या फलदार वृक्षों पर इस तकनीक से कृषि रसायनों या पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है। इस तकनीक से कृषि क्षेत्र की श्रमिकों की कमी की समस्या को भी कुछ हद तक सुलझाया जा सकता है। इसी तरह से फसलों की उपज के पूर्णानुमान के लिए भी इस तकनीक का उपयोग बहुत लाभदायक

0: ही सिद्ध होगा। इस तकनीक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग के साथ समागम कर अनेकों रोजमर्रा की खेती की समस्याओं का निदान मिल सकता है। फसल की निगरानी के लिए, फसलों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए, जितनी जल्दी बैक्टीरिया जनित बीमारी को देखते हैं उन्हें बचाना उतना ही आसान होता है। कृषि ड्रोन का उपयोग करके अपनी फसलों की निगरानी कर सकते हैं, जो विभिन्न मात्रा में हरी रोशनी और निकट अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी NIRS प्रकाश को प्रतिबिंबित करने वाले पौधों का पता लगा सकते हैं। नुकसान का पता लगाने के लिए इनबिल्ट मल्टीस्पेक्ट्रल और RGB सेंसर वाले कृषि ड्रोन खेतों, फसलों की निगरानी, खरपतवार, कीट और संक्रमण का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। इन जानकारियों के लिए साथ संक्रमणों को ठीक करने या उनका इलाज करने के लिए आवश्यक रसायनों की मात्रा और प्रकार को निर्धारण कर सकते हैं, जिससे लागत की बचत हो सकती है। कृषि छिड़काव के लिए फसलों पर कृषि ड्रोन से प्रभावी ढंग से फसल छिड़काव कर सकते हैं। यह न केवल तेजी से स्प्रे में मदद करेगा, बल्कि उन रसायनों से भी दूर रखेगा जो आपकी त्वचा, फेफड़ों या समग्र स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यहाँ तक कि पेशेवरों का कहना है कि एक ड्रोन अन्य पारंपरिक तरीकों की तुलना में हवाई छिड़काव को 5 गुना तक तेज कर सकते हैं। पशुधन निगरानी के लिए किसान पशुधन प्रबंधन से जुड़ी परेशानियों से अवगत हैं। पशुओं पर नज़र रखने के लिए एक विशेष ड्रोन पशुओं की देखभाल को काफ़ी आसान बना सकता है।
1: अभी अपन ने वार्ता सुनी बदलता कृषि तकनीक ज्ञान उपलब्ध कराना में ड्रोन की भूमिका। वार्ताकार था जयंत वर्मा। अपन उनका इतनी अच्छी जानकारी का लेना धन्यवाद देवांज। उनने बहुत अलग अलग तरीका से ही बताया हो कि भाई ड्रोन का कितना उपयोग छे, यहाँ तक कि खेती में जी छे यदि बीमारी न को प्रकोप हुई रोज या कीट न को प्रकोप हुई रोज नौका कारण रसायन न को छिड़काव करनू तो ओका में का ही फायदो हुई सकज, पशुपालन में किना तरीका से निगरानी में सहायक हुई सकज। तो ये सब जानकारी ने खले कारण अपन उनका धन्यवाद देवान। अब कार्यक्रम में सुनागा एक लोकगीत अरु कृष्ण को, मथुरा 3 लोक सिन्यारी।

0: मथुरा तीन लोक से न्यारी जामे जन्मे कृष्ण मुरारी। अभी अपन सुनी रहा था नीता राय को गाय ई लोकगीत। भाई बहनों इना समय अपना जी सोयाबीन की स्थिति है वो काम कीट न रोग न को प्रबंधन करनु सबसे आवश्यक है, क्योंकि इना समय यदि उनका नियंत्रण हुई गो तो अपन का पैदावार में उपज में बहुत फायदा हो सके। ना थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहे कि शुरुआत में जो रोकी ली परेशानी न खा तो ज़्यादा बढ़ती नहीं है। तो आज अपन एक भेंटवार्ता ऐसी सुनी रहा है सोयाबीन में कीट न रोग प्रबंधन का बारे में जानकारी दे रहा है डॉक्टर भंवरलाल जी की सहायक प्राध्यापक छे कीट विज्ञान विभाग कृषि महाविद्यालय सीहोर में।
1: किसान भाई बहना सोयाबीन हमारी मुख्य नकदी फसल है, पर इना मौसम में फसल ना के कीट और रोग ना से बचानो सबसे बड़ी चुनौती रही और इना विषय पर हमारे विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारा साथ मौजूद है सीहोर कृषि महाविद्यालय से कीट विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर भरत लाल। तो डॉक्टर साहब कार्यक्रम में तुम्हारो बहुत बहुत स्वागत है। राम राम।
2: राम राम।
1: फसल जब शुरुआती दिन में रही तो किन प्रमुख कीटना को हमलो हो और हमारा जो किसान भाई बिरना है वे उनकी पहचान कैसे कर सकता है?
2: राम राम किसान भाइयों, जैसे कि अभी आपको बताया गया कि शुरुआती मौसम में किसानों को कैसे सोयाबीन के कीटों को पहचाना जा सके और कौन कौन से कीट इस मौसम में आते हैं।
1: हाँ, क्योंकि सबसे पहले तो जानकारी जरूरी होना चाहिए कि भाई किना प्रकार का कीटना को हमलो हो।
2: जैसे सोयाबीन की अपन सोइंग करते हैं तो 8 से 10 दिन में नर्सरी स्टेज पे रहती है उस टाइम पे सोयाबीन की फसल, तो उस समय सबसे ज्यादा अपना एक आता है चक्रब्रिंग और तना मक्की। ये दो प्रमुख कीट हैं जो शुरुआती अवस्था में सोयाबीन को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। जैसे तना मक्की की बात करें तो ये एक सप्ताह के लिए सबसे ज्यादा सोयाबीन की क्रॉप पे अटैक होता है, जब सोयाबीन 2 से 4 पत्ती का होता है। ऐसे ही सामान रहता है इसका चक्रब्रिंग, जिसे किसान रिंग कटर के नाम से जानते हैं। तो इसकी भी शुरुआती अवस्था में यही है कि इसमें रिंग नहीं बनाता, उस टाइम पे अपना क्या एग लेइंग करके प्लांट में अपनी अवस्था को बढ़ाने के लिए उसमें प्रेजेंट रहते हैं, जिससे उनको आगे अपनी लाइफ साइकिल जीवन चक्र को बढ़ा सके और फसल को ज्यादा से ज्यादा

0: उस अवस्था में आती है तो हानि पहुंचा सकते हैं। तो दो प्रमुख कीट हैं जो इस अवस्था में सबसे ज्यादा आते हैं।
1: तो यह बिल्कुल तुमने सही बात की कि पहचान बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, इन जो शुरुआती कीटनाशक बचाव का लिए हमारा जो किसान भाई बहना है उनका बुआई का समय, अब वैसे तो बुआई का समय निकली गयो पर फिर भी आगे इन बात को ध्यान रखना का लिए और उनका तुरंत बाद कई उपाय करना चाहिए।
0: जी हाँ, जैसे ये शुरुआती कीट रहते हैं इनका तो अभी समय निकल चुका है। इनके लिए ज्यादातर अपन सीड ट्रीटमेंट करते हैं जिसके लिए बाजार में उपलब्ध अच्छी कंपनी के जो किसान भाइयों को इनसे कीटनाशक लेना चाहिए और उनसे सीड ट्रीटमेंट करके फसल को कम से कम एक महीने के लिए कीटों की क्षति से रोका जा सकता है। लेकिन इस अवस्था में जो अभी इस अवस्था बन रही है, जैसे कि पानी की बारिश हल्की हल्की हो रही है, धूप निकल आती है बीच में, तो इस अवस्था में सबसे ज्यादा जो कीटों का प्रकोप है वो अपना है रिंग कटर तना मक्की और हरी इल्ली चना की इल्ली, इन सभी का सबसे ज्यादा क्रॉप पर प्रकोप देखा जा रहा है।
1: और
0: इसकी पहचान के लिए जो पहचानी लक्षण है जैसे रिंग कटर के, किसान भाई रिंग कटर के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है जैसे शुरुआती में अपनी क्या करती है पत्तियों की टहनियों पे रिंग बनाती है, दो रिंग बनाती है उनमें, तो वो पत्ती वहां से बिल्कुल सूख जाती है तो किसानों को बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं कि जो पत्ती सूख रही है जिसमें दो रिंग बने हैं तो वहां से पत्ती पूरी सूख जाती है। लेकिन इस अवस्था में जब अभी फ्लावर अवस्था में फूल अवस्था में क्रॉप छोटी छोटी फली बनने की अवस्था में, इसमें जो तना रिंग कटर वो क्या करता है अब ये करेगा मुख तने पे क्षति पहुंचाता है, जिससे मुख तने पे जो रिंग तो रिंग बनाता है और वहां से पूरा ऊपर का जो पार्ट होता है रिंग बनी होती है उससे ऊपर का जो भी पार्ट होता है पूरी तरह से सूख जाता है। तो ये थे अपने रिंग कटर की पहचान। ऐसी रहती तना मक्की की पहचान। तना मक्की क्या है कि ये पत्ती की तीन पत्तियों की रहती है, सोयाबीन की एक पत्ती, तो तीन पत्तियों में जो बीच वाली पत्ती होती है मेन पत्ती वहां पे एगलिंग करती, तो ये क्या है वहां से जैसे ये इसकी इल्ली निकलती और वो पत्ती की सिरा से पूरे प्लांट में धीमे धीमे खाते हुए ऊपर से नीचे की ओर आती है, जिससे जो तना को पोषण मिलना था वो मिलना बंद हो जाता है क्योंकि ये बीच की जो सिरा होती है उसके अब जो फ्लोएम जाइलम मटेरियल रहता है न्यूट्रिशन पहुंचते हैं वहां से ये उसको आसानी से खा जाती है, जिससे उस प्लांट को पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, तो इसमें क्या होता है प्लांट धीमे धीमे पीला पड़ने लगता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: पीला पड़ने से उनकी ये हो जाती है। जैसे अपन बात करें कि इस समय सबसे ज्यादा इल्ली का अटैक हो रहा है, किसान भाई इल्ली के नाम से जानते हैं अलग अलग टाइप की इल्ली है, इसमें सबसे ज्यादा चने की इल्ली और अपनी सोयाबीन की इल्ली जैसे सेमी लूपर के नाम से जानते हैं, इन चार कीटों का सबसे ज्यादा इस मौसम में, कैसा मौसम है अभी बारिश बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हो रही तुमका कह सकते हैं और धूप भी निकल आती है बीच में और मौसम बिल्कुल गर्म है, बारिश होने के बाद एकदम गर्मी लगने लगती है, तो ये कीटों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छा कह सकते अपन इन वातावरण कीट इस अवस्था में लगभग 10 गुना बढ़ते हैं। ऐसा वातावरण है इस टाइम पे कि हल्की बारिश मिलती है तो उनकी जो वृद्धि होती है इस वातावरण में बहुत 10 गुना तक बढ़ सकती है। फसल की सतत निगरानी, जैसे क्या है किसान भाई थोड़ा आलस कर जाते हैं कि बारिश हो रही है अब खेत पे कौन जाए देखने के लिए, तो सतत निगरानी में इसको रखना चाहिए कि आप खेत पे बारिश होने के बाद भी फील्ड पे डेली जाते रहें। जाने से क्या होगा आपको उसकी स्थिति का पता पड़ जाएगा और आप बिल्कुल उस स्थिति को क्लियर हो जाएगा कि बारिश में किसान भाई क्या हाल करते हैं थोड़ा फील्ड पे जाने से तो उनको क्या लगता है, तो ये ऐसी अवस्था है क्रॉप फसल की कि इसमें आप 2 या 3 दिन नहीं गए खेत पर तो एकदम इल्ली आपको पूरे खेत में दिखाई देगी,
1: तो सतत निगरानी बहुत जरूरी है।
0: हाँ बहुत जरूरी इस मौसम में, जैसे अभी क्या है दिन में 4-5 बार बारिश होती है धूप निकल आती है गर्मी पड़ रही है एकदम,
1: हाँ, और कई क्षेत्र तो अभी जो वर्तमान अवस्था है तो बारिश बहुत जगह हुई भी नहीं रही है फिलहाल, तो एकदम 2-3 दिन बिल्कुल ऐसा जी रहे कि 2-3 दिन बारिश नहीं हुई, फिर एक दिन बारिश हल्की फुल्की हुई फिर नहीं हुई, तो ऐसे मौसम बने हुई है। और डॉक्टर साहब, हाँ सोयाबीन में पीला मोजेक जो है बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाए और इका फैलने का एक तो मुख्य कारण कही रही और किसान भाई बहना को नियंत्रण कैसे कर सकता है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि पीला मोजिक वायरस एक बहुत ही सोयाबीन के लिए संक्रमक रोग है क्योंकि सफेद मक्खी रस चूसती है जो पत्तियों का उससे फैलता है, जिससे पूरा पूरे के पूरा पैदावार में फैल जाता है।

0: धीमे धीमे ये रस चूसती है, तो उससे पूरे खेत में धीमे धीमे पूरी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, और पत्तियां पीली होने से आप समझते हैं सभी किसान भाई के पूरी पत्तियां जब पीली पड़ जाएंगी तो पौधे को क्या भोजन नहीं बना पाएगा, भोजन नहीं बना पाएगा तो आपकी क्या है उपज बहुत कम होती है। इसके नियंत्रण के लिए जैसे सकिंग पेस्ट जो रस चूसने वाले कीटों के लिए इंसेक्टिसाइड आते हैं, अपना एसीटामाइट्रेट रहता है, थायोमेथोक्सम रहता है, इनकी 125 से 150 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन इसका छिड़काव करेंगे, तो जितने भी सकिंग पेस्ट होंगे और भी आते हैं इसके साथ में, तो वो सभी जितने रस चूसने वाले कीट होते हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएंगे। इसके साथ ही अपन इनको जैसे सतत निगरानी करते हैं किसान भाई जो खेत पे, तो वो क्या करें पीले प्रपंच भी आते हैं कि अपन को देखना है खेत में, मॉनिटरिंग कह सकते हो उसको, कैसे ये आना स्टार्ट हुए या नहीं, तो पीले प्रपंच का भी यूज करते हैं, तो उस पर अपन देखते हैं कि ये आने लगे हैं सफेद मक्खी, तो इसके अपन उसको आसानी से पहचान सकते हैं और फिर अपन उनको स्प्रे जैसे इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं,
1: नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर साहब तुमने। पर आप जैसे जब फसल में फूल और फली ना आई रही हो, उना समय पर है, कौन सा कीट ना नुकसान पहुंचाए और उनको अपन प्रबंधन कैसे कर सकता है?
0: जैसे फूल अवस्था में सबसे ज्यादा अभी की अवस्था जो फसल की है सभी किसान भाइयों की फसल की, वो फूल अवस्था है, फूल अवस्था या प्रारंभिक फली अवस्था, इस समय सबसे ज्यादा अपनी चने की ली, जो फली फूल और जो पार्ट होता है ऊपर वाला फ्लावर पार्ट, पूरे फूल का पार्ट, उसको सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है। इन्हीं के साथ साथ अपने जो सेमी लूपर होते हैं किसान भाई जानते हैं उसको, लूप बना के चलता है, वो पत्तियों को खाता है, लेकिन चने की इल्ली अपना फूल जो पोर्ट्स बनते हैं छोटे छोटे प्रारंभिक अवस्था उन सबको खाती है। इन सब के प्रबंधन के लिए किसान भाइयों को एक विशेष ख्याल देना है, जैसे हमारे पूरे मालवा में एक अभी समस्या आ रही है कि इल्लियां क्या है मर नहीं रही, किसानों की सीधी भाषा रहती है कि इल्लियां मर नहीं रही और पत्तियों पे घूम रही है, तो किसान भाई क्या कर रहा है जो कीटनाशक है बहुत अच्छे वाले यूज कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है जो दैहिक कीटनाशक है, दैहिक यानी जो पहले पत्ती खाए वो पत्ती में जाएंगे अंदर प्लांट के अंदर धीमे धीमे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी उसके बाद वो जाते हैं, तो इसके इस टाइप के जो कीटनाशक के द्वारा जो कीट होते हैं वो क्या है 24 से 48 घंटे या 72 घंटे तक लगते हैं जब उसके बाद वो मरना स्टार्ट होते हैं।
1: अच्छा,
0: लेकिन सभी किसान भाइयों से एक अनुरोध है कि इस अवस्था में अगर आपकी पत्तियों पे पूरे खेत में पत्तियों पे इल्लियां घूम रही हैं या दिखाई दे रही हैं, तो इसके लिए आपको क्या संपर्क कीटनाशक जो जैसे अपन छिड़काव करते हैं तुरंत के तुरंत किसान भाई, और आप देखना चाहते हैं कि तुरंत के तुरंत इल्लियां मरने लगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा संपर्क कीटनाशक का उपयोग। संपर्क कीटनाशक में जैसे अपना पहले जो पुराने चलते थे वो भी अच्छे हैं, नए भी हैं कुछ, उनमें जैसे प्रोपोनोफास, क्विनोलफास, इन दोनों इंसेक्टिया और ट्राइजोफास, एक तो कैसे हैं कम्प्लीटली या टोटली मान पूर्ण रूप से कैसे हैं संपर्क कीटनाशक, जैसे इल्ली पे उसकी बूंद जाएगी छिड़काव के बाद तुरंत इल्लियां मर जाती हैं।
1: जैसे
0: सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसानों की यही है कि इल्लियां फील्ड में है लेकिन वो कैसे इंसेक्टिसाइड का यूज कर रहा है, बहुत अच्छे का कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो 24 या 72 घंटे में आपको रजिस्ट
1: समय लगा, मतलब अगर यो अपन उपयोग में लांगा तो तुरंत अपने को असर मालूम पड़ेगा। बरसात का मौसम में सोयाबीन में फफूंद जनित रोग भी बहुत आए, तो किना तरीका से फसल का नुकसान पहुंच ही सकता है?
0: इस समय सबसे ज्यादा जो फफूंद रोग है कि किसान भाइयों के खेतों में जो पानी भर जाता है, तो पानी सबसे बड़ी समस्या है किसान भाइयों के फफूंद नाशक रोग के लिए, तो इस समय किसान भाइयों के खेत में जो देखा जाता है जड़ सड़न रोग, कलर रोड के नाम से जानते हो, और फली झुलसा रोग रहते हैं, जिससे क्या प्लांट की कुछ जो फली रहती है वो काली सी होने लगती है, व्हाइट होने लगती है, ऐसे ही जो कलर रोट होते हैं उससे क्या जो जड़ होती है जो पानी के संपर्क में रहती है, जमीन खेत के संपर्क जमीन में रहती है, वो संपर्क में होने से क्या होती है वो काली पड़ जाती है, जिससे पूरा धीमे धीमे प्लांट फफूंदी के संपर्क में आ जाता है और वो धीमे धीमे उसको पूरा काला कर देता है।
1: तो इना रोग ना का जो लक्षण दिखना पर हमारा किसान भाई बहन तुरंत राहत के लिए कौन कौन सी दवाना का प्रयोग कर सकता है या छिड़काव कर सकता है, और उसकी सही मात्रा कहीं होनी चाहिए, यो बहुत जरूरी है।

0: बिल्कुल मैम, आपने सही कहा है कि जितने भी फफूंदी नाशक रोग होते हैं उनके लिए आजकल जो किसान भाइयों को मार्केट में अच्छी कंपनी का, एक तो सबसे किसान भाइयों की ये कि जहाँ सस्ता मिलता है वहां पहुंच जाते हैं लेने के लिए, तो अपन को सबसे अच्छा कंपनी का चुनाव करना चाहिए कि हमें इस कंपनी की फंजीसाइड लेना चाहिए। उसके लिए आप या तो जो किसान का अमला रहते अधिकार कृषि विभाग के अधिकारियों का अमला रहता है उनसे संपर्क करें, या अपने कृषि विज्ञान केंद्र है हर जगह उनसे संपर्क करें, या कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों से संपर्क करके ही दवा और कंपनी का नाम सुनिश्चित करके बाजार में जाकर दवा लेना चाहिए। तो इसके लिए जैसे टेनोकोनाजोल है, सल्फर, इसमें सल्फर प्लस रहती है, तो ये 300 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से अपन इसको पूरे छिड़काव कर सकते हैं, जिससे जितने भी फफूंदी नाशक रोग होते हैं उनको अपन आसानी से प्रबंध किया जा सकता है।
1: तो डॉक्टर भरत लाल, सहायक प्राध्यापक कीट विज्ञान विभाग आर.ए. कृषि महाविद्यालय सीहोर से आपने हमारा इतनी अच्छी जानकारी और दी और विस्तार से किनी मात्रा में हमारा दवाई ना को छिड़काव करना है और किना तरीका से हम इन कीट ना की पहचान कर सकता है, ताले तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी अपन अपना कार्यक्रम सुनी रहा था, ये भेंट वार्ता सोयाबीन में कीट ना रोग ना को प्रबंधन जानकारी दे रहा था कीट विज्ञान विभाग कृषि महाविद्यालय सीहोर का सहायक प्राध्यापक डॉक्टर भरत लाल ने इनका से बातचीत करी रही थी अपनी बहन ना। अमा देखो खेती गृहस्थी कार्यक्रम की बखत हुई रही पूरी। अनुराधा को देव आज्ञा, राम राम।
3: अभी खेती गृहस्थी सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र 8 बजने को है। सुर्खियों में हम भोपाल से लिए हैं,
4: लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।
5: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
6: प्रमोद काले जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
7: धन्यवाद
6: प्रमोद जी। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में आज एक और बड़ी सफलता हासिल की है और इसरो ने आज सुबह श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया है, जो कि बहुत ही खास क्षेत्र में हमारी मदद करेगा, जैसे कि कृषि और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में। आज हम इस बात करते हैं तो अंतरिक्ष क्षेत्र हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है, जिसमें भारत पूरी तरह से लगा हुआ है कि हम इसको एक बड़ा आकार देंगे, अंतरिक्ष व्यवस्था को बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचाएंगे और अंतरिक्ष क्षेत्र को लगातार विस्तारित करेंगे, जिसमें निजी क्षेत्र भी अपनी भागीदारी कर सकता है। इन सभी को आप किस तरह से देखते हैं आज के समय में?
7: बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये कि आज का जो छोड़ा गया वो सफल हो गया है। अभी उपग्रह जब उसकी कक्षा में जाके पहुंचेगा तब पता चलेगा किस तरीके से वो चल रहा है, मगर ये लॉन्च व्हीकल के लिए, GSLV लॉन्च व्हीकल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। अभी आगे जाकर देखना होगा कि हम किस तरीके से और भी आगे बढ़ सकते हैं। हमने इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के लिए स्टेट में एक रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर बनाया था, उसी तरह से सभी स्टेट्स में हर एक जगह पर जब जहां भी सहज हो ऐसी जगह पर एक स्पेस के लिए काम करने वाला इंडस्ट्री का क्लस्टर होना चाहिए, क्योंकि अभी भी जो हम देख रहे हैं कि स्पेस के लिए जो भी कुछ काम करते हैं ऐसी लगभग 450 से 480 तक की एक अंदर इंडस्ट्रीज है जो इसमें भाग ले रही है, उससे भी ज्यादा कर सकते हैं, और ये करने के लिए ऐसे क्लस्टर जो बन सके तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जहां भी कुछ स्पेस के लिए काम होता है तो उनके लिए इसका जो टेस्ट एंड इवेल्युएशन होता है उसके लिए सब पूर्ण साधन नहीं होते हैं, तो ऐसे क्लस्टर बनाए कि जहां कुछ गवर्नमेंट की मदद से, इंडस्ट्रीज की मदद से ऐसे क्षेत्र बन जाए कि जहां कोई भी जाकर अपनी जो भी कुछ सामग्री बनाई हो उसका टेस्टिंग कर सके।
6: प्रमोद जी, अगर भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को हम थोड़ा विस्तार से देखें, गहराई से देखें, तो हमें ये नजर आता है कि पिछले एक दशक में यानी कि 10-12 साल में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप की संख्या 1 से बढ़कर 450 के आसपास तक पहुंच गई है और

0: लगभग 9 अरब डॉलर कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो भी इतना पहुंच चुका है। तो ये जो तकनीकी क्षमता में बढ़ोतरी है तो हमें वैश्विक पैमाने पर कहीं आगे लेकर के जा रही है। तो ये सफलता आप भारत के नजरिए से किस तरह से आंकते हैं?
1: ये बहुत ही अच्छी चीज है कि जो स्टार्टअप से उन्होंने काम तो चालू किया है, मगर उनका जो काम है वो सफल होने के लिए मैंने अभी जैसे कहा कि ऐसे क्लस्टर्स बनाने चाहिए। आज हम सिर्फ एक जगह से श्रीहरिकोटा आइलैंड और सतीश धवन स्पेस सेंटर से उपग्रह छोड़ते हैं। दूसरा जो उपग्रह छोड़ने के लिए जो स्टेशन बना रहा है तमिलनाडु में वो भी अभी थोड़ी दिन के बाद चालू हो जाएगा। तो मुझे खाली है कि जो स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो वहां से हम लॉन्च कर सकते हैं। अगर आज देखें तो स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल की भी बहुत जरूरी है, और वो स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल की जो टेक्नोलॉजी इसरो ने डेवलप की थी वो इंडस्ट्री को ट्रांसफर हो गई है। इसी तरह से हमारे जो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उसकी भी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को दे दी गई है। अभी ये इस साल में ही विक्रम 1 जो स्काई रूट ये इंडस्ट्री ने बनाया था वो सफलतापूर्वक कक्षा में उसने जो सेटेलाइट छोड़े हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज है। और मुझे खतरी है कि ऐसे काम करने वाले जो और भी दो वो आगे जाकर इस तरीके का काम कर सकेगा, और इसरो जो भी कुछ कर रहा है उसके लिए ये सब लोगों की मदद होगी।
0: जी प्रमोद जी, सरकार ने निजी कंपनियों को अनुमति दी है और अंतरिक्ष क्षेत्र नियामक संस्था तथा अंतरिक्ष विभाग की जो कमर्शियल भूमिका है वो लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में सरकार ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है कि जिससे कि सभी को इस क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त हो, और ऐसे समय में जब लगातार हम इसमें निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं, लगभग मार्च 2026 तक $618 मिलियन का निवेश इसमें हुआ निजी क्षेत्र से, ये सफलता आपको कैसी लगती है?
1: ये बहुत ही अच्छी चीज है कि इतने सब लोगों ने और इतने से पैसे खर्च करके वो आगे जा रहे हैं। इसको सफल होने के लिए उन्होंने जो भी कुछ कार्य किया है इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत मदद की है, नई पॉलिसीज बनाई है, और ये पॉलिसी का जो उपयोग करके जो कुछ आगे करना होगा तो इसके लिए हमारे जो एजुकेशनल क्षेत्र है जो यूनिवर्सिटीज है वहां भी इस तरीके का काम और होना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर हमें ये सब काम करने के लिए लोगों की भी बहुत जरूरी पड़ेगी और इंजीनियरों और बाकी सब लोगों की।
0: प्रमोद जी, विदेशी उपग्रहों के प्रक्षेपण के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है। जनवरी 2026 तक ऐसे प्रक्षेपणों की संख्या लगभग 400 तक पहुंच चुकी है, और हमारे लिए अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा भी एक तरह से रहती है। तो ये जो हमारी कम लागत में अधिक प्रक्षेपण करने की संख्या है, हमारी तकनीक है, आधारभूत ढांचा है, ये हमारी क्षमताओं को किस तरह से प्रदर्शित करता है वैश्विक स्तर पर?
1: तो 2025 को मेरे ख्याल से दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। एक सबसे भारी, सबसे वजनदार ऐसा एक अमेरिकन उपग्रह हमने यहाँ से लॉन्च किया था LVM-3 का उपयोग करके, उसी तरह निसार जो सैटेलाइट है उसका भी लॉन्च किया है। मुझे खातरी है कि इस तरीके के काम हम जो अगर और भी कर सके तो बहुत अच्छा, और उसके लिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो कोऑपरेशन है उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। और
0: प्रमोद जी, चंद्रयान की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 1 से चंद्रमा पर पानी के अणुओं की खोज और चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान 4 में चंद्रमा से नमूने लाने की योजना भी बनाई गई है, ये जो भारत के बढ़ते हुए कदम हैं, ये आपको कहां तक पहुंचते हुए दिखाई देने कि भारत आने वाले कुछ वर्षों में कहां तक अपने कदम रखेगा, किस लक्ष्य तक हम पहुंचेंगे?
1: उम्मीद है कि ये जो चंद्रयान 4 का जो कार्य है वो बहुत ही सफलतापूर्वक हो जाएगा और चंद्रमा के जो ऊपर के जो नमूने है वो लेके आएंगे। इसी तरह हम आगे जाकर गगनयान भी जो प्रक्षेपण होगा जिसमें क्रू नहीं होगा मगर वो 2027 भी हो जाएगा, और उसके बाद जो गगनयान अच्छी तरह से चले तो उसके बाद जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो भी अच्छी तरह से काम कर सकेगा आगे जाकर। और ऐसा जो अंतरिक्ष स्टेशन जब हम बना सकेंगे तो उसके लिए ये सब प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, वो सबका सहभाग होना चाहिए।
0: गगनयान कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो इसका कुल परिव्यय बढ़ाकर 20,193 करोड़ रूपये किया गया है, और पहला मानव रहित परीक्षण अभियान 2026 की चौथी तिमाही और मानवयुक्त अभियान 2027 तक लक्षित है। तो ये हमारे लिए उड़ान के दो महत्वपूर्ण विषय हैं जो हमें ये दिखाते हैं कि तय समय सीमा में काम करना और सुरक्षा मानकों के साथ में काम करना। तो सरकार की इस व्यापकता यानी कि सरकार की ये जो उपलब्धियां हैं, सरकार जिस तरह से इस दिशा में काम कर रही है, तो गगनयान अभियान हमें कहाँ तक पहुंचाएगा, क्या सफलता हमारे लिए इसकी मायने रखती है?
1: एक गगनयान जो ऐसा है कि कोई भी आज बच्चे के साथ बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उसको एस्ट्रोनॉट बनना है। क्यों बनना है? तो उसको देखना है कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। सिर्फ इतना नहीं, मगर ये जो काम हम कर सके तो आगे जाकर इसका उपयोग हम मेडिसिन के लिए, वहां कुछ सामग्री बनाने के लिए भी कर सकते हैं।

0: कि जैसे भी जीरो ग्रेविटी में जाकर किस तरीके से हम कोई भी मटेरियल डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है कि गगनयान जैसा प्रयोग हम करें और आगे जाकर जितने बच्चे हैं उनके सबके जो सपने होंगे वो हम पूरे कर सकेंगे।
1: स्पेडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो स्पेडेक्स के माध्यम से भारत ने अंतरिक्ष में स्वचालित डॉकिंग की अनडॉकिंग की क्षमता प्रदर्शित की है, जो चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या भारत अब अंतरिक्ष में उपग्रहों की मरम्मत, ईंधन भरने, नमूने स्थानांतरित करने और अंतरिक्ष यात्रियों के स्थानांतरण जैसी जटिल गतिविधियों की तकनीक विकसित करने की स्थिति में है? इन तकनीकों को भविष्य में भारत के द्वारा दूसरे देशों को उपलब्ध कराया जा सकता है?
0: कर सकते हैं, मगर इसके लिए ऐसी प्रणाली होनी चाहिए कि जैसे कि आज हमारा एक उपग्रह है ऊपर, उसको जाके मिलकर उसमें ईंधन भरना है, तो ये दोनों के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए जो एक प्रोटोकॉल होता है उसी प्रोटोकॉल से हम आगे जा सकते हैं। और ऐसे प्रोटोकॉल बाकी सब देशों के साथ भी जो हो सके, तो एक दूसरे को किसी का भी जो उपग्रह हो उसको जाके हम डॉक कर सके और जो अगर ईंधन भरना है तो भर सकेंगे, मगर इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसके लिए बाकी की और भी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होने चाहिए कि जैसे उनके उपग्रह उसका एक्सेस मिलना चाहिए, तो इसीलिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए और भी हमें करार करने पड़ेंगे और आगे जाकर हमें काम करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल। अब प्रमोद जी, मंगलयान की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे निर्धारित 6 महीने के कार्यकाल के मुकाबले 8 वर्ष से अधिक समय तक काम करने वाला यान था, जबकि आदित्य L1 और एक्सपोसेट ने सूर्य तथा दूरस्थ खगोलीय पिंडों के अध्ययन में भारत की क्षमताएं बढ़ा दी हैं। तो गहरे अंतरिक्ष अभियान में इस तरह की जो हमारी व्यवस्था की जा रही है, एक तरह से देखा जाए तो तकनीकी रूप से काफी ये जटिल होते हैं, तो इस तरह के अभियानों को प्राथमिकता देना हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए किस तरह की दिशा तय करेगा? खासतौर पे अगर एजुकेशन की फील्ड से हम बात करते हैं तो ये सारी जो चीजें हैं लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगी?
0: एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी ये दोनों के लिए बात की आपने, उसकी बहुत जरूरत है कि आगे जाकर जो हमें देखना है कि मार्स पे जीवित व्यवस्था थी कि नहीं, क्यों वो चली गई, वीनस में क्या हो रहा है, तो ये सब के लिए उनका अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। और इसके लिए एजुकेशनल फील्ड रिसर्च करने वाले जो है उनको ये संसाधन हम दे सकते हैं, जैसे ने कहा कि मंगलयान है, आदित्य है, एक्सपोसैट है, तो अब देखते हैं कि हबल टेलीस्कोप ने कैसा काम किया, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कैसा काम किया, अभी जो नया जो है ग्रीस रोमन टेलीस्कोप है, तो इन सब का उपयोग करके बाकी के देशों से जिस तरीके से काम हो रहा है उसी तरह हम अपने यहाँ के जो साइंटिस्ट है, अपने यहाँ के इंजीनियर है, उनके लिए भी ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि दे सकते हैं।
1: प्रमोद जी, अभी हाल फिलहाल की देखें कि बहुत सारी घटनाएं हमारे आसपास घटी हैं, तो ऐसे में ये समझना और जानना बहुत हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि पृथ्वी का अवलोकन और बेहतर तरीके से हो ताकि हम अधिक से अधिक जानकारी जुटा सकें। तो पृथ्वी अवलोकन के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत लगभग 1200 करोड़ रुपए के निजी निवेश प्रतिबद्धता के साथ पहला निजी स्वामित्व वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह समूह विकसित किया जा रहा है। तो ये जो भागीदारी की जा रही है इसमें मौसम, कृषि, आपदा प्रबंधन, संचार और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा, तो कैसे ये सारी चीजें हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होंगी?
0: आज का ही जो उपग्रह छोड़ा है उसे हम देखते हैं, तो जो इतना जो रेजोल्यूशन मिल जाए कि कोई 50 मीटर का रेजोल्यूशन होगा और हम पूरी तरह से अवलोकन कर सकते हैं। आज हम अपने जो मीटरोलॉजिकल सेटेलाइट है, इनसेट सेटेलाइट के जो है, वहां से हम देख सकते हैं आज के मौसम क्या है, किस तरीके से ये क्लाउड मूव हो रहे, साइक्लोन कहाँ है, तो उसके लिए और भी ज्यादा जानकारी हम मिला सकते हैं। और ये जो आज का जो उपग्रह है वो उसका उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर हम जब पूरी तरह से निगरानी कर सके तो हमें अभी तो पता चलता है कि कहाँ कुछ हो गया है, मगर वो हो जाने के पहले उसके जो कुछ संकेत हम मिला सके तो उसका उपयोग बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से हो जा सकता है।
1: प्रमोद जी, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि हमारे पास श्रीहरिकोटा और तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में प्रक्षेपण स्थल हैं, तो इनसे क्या छोटे उपग्रहों और निजी क्षेत्र के प्रक्षेपणों को बढ़ावा मिलेगा और ऐसे देश जो अपने यहाँ के बजाय हमारे यहाँ से अपने उपग्रहों को प्रक्षेपित करना चाहते हैं उनके लिए कितनी सुविधा होगी इससे?
0: एक तो श्रीहरिकोटा आइलैंड, वहां से हम जो ये बड़े लॉन्च व्हीकल लॉन्च करते हैं, PSLV है, GSLV है, LVM3 है, और वहां से अगर जो हम आगे जाकर गगनयान को भी लॉन्च करना है तो वो उसका उपयोग बहुत ही ज्यादा हो जाएगा और वहां का काम बढ़ जाएगा। और इसी के दौरान में जो कोई छोटा उपग्रह होता है तो उसको हम दूसरे लॉन्च व्हीकल जो प्रक्षेपण क्षेत्र है वहां से लॉन्च कर सकते हैं, तो मुझे तो ऐसा ही ख्याल आता है कि दोनों जगह से हम आगे जाकर और भी ज्यादा उपग्रह छोड़ सकते हैं, स्मॉल सैटेलाइट।

0: लॉन्च व्हीकल
1: जी
0: जो इसरो ने बनाया था, इसी तरीके की जो विक्रम वन जो ये लोगों ने बनाया है, ये स्काई रूट वन, वो हम वहां से पूरी तरह से लॉन्च कर सकते हैं।
1: प्रमोद जी, भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन संचालित करने और उससे पहले हिस्से को 2028 तक अंतरिक्ष में भेजने का लक्ष्य रखता है, तो इतने बड़े अंतरिक्ष ढांचे का निर्माण, रखरखाव, अंतरिक्ष यात्रियों के आवागमन, लंबे समय तक चलने वाले अभियानों के लिए भारत व्यवस्था किस तरह से आपको समझ में आती है आज के समय में?
0: सबसे महत्वपूर्ण उसका जो प्रोपेलेंट के लिए जो ईंधन लगता है, ये हम यहाँ ही बनाते हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। एक 90 से 95% तक का काम हम स्वदेशी पूरी तरह से कर सकते हैं। मुझे पूरी खतरी है कि इसी तरीके से हम आगे जाकर और भी काम कर सकेंगे। मैंने अभी पहले ही जिक्र किया था कि कुछ बात ऐसी होती है कि जिसे टाइम सर करनी है तो उसके लिए थोड़ा सा इम्पोर्ट करना लगता है और वो अच्छी तरह हो ही सकता है कि अगर जो हम उनके उपग्रह से लॉन्च करते हैं तो वो हमें फॉरेन एक्सचेंज देते हैं, इसी तरह हमें भी कुछ बाहर से खरीदना पड़ सकता है। ये तो पूरी इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस की बात हो गई।
1: प्रमोद काले जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं के विस्तार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
4: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया।

दिल ने फिर याद किया कि सभी श्रोताओं को माजिदा खान का नमस्कार। नजरों ने जो कह दिया वो लफ्जों में कहा था, एक पल की वो मुलाकात मगर यादों में पूरा जहां था। कभी कभी किसी की सिर्फ एक नज़र ही काफ़ी होती है दिल को कुछ कहने के लिए। कुछ मुलाकातें बहुत छोटी लगती हैं लेकिन उनकी यादें बहुत लंबी हो जाती हैं। एक नज़र मिलती है और पता ही नहीं चलता कि कब उस पल में एक खूबसूरत एहसास बस जाता है, और जब दिल में चाहत की खुशबू घुलने लगे तो हर मौसम में कुछ नया लगने लगता है, हर धुन अपनी सी लगने लगती है और हर याद में उस चेहरे की झलक दिखाई देने लगती है।

कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें दूरी तो आ जाती है, लेकिन दिलों के बीच का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होता। दूरियों से फ़र्क नहीं पड़ता जब कोई दिल के करीब होता है, और वो जहाँ भी रहे उसकी यादों का असर हमेशा हमारे साथ होता है।

सावन की फुहार हों, पेड़ों पर झूले हों और चारों तरफ खुशियों का मौसम हो, लेकिन जब साजन साथ ना हो तो ये दिल भी कहाँ खुलकर झूला झूलता है। झूला तो सजा है सावन की बहार में, पर मन अटका है किसी के इंतज़ार में। बिन साजन ये मौसम भी अधूरा सा लगे, जैसे खुशबू हो मगर फूल ना हो बहार में।

कभी किसी की कोई बात याद आती है, तो कभी कोई जगह और कभी कोई गीत, और अचानक लगता है जैसे वो इंसान हमारे बिल्कुल पास है। दूरी तो बस रास्तों में होती है, दिल में बसे लोग कहाँ दूर होते हैं। यादें ही तो वो पल हैं जो बीते हुए रिश्तों को फिर से हमारे करीब ले आती हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रह जाती हैं।

कभी कभी किसी की याद भी कितनी अजीब होती है ना। इंसान सामने नहीं होता, फिर भी उसकी बातें, उसकी हंसी और उसके साथ बिताया हर पल हमारे आसपास महसूस होता रहता है। कुछ लोग दूर होकर भी दिल के पास रहते हैं, उनकी यादों के मौसम यूं ही खास रहते हैं। वक्त चाहे जितना बदल जाए, जिंदगी में कुछ रिश्ते हमेशा दिल के पास होते हैं। तेरी यादों का भी अपना एक सिलसिला है, कभी आंखों में नमी, कभी होंठों पर गिला, दूर होकर भी तू दिल से दूर नहीं,

तेरी याद हर शाम चुपके से चली आती है, बिना कुछ कहे दिल को रुला जाती है। तेरे बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है, तेरी याद ही अब मेरी अहम सफ़र सी लगती है। अब यादों के इस सफ़र से इजाज़त दीजिए माजिदा खान को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम दिल ने फिर याद किया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू। न्याय वितरण और विवाद समाधान से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। कहा, भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिक बचाए गए, 275 अब भी लापता। बिहार में सभी प्रमुख नदियां उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति गंभीर, प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी। जन्माष्टमी आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में पहुंचे। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देश और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 7 राज्यों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों को संबंधित सेवा नियमों में संशोधन करके सेवानिवृत्ति आयु को औपचारिक रूप से 62 वर्ष करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने ये शर्त रखी है कि 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके न्यायिक अधिकारियों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा जारी रखने की अनुमति मिलने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय के योग्यता और प्रदर्शन मूल्यांकन से गुजरना होगा। न्यायालय ने इन राज्यों में इस वर्ष 31 मार्च को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए न्यायिक अधिकारियों के लिए भी सीमित अवसर खोला ताकि वे न्यायिक सेवा में पुनः प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे पर निर्णय लेने और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थीं। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यहां कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। इंडिया वेलकम्स द ब्रिक्स कंट्रीज एज द ग्रुपिंग मार्क्स द 20 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट इन 2026। ब्रिक्स समिट 2026 इज बीइंग होस्टेड इन भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, फ्रॉम 12th to 13th September 2026 अंडर इंडियाज चेयरशिप थीम building for resilience, innovation, cooperation and sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प.
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
6: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान. पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान. आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए. इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन. उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान. नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की. आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर. राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी.
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है. नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं. उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है.
7: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
8: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है. एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे.
7: And recovery efforts in the country.
0: श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है. उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं. उन्होंने कहा कि चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा नहीं है. श्री जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर और अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है. नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है. नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई. इसके बाद नवलपरासी पूर्व में 218, नवलपरासी पश्चिम में 208, नुवाकोट में 185, रसुआ में 140, गोरखा में 72, धाडिंग में 60 और तनहू में 38 लोगों की मृत्यु हुई. काठमांडू के अस्पतालों में इलाज के दौरान 2 और लोगों की मृत्यु हुई. विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी. वॉर्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने ये बात कही. बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा. उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा.

0: ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय वार्ता को संबोधित कर रहे थे। भारत ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज तड़के श्रीहरिकोटा से GSLV-F17 रॉकेट से पृथ्वी अपलोकन उपग्रह EOS-05 का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इस सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये राष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। श्री मोदी ने कहा कि ये सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उत्कृष्टता, नवाचार और बढ़ती क्षमताएं दर्शाती है। इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा कि मिशन भारत की पृथ्वी अवलोकन क्षमताओं को और मजबूत करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आज डिजिटल अरेस्ट के 3 बड़े मामलों में देशभर में कार्रवाई की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र 6 के अंतर्गत 3 लोगों को हिरासत में लिया।
3: देशभर में लगातार बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट के मामलों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए देश के 20 राज्यों में 89 स्थानों पर छानबीन का अभियान चलाया गया। इस ऑपरेशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई गई थी। राजस्थान के जालसाज ने 7,67,00,000 रुपए, गुजरात के जालसाज ने 19,24,00,000 रुपए और राजस्थान के ही एक अन्य जालसाज ने 15,45,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की। एजेंसी ने डिजिटल अरेस्ट के संगठित अपराध से निपटने का संकल्प भी दोहराया। यह ऐसी समस्या है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी देशभर के नागरिकों के गंभीर खतरा बताया है। अभिनव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में एक आतंकी को मार गिराया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्र में आतंकियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकी से एक राइफल और गोला बारूद बरामद हुआ। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
4: द्वारका के जगत मंदिर में फल, दाल चावल, मिठाई और 56 भोग के खास प्रसाद के चढ़ावे के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मंदिर और पुलिस अधिकारियों ने भक्तों के लिए बैरिकेडिंग, CCTV सर्वेलेंस और ड्रोन मॉनिटरिंग जैसे इंतजाम किए हैं। डाकोर के राजा रणछोजी मंदिर में सजावट आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखी गयी। दूसरी ओर अहमदाबाद के इस्कॉन और भारत के हरे कृष्ण मंदिर समेत कई कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर युवाओं ने खास रासलीला का आयोजन किया। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, केरलम में भी जन्माष्टमी का पर्व धार्मिक उत्साह और भक्ति के साथ मनाया गया। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने हब्बा कदल से गणपत्यार मंदिर से लाल चौक तक शोभा यात्रा निकाली। कुलगाम के वेसु क्षेत्र में कश्मीरी पंडितों ने भी जन्माष्टमी के अवसर पर रंगारंग झांकी और शोभा यात्रा निकाली। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गंगा, पुनपुन, गंडक, बूढ़ी गंडक, सोन और कोसी सहित सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है।
5: पटना, भोजपुर, भागलपुर और पश्चिम चंपारण समेत बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF की 9 और SDRF की 27 टीमों की तैनाती की गई है। प्रभावित परिवारों के बीच राशन का वितरण किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें कैंप कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने पटना में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के साथ साथ राहत और बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन को 21-13, 16-21, 21-18 से हराया।

स्वीकार किया मैंने। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल स्वर में, शब्द रचना निदा फाजली की, संगीत उषा खन्ना का।

वो कौन थी? इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना राजा मेहंदी अली खां की, संगीत मदन मोहन का था।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संजोग का गीत मुकेश की आवाज़ में, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की और संगीत मदन मोहन का था।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या?
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: इस समय आप हैं हमारे साथ।
1: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
2: इस गीत के साथ ही चित्रगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

मन भवन के सभी श्रोताओं को माजिद खान का नमस्कार। श्रोताओं, आज का दिन कुछ खास है क्योंकि आज वातावरण में भक्ति भी है और उल्लास भी और कान्हा की नटखट मुस्कान भी। जी हाँ, आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व, जब हम नंदलाल के जन्म का उत्सव मनाते हैं। कहीं मंदिरों में झांकियाँ सज रही हैं, कहीं भजन कीर्तन हो रहे हैं और कहीं छोटे छोटे बच्चा कान्हा और राधे के रूप में नजर आ रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसी ही गीत के साथ।

आप सुन रहे थे फिल्म युगांधर का गीत अमित कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था और सुनना चाहता बिया राशि रौनक दिव्यांशी रोशनी धीरज और सुमति ने सोमानी नगर इंदौर से, मक्षी से दयाराम जाटव जैन सिंह आरोल नानूराम कांसुटिया नंदकिशोर और दीपक कांसुटिया, हिंगोली महाराष्ट्र से पार्वती सखाराम ठोके दीपाली राजू ठोके रोहित सोनू मोनू ठोके, हिंगोली से ही रामचंद्र इंगोले सिद्धांत इंगोले टिक्कू रमाबाई सुरेंद्र मयूरी सुरभि मंजूषा और गौतम इंगोले, झुमरी तलैया से देव इंगोले छगुली इंगोले छोटू दादा इंगोले और आरडी इंगोले, कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी सरताज बानो उबैद रजिया जुनैद अलीना आयत और मुआज मंसूरी, साथ ही हैं नसरीन जहां, हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला जे एस नायक शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, सारनी जिला बैतूल से अमित निहारिका शिवपाल अनामिका अवंतिका शिवालिका पारसमणि पंजाव राव और संदीप पाटिल, भड़बूची आगर से रघुनाथ मालवी भवरबाई सुषमा पुष्पा।

ममता मंजू बबीता राधा सरिता श्याम बाबू दुर्गा मधुबाला विनोद विशाल मिलन अक्ष और ओम प्रकाश रणथंबर से मोहम्मद यूनुस मंसूरी मोरीस तैयब मुकेश अकबर अनस हसन भाई और जानकी लाल वर्मा सनावर से दिलीप माराकाल योगेश मालाकार सुनीता और मुस्कान मालाकार। श्रोताओं कान्हा के जन्म की खुशी सिर्फ गोकुल की खुशी नहीं थी। कान्हा की बाल लीलाओं की बात हो और माखन का जिक्र ना हो ये तो संभव ही नहीं। और अब जरा कल्पना कीजिए उस नन्हे कान्हा की जिनके हाथ में माखन की मटकी और चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान है।

एक गीत आप सुन रहे थे फिल्म खुद्दार से किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में। शतरचना मजरूह सुल्तानपुरी के संगीत राजेश रोशन का। और सुनना चाहा था कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य आदित्य शिवानी और मीनू राज शिमाली ने। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। कुम्हारखाड़ी इंदौर से उमेश कश्यप, बल्लू कश्यप, हेमलता कश्यप और उर्मिला बाई ने। पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश हुमेश, अनी जिन्नी, अनीता दियाना और जियांश मटाई ने। बुरहानपुर से मुशर्रफ खान तड़बी, जरीना तड़बी, मुबारक परवेज बिटिया तैमूर भैया तड़बी, रीना मुशर्रफ, रोजुबाई, सनी और उनके परिवार वाले। गौरीनगर इंदौर से अनंत कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। पालतना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। राजकुमार मिल्स चौराहा इंदौर से सरिता, अमृता, कृष्ण बी, नितिन, महेश, अहिल्याबाई और उनके परिवार वाले। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, रानी तबस्सुम, रुखसार और मोहम्मद आसिफ। श्रुता मिश्री से मीठे हैं कृष्ण के बोल, कोई उनके प्रेम को ना पाए तोल। माखन चुरा कर जिसने खाया, उस कान्हा ने हर दिल को है लुभाया। जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो सबसे पहले उनके बाल रूप की नटखट शरारतें याद आती हैं। मटकी फोड़ना, सखाओं के साथ माखन चुराना और यशोदा मैया को अपनी मासूमियत से मना लेना।

आप सुन रहे थे फिल्म संजोग का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, शब्द रचना राजेंद्र रविंद्र जैन की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। सुनना चाहता सनावसे हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनी।

श्रीनिवास खेड़े, दीपक सचिन कटारिया, प्रभा कटारिया, कृष्णा विराज अर्नव और काव्यांशी कटारिया ने। बीकन गांव से संतोष सातले, रोहित, सारिका, शुभम, शैलेंद्र, कंचन और चंदन सातले। नांदेड़ से प्रभाकर चौंतले और आरती। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर, जयतेक और मीका बिरक। चंदननगर सतारा से सतीश बागमारे, आतिश, स्वाति, वर्षा, श्रमण और श्रमीण। विजय चौहान, तेजस्विनी, अंकिता, अनिकेत और माया चौहान ने इसी गीत को पसंद किया। कोल्हापुर से अनंत चिखले और जितेंद्र सोलंकी, विपिन नायक, मोहन परिहार, दिनेश शर्मा, विनायक राठौर और सभी साथियों ने इसी गीत को पसंद किया। त्रिलोक नगर देवास से बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, टैनी पवार और मनीष पवार ने इस गीत को सुनना चाहा था। अन्नपूर्णा रोड अटल चौराहा इंदौर से सुरेश मंगवानी, लक्ष्मी, शोभा, निर्मल, ज्योति, नेहा, गोपाल, हेमंत, राहुल और समस्त मंगवानी परिवार ने। गोमाश्ता नगर स्कीम नंबर 71 इंदौर से अनिल कबचाले, सबिया, सुषमा, सीमा, श्वेता, पूजा और मीनू ने। खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक और मोहम्मद उमर डावर। खंडवा रोड सनाबस से अबरार भाई, इमरान, इरफान, वसीम, सोनू, सईद अभी, आयशा और सुल्ताना ने इसी गीत को पसंद किया था। श्रोताओं, कान्हा की शरारतों के बाद अब बात करते हैं उस अलौकिक प्रेम की जिसको पूरी दुनिया पूछती है। राधा और कृष्ण का प्रेम जो शरीर का नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। और अधर धरे मुरली बजाए मधुरतान, राधा संगराज रचाए वो है कृपा निधान।

राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत संगीत रविंद्र जैन का था। सुनना चाहता सुदामा नगर इंदौर से अनिल भंडारी, उषा भंडारी, समता चित्रा और निशा ने। जिला वाशिम से रविंद्र पवार, मीना पवार, श्रीकांत और एकनाथ काली। मालीपुरा बिजलपुर से मोहनलाल चौहान, ललिता चौहान, प्रियंका, पंकज, सोनू, नितिन, राहुल, गुंजन, मुस्कान, अदव्या, अंकित, लड्डू, कान्हा और ऋषु चौहान ने। सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने। बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने इसी गीत को पसंद किया। प्रमलागंज आलोट जिला रतलाम से। महाराष्ट्र से गजानन एले, नवनीत एले, बलदेव और अरुणा इसी गीत को पसंद किया। पहाड़ा दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण, चंद्र किरण, प्रीति और छाया ने। देवास बाजार से जाकिर हुसैन नजमी, तस्नीम नजमी, जमीला मुर्तजा और मुनीम नजमी ने। इस्लामपुरा सनाबा से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गौर, शादाब खत्री। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। अम्बेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद सौरभ, गौरव, एल पी रोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू, डुंडुन और समस्त परिवार वाले।

फिल्म अमर प्रेम का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। शत्रुघ्न आनंद बख्शी की संगीत आर डी वर्मन का था। और सुनना चाहा था पिपलिया पाला से समंदर सिंह भंडारी, कविता भंडारी, सविता रानू माधुरी, जया संतोष, अश्विन आर्यन और गौरव भंडारी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। बाटापारे ततरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और शैवेंद्र कुमार वर्मा। राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक धाडी नादुरा। महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे और वैशाली बाठे। इसी गीत को पसंद किया छपड़ा राजस्थान से आसिफ अली, वाहिद अली और शमीम बानो ने। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा जासमीन और प्रयागराज भट्ट ने।

ब्लफ मास्टर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वर में। गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत से सवारा कल्याण जी आनंद जी ने, और सुनना चाहा था सनावत से कालू सिंह बड़ोले, सीताराम बड़ोले, हीरा लाल, तेज सिंह तंवर, साहिल, हरिओम, विशाल, सुमन, रमा और कंचन। पुलिस चौकी गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा संतोष रघुवंशी, शोभा भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता सुरेंद्र, पूजा विक्की रघुवंशी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, कुमारी देविका चौधरी, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे। इसी गीत को पसंद किया नांदखेड़ जिला वाशिम से अशोक चुंबले, दिनेश चुंबले, रूपेश चुंबले, लीलाबाई चैताली और प्रीति। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भगवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और पिपरिया से दुर्गाराम साहू। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता और एकांश, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत और प्रणीता, बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश, श्वेता, सुमित, ध्वनि और उनके परिवार वालों ने।

0: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
1: क्या?
0: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: और सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: इस समय आप हैं हमारे साथ।
1: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
2: आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम मन भवन, और आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त माजिदा खान। आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला गीत।
3: कृष्णा कृष्णा

आप सुन रहे थे फिल्म विदाई का यह गीत आशा भोसले की आवाज़ में। गीत लिखा नंद बख्शी ने, सुरों में पिरोया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गीत को पसंद किया धर्मपुरी जिलाधार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान फैजान, सुमेरा कश्यप, साइमा हसनैन और खुशी ने। नेवासा कुप्टी महाराष्ट्र से बंडू लोहार, माया शिवांश, चंद्रकला देवीदास, श्रीरामपुर भोकर से हरिभाऊ, श्रावण और अनीता, कोल्हापुर से तुषार, प्रशिक, एकता, मेघना, उत्कर्षा, अरुण और उनके परिवार वालों ने, पांठर कपड़ा से अनिल, उषा, प्राची, अनुश्री और धनुश्री, पुणे से प्रियंका आर्य और पंकज, जरूरण से बाबा साहब और मीनाक्षी, नई सड़क शाजापुर से एस एम राजावत, मधु राजावत, राशि रक्षित, चित्रंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, ऋचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीति, ऋषभ राजावत और उनके परिवार वालों ने इसी गीत को सुना चाहा था।

आप सुन रहे थे ओ माई गॉड फिल्म का ये गीत मीका सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, शब्द रचना सबीर अहमद की और संगीत हिमेश रेशमिया का। इस गीत को पसंद किया नवागढ़ कटे से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू। ग्राम बड़गुआ पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रणिका प्रोनानिका और उत्कर्ष नेताम ने। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद नवासी ने। सीतामढ़ी बिहार से अक्रम हुसैन, वेरगम इशरत, वसीम अक्रम, आरिज शमीम, ममता रानी शर्मा, बच्चू शेख, रुबीना, नदीम, अमन और पूनम कुमारी शर्मा ने। इस गीत के साथ ही मनभावन कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आप ही आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम मन भवन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में लीजिए सुनिए उस्ताद अमीर खान का गायन, राग है जय जय बंती।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद आमिर खां का गायन रागता जय जयवंती। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी से न्यायिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। यह सम्मेलन न्यायपालिकाओं के लिए न्याय प्रदान करने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने, मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत इटली संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। श्री मोदी ने इटली के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सरकार का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को शुभकामनाएं दी थी। प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली दोनों महाद्वीपों के बीच रिश्ते मजबूत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों देश भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का यह कॉलेज भारत के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में से एक है। यह कॉमर्स, अर्थशास्त्र और प्रबंधन के क्षेत्र में विशिष्ट शिक्षा केंद्र हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल बाढ़ के बाद अब तक 166 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं को बताया कि 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल में पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय बचाए गए भारतीयों के नाम नियमित रूप से जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में भीषण बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 1287 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार चितवन में सबसे अधिक 359 लोगों की मौत हुई है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बाख्त द वेवर ने कहा है कि बेल्जियम भारत के साथ समुद्री सहयोग को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने बताया कि बेल्जियम से समुद्री और पत्तन क्षेत्र का प्रतिनिधिमंडल अगले वर्ष फरवरी में भारत आएगा ताकि इस क्षेत्र में ठोस कदम उठाए जा सकें। श्री वेवर आज मुंबई में आयोजित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भारत बेल्जियम उच्च स्तरीय चर्चा को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पोलैंड साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई समझौतों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन समझौतों से द्विपक्षीय संबंधों में अधिक गहराई और मजबूती आएगी। वार्सो में आज पोलैंड के उप प्रधानमंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ वार्ता के बाद डॉ जयशंकर ने यह बात कही। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट फेस्ट इस क्षेत्र की जीवंत संस्कृति, रचनात्मकता और युवाओं का उत्सव है। नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स फेस्ट के 9वें संस्करण को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह पहल अब एक राष्ट्रीय मंच बन गई है जहां युवा भारतीय उस विविधता का जश्न मनाते हैं जो उन्हें खास बनाती है और उन साझा बंधनों का भी जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव आज देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्माष्टमी का पावन पर्व पूरे गुजरात में भी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 462.96 मीटर पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। रात्रि की 11:10 हुए हैं। हमारी यह सभा आज की यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर इसी मीटर पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।